सो पाए जिस मस्तक भाग आप कृपाल कृपा प्रवतारी सतगुर बख्शिया हर नाम कल युग उधारिया गुरदेव मल मूत मूड जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव रहाओ तू आप करता सब श्रेष्ठ धरता।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे, रहाओ महाबिखादी दुष्ट अपवादी, ते पनीत संगारे जन्म पवंते नरक पड़ंते, तिनके कुल उधारे कोई ना जाने कोई ना माने, से प्रगट हर द्वारे कमन उपमा देओ कमन वडाई, नानक खिन खिन वारे आसा महला पंजवां, बावर सोए रहे रहाओ मोह कटंब बिखै रस माते, मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास, मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे, तिल मर्म ना लहे कर कृपा राखे सत संगे, नानक सरण आहे आसा महला पंजवां ते पदे, ओहा प्रेम पिरी रहाओ कनक माणक गज मोतियन लालन, नह नाहा नहीं राज ना भाग ना हुक्म ना साधन, किस किस ना चाही चरणन सरनन संतन बंदन, सुखो सुख पाही नानक तपत हरि।

दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवां हर हर नाम अमोला ओह सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ ना जाई ओह अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओलाह अलख लखाया गुरते पाया नानक इहो हर का चोला आसा महला पंजवां अपनी भगत नवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ नाम पदार्थ होए सकारथ हृदय चरण बसाहे एहे मुक्ता एहे जुगता राखो संत संगाहे नाम त्यावो सहज समावो नानक हर गुण गाहे आसा महला पंजवां ठाकुर चरण सुहावे हर संतन पावे रहाओ आप गवाया सेव कमाया गुण रस रस गावे एक है आसा दर्श प्यासा आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवां एक सिमर मन माही रहाओ नाम त्याव हो हृदय बसाव हो तिस बिन को नाही प्रभ सरनी आईऐ सर्व फल पाईऐ सगले दुख जाही जीअन को दाता पुरख बधाता नानक घट घट आही आसा महला पंजवां हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम त्यावै सर्व फल पावै सो जन सुखिया हुआ राज कहावै हो।

अपने प्रीतम स्यो लाग रहे रहाउ जो प्रभ भावे जन्म ना आवे हर प्रेम भगत हर प्रीत रचे प्रभ संग मलीजे एहो मन दीजे नानक नाम मिले।

संयम कर थाके नानक साध सरन प्रभ संग वसै आसा महला पंजवां घर पंद्रवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवै पकर केस जम उठारियो तद ही घर जावै लोभ बिखया बिखै लागे हर वित चित दुखाही।

निपट बाजी हार मूका पछतायो मन पूरा दान सगल गैर वजह भरिया दीवान लिखे ना परिया जेहे कार्ज रह ओला सोई काम ना करिया।

के सहजाए दरसाए अभरात्या गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निदान पाए सब

प्रभ त्यावं भ्रम पीत जीत मटावं निद नाम नानक मोरे आसा महला पंजवां काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल।

कौनिक से सरन पैरी सखी थेर थेर चित थेर हां बानी ग्रहो सम सर हां अंतर एक।

दस हूँ दिस धावत आसा लाग्यो धन की रहाओ सुख कै हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की द्वार है द्वार स्वान ज्यों डोलत नह सुध राम भजन की मानस जन्मे अकारथ खोवत लाज ना लोक हसन की नानक हर जस क्यों नहीं गावत कमत बनासै तन की राग आसा महला पहला अष्टपदियां घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उत्तर अब कट सरवर नावे बकै न बोले हर गुण गावे जल आकाशी सुन समावे रस सत झोल महारस पावे ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे भरपुर धार रहया सब ठौरे रहाओ सच ब्रत नेम ना काल संतावे सतगुर शब्द क्रोध जलावे गगन निवास समाध लगावे पारस परस परम पद

नाई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साच सबे सुख नाला, नदर करे राख रखवाला, त्रे भवन सूजे आप गवावे, बाणी बूझे सच सुभावे, शब्द विचारे एक लिव तारा, नानक धन सवार नहारा, आसा महला पहला, लेख असंख लिख लिख मान, मन माने सच सुरत बखान, कथनी बदनी पढ़ पढ़ पार, लेख असंख अलेख या

परम चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच सुमाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब था।

को रोवे दुख कोई, सो रोवे जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सो होए, जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना, हौ बलिहारी सतगुर चरना, गुर बोहित शब्द पै तरना, निरपहु आप निरंतर जोत, बिन नावै सूतक जग शोत, दुर्मत बिन सह क्या कह रोत, जन्म मुए बिन भगत स्रोत, मुए को सच रोवह मीत, त्रै गुण रोवह नीता नीत, दुख सुख पर हर सहज सुचीत, तन मन सौंपो कृष्ण परीत, पीतर एक अनेक असंख, कर्म धर्म बहु संख असंख, बिन

0: भ्रांत
1: सूतक अगन पखै जग खाए सूतक जल थल सब ही थाए नानक सूतक जन्म मरीजै गुर प्रसादी हर रस पीजै राग आसा महला पहला आप विचारै सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुर पूरा गुर मानै मन ते मन

नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भगत विचारी।

क्या लहस निदान जिसका अन तन सहज ना जाना परम पुलाना फिर पछताना गल पाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर भागे सतगुर राखे से वड भागे।

राग सुनाए कहावह बीते, बिन नावै मन झूठ अनीते, कहां चलो मन रहो करे, गुरमुख राम नाम तृप्तास्ते, खोजत पावहु सहज हरे रहाउ। काम क्रोध मन मोह शरीरा, लाभ लोभ अहंकार।

अपने वस कीए हौमे ग्रास इकत थाए कीए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख इहो मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन भय निरंकारी इहो मन निर्मल दर घर सोई गुरमुख भगत भाओ धुन होई एहनस हर जस गुर प्रसाद घट घट सो कब याद जुगाद राम रसायन इहो मन माता सर्ब रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के

0: दुख तिस लागे।
1: जो जन राम नाम लिव जागे,
0: भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त भये हर रंग। आसा महला पहला एक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने। राम जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी। रहाओ बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार। बंधन कर्म तर्म हों किया, बंधन पुत कलात मन।

पास एक लाख लहन बैठिया लख लहन खड़िया गरी सुहारे खांदिया मानन से जड़िया तिन गल सिलका पाइया टुटन मोत सरिया धन जोबन दोए वैरी होए जिन्नी।

कामण जिस वेख नींद ना पाई कहां सुपान तंबोली हरमा होया शाई माई। इस जर कारण घनी विगुत्ती इन जर घनी खोआई पापा बाजो होवै।

नीत नीत घर बांधी है जे रहना हुई पिंड पवै जियो चलसी जे जाने कोई ओही ओही क्या करहो है होसी सोई तुम रोवोगे ओसनु तुम कौ कौन रोई।

सोई। जे कर बूझै अपना तां नींद ना होई। जे चलदा लै चलिया किस संपै नाले, तां तन संचो देख कै बूझो बीचारे। बणज करहो मकसूद लै हो, मत पछो ताव हो। औगण छोड़ो हो गुण करहो, ऐसे तत् पराव हो। धर्म भूम सत बीज कर, ऐसी किरस कमाव हो। तां व्यापारी जानी हो, लाहा लै जाव हो। कर्म हो वै सत गुर मिलै,

सिद्ध मैं एक नाम ना विसरै साचे गुर बुद्ध जोगी भोगी कापड़ी क्या पवहंद संतर गुर का शब्द नाची नहीं तत सार निरंतर पंडित पांदे जो इसी नित पढ़ है पुराणा अंतर वस्त ना जाननी काट ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन मह तप कर है नित तीर्थ वासा आप ना चीन है तामसी काहे पये उदासा एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावे है बिन गुर शब्द ना छूट ही भ्रम आवे है जावे है एक गिरी सेवक साधका गुरमती लागे नाम दान इशनान दृढ़ हर भगत सो जागे।

साचो साहिब मन वसै होमे बिख मारी दुबदा छोड़ को आटड़ी मूस हो गए भाई अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई मनमुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका जन्म है के तारा की है

जानहू हुक्मी वजहो लिखाए आया जानिए लाहा पल्ले पाए हुक्म सियाणी है हुक्मी पैंदा जाए दरगाह पाणी है।

ताम अन पावई चले सदा रजाई अंक सुमावई सच्चा साहिब मन वसै वसया मन सोई आपे दे वडियाइयां दे टूट ना होई अबे तबे की चाकरी क्यों दरगाह पावै पत्थर की बेड़ी जे चढ़ै भार नाल बढ़ावै आपनड़ा मन वेचियै सिर दीजै नाले गुरमुख वस्त पछाणियै अपना कर भाले जम्मण मरना आखियै तिन करतै किया आप गुआया मर रहे फिर मरन ना थिया साई कार कमावणी तुर की परमाई जे मन सतगुर दे मिले किन कीमत पाई रतना पारक सो धनी तिन कीमत पाई नानक साहिब मन वसै सच्ची वडियाई आसा महला पहला जिन्नी नाम विसारिया दूजै भरम भुला।

अवाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए मनमुख जे समझाई है पी उजड़ जाए बिन हर नाम ना छूट सी मर नरक समाए जन्म मर परमाई है हर नाम ना लेवे ताकी कीमत ना पवे बिन गुर की सेवे जे ही सेव कराई है करनी पी साई आप करे किसे आकी है वेखे वडियाई गुर की सेवा सो करे जिसे आप कराए नानक सिर दे छूटी है दरगाह पत पाए आसा महला पहला रूड़ो ठाकुर महारू रूड़ी गुरबाणी वड्डे भाग सतगुर मिले पाईए पद निर्वाणी मैं उल गिया उलगी हम छोरू थारी ज्यों त्यों राख त्यों रहा मुख नाम हमारे रहाओ दर्शन की प्यासा कणी भाणे मन पाईए मेरे ठाकुर हाथ वड्याईया भाणे पत पाईए साचो दूर ना जानी है अंतर है सोई।

खुद पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरे इयाणी चारे वेद ब्रह्मे कौ दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताका हुक्म न बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगह जुगह के राजे किए गाव है कर अवतारी तिन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब साचा देहे ता साच बखानी जा को सच बुझावे अपना सहजे नाम सुमानी आसा महला तीजा सतगुरु हमरा परम गवाया।

अपसार हर जीव मन वसै सब दुख वसार नहार दर साचै दिसै सचियार गुर सेवा ते त्रे पवन सोजी होए आप पछाण हर पावै सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गुर सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखै उर धारे साची सोभा साच द्वारे सेवड भागी जे गुर सेवा लाए अन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उधरे कुल सबाए नानक साच कह विचार हर का नाम रखो उर धार हर भगती राते मोख द्वार आसा महला तीजा आसा आस करे सब कोई हुक्मै बूझै निराशा होई आसा विच सुते कई लोई सो जागै जागाए सोई सतगुर नाम बुझाया बिन नावै भुख ना जाई नामे तृष्णा अग्न बुझै नाम मिलै तिसै रजाई रहाउ कल कीर्त शब्द पछाण एहा

जप पढ़िया गुर शब्द विचार, हर जप पढ़िया होमे मार, हर जपिया पह सच प्यार, नानक नाम गुरमत उरतार, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा महला तीजा, अष्टपदियां घर अठवां काफी, गुर ते शांति उपजै जिन तृष्णा अग्न बुझाई, गुर ते नाम पाई वड्डी वडियाई, एको नाम चेत मेरे भाई,

घर घर पाया भगती भरे भंडारा गुरमुख नाम त्याई है बूझे विचारा गुरमुख भगत सलाहा है अंतर शब्द अपारा गुरमुख सुख उपजे दुख कदे ना होई गुरमुख हउमै मारी है मन निर्मल होई सतगुर मिले है आप गया त्रे पवन सोजी पाई निर्मल ज्योत पसर रही ज्योति ज्योत मलाई पूरा गुर समझाया माती उत्तम होई अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई पूरा सतगुर ता मिले जान नदर करे किलविक पाप सब कटी है फिर दुख बिघन ना होई अपने हाथ बढ़ियाईया।

सुन मन मन वसाए तू आपे आए मिलै मेरे भाई अन दिन सच्ची भगत कर सच्चै चित लाई एको नाम त्याए तू सुख पाव है मेरे भाई हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाउ इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे विण सतगुर पाई ना जाए पंडित पढ़ दे जोत की तिन बूझ ना पाए आपै थै सब रखियोन किस कहन ना जाई आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई जी जंत सब तिस दे सबना का सोई मंदा किसनो आखी है जे दूजा हुई इको हुक्म वर्तदा एका सिर कारा आप भवाली दितियन अंतर लोभ बकारा एक आपे गुरमुख कीतियन बूझन विचारा भगत पियो नानो बख्शियन अंतर भंडारा ज्ञानिया नो सब सच है सच सोजी होई कोय भलाए किसे दे ना भुलनी सच जानन सोई कर्म है पंच वर्त दे पंचे विचारी नानक बिन सतगुरु।

हर किशना ही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाई सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निदान है पूरा सतगुर दिया दिखाई रहाओ हर का गाहक हो है सो ले पाए रतन विचारा अंदर खोले दिब दिष्ट देख मुक्त भंडारा अंदर महल अनेक है जियो करे बसेरा मन चिंदिया पल पाए से फिर हुए ना फेरा पारखियां वत संभाल लई गुर सोजी होई नाम पदार्थ मुल सा गुरमुख पावे कोई बाहर भाले सो क्या लह वत करे अंदर पाई परमे भूला सब जग फिरे मनमुख पत गवाई घर दर छोड़े अपना पर कर झूठा जाई चोरे वांगू पकड़ी है बिन नावे चोटा खाई जिन्नी घर जाता अपना से सुखिए पाई अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई आपे दान करे किसे आखी है।

कहे बहु विद श्रिष्ट उपाय हुक्मी कार कराईंदा दूजा किस कही है भाई बुझना अबुझना तुद किया ए तेरी सिरकार इक ना बख्शे मेल लह एक दरगाह मार कडे कूड़ियार एक तुर पवित पावन है तुद ना मेलाए गुर सेवा ते सुख उपजै सच्चे शब्द बुझाए एक कुचल कुचील विखली पते नाम हो आप खुआए ना उन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी फिर है उतवताए नदर करे जिस अपनी तिस नु भावनी लाए सत संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए लेखा पढ़ ना पहुंची है कत कहने अंत ना पाए गुरते कीमत पाई है सच शब्द सोजी पाए इहो मन देही सोध तू गुर शब्द भी।

कर गए पल्ले किस ना पाए महल नाही दोहागणी अंत गई पछताए सो फिर मेरा एक है एक सस्यो लिवलाए नानक जे सुख लोड़ है कामणी हर का नाम मन वसाए आस्ता महला तीजा अमृत जिना चखायुन रस आया सहज सुभाए सच्चा वी प्रवाहो है तिसनो तिल ना तमाए अमृत सच्चा वरसदा गुरमुखा मुख पाए मन सदा हरियावला सहजे हर गुण गाए रहाओ मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिललाहे जिन्ना पिर का स्वाद ना आयो जो तुर लिखिया सो कमाए गुरमुख बीजे सच जम्मे सच नाम वापार जो इत ला है लायन भगती दे भंडार गुरमुख सदा सुहागणी भै भगत शिंगार आनंद निरावे फिर अपना सच रख है उरतार जिन्ना फिर रावया अपना तिन्ना विटो बल जाओ सदा फिर कै संग रह विचो आप गवाई तन मन शीतल मुख उजले फिर कै भाई प्यार सेज सुखाली फिर रवै हों मैं तृष्णा मार कर कृपा घर आया गुर कै हित अपार वर पाया सुहागणी केवल एक मरार सबे गुनहा बख्शाए लयन मेले मेलन हार नानक आखण आखिया जे सुन धरे प्यार आसा महला तीजा सतगुर ते गुण उपजै जां प्रभ मेलै सोए सहजे नाम त्याई है ज्ञान प्रगट होए।

शब्द रहिया भरपूर रहाउ गुरमुख आप पछाणिया किन्नी एक मन त्याया सदा रवह फिरे अपना सच्चा नाम सुख पाया ए मन तेरा को नहीं कर वेख शब्द विचार हर सरनाई भज पओ पाए मोख द्वार शब्द सुनिए शब्द बुझिए सच रह लिवलाई शब्द हमें मारिए सच्चे महल सुख पाए इस जुग में शोभा नाम की बिन नावै शोभ ना होए ए माया की शोभा।

सहज सुख के सब हाट, साहा व्यापारी एकै थाट, जे जिया दन को लय ना जगात, सतगुर कर दीनी तुर की छाप, वखर नाम लद खेप चलावो, लै लाहा गुरमुख घर आवो, सतगुर साहु सिख बन जारी, पूंजी नाम लेखा साच सुमारी, सो

देव अब चल नगरी नानक देव असावरी महला पंजवा घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन हर स्यों लागी प्रीत साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रहाउ दर्शन की प्यास घणी चितवत अनक प्रकार करो अनुग्रह पार ब्रह्म हर कृपा धार मरार मन परदेसी आया मिलियो साध कै संग जिस वखर कौ चाहता सो पायो नामह रंग जेते माया रंग रस बिनस जाही खिन माहे भगत रते तेरे नाम स्यों सुख पुंचह सब ठाई सब जग चल तो पेखी है निःचल हर को नाम कर मित्राई साध स्यों निःचल पावह ठाउ मीत साजन सुत।

साथ चरण कमल बोहित भई लग सागर तरियो ते पेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ सियो नेह साध तेरे की जाचना विसरना सास ग्रास जो तुद पावे सो पला तेरे पाने कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पीते परमानंद हासा।

सुख सिंगार बिखिया के फीके तज छोड़े मेरी माई काम क्रोध लोभ तज गए प्यारी सतगुर चरनी पाई जो जन राते राम स्यों प्यारी अनत ना काहू जाई हर रस जिन्नी चाखिया प्यारी तृप्त रहे आगाई अंचल गहया साध का नानक पैसा गिर पार पराई जन्म मरण दुख कटिया प्यारी

सुख दुख तेरी आज्ञा प्यारी दूजी नाही जाय। जो तू कराम है सो करी प्यारे, अवर किस करन ना जाय। दिन रैन सब सुहावने प्यारे, जित जपिए हर नाम साई कार कमावनी प्यारे। तुर मस्तक लेख लखाय, एको आप वरतदा प्यारी, घट घट रहिया समाय। संसार कूप ते उधर लह प्यारे, नानक हर सरनाय। राग आसा महला पहला पट्टी लिखी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सस्य सोए सृष्ट जिन साजी, सबना साहिब एक भया। सेवत रहे चित जिनका लागा, आया तिनका सफल भया।

जलिया जमराज के रू आए माया कै संगल बंद लया खखे खुंदकार साहा आलम कर खरीद जिन खर्च दिया बंधन जा कै सब जग बांधिया अवरी का नहीं हुक्म पया गगे गोए गाए जिन छोड़ी गली गोविंद गर्भ पया कड़ भांडे जिन आवी साजी चाड़न वाहे तई किया कगे काल सेवक जे काले शब्द गुरु कै लाग रह बुरा भला जे सम कर जाने इन वेद साहिब रमत रह चचे चार वेद जिन साजी चारे खानी चार जुगा जुग जुग जोगी खानी भोगी पढ़िया पंडित आप थिया सच्चे छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ परम उपाए फुलाइन आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलिया जजे जान मंगत जन जाचे लख चौरासी भीख पविया एको लेवे एको देवे अवर न दूजा मैं सुनिया छजै चूर मरहो क्या प्राणी जो किस देना सो दे रहिया दे दे वेखे हुक्म चलाए ज्यो जिया कारज कपया नन्हे नदर करे जा देखा दूजा कोई नाही एको रव रहिया सब थाई एक वसिया मन माही तत्ते तंच करहु क्या प्राणी तड़ी के मोहत के उठ चलना जूए जन्म ना हारो अपना भाज पढ़ो तुम हर सरना ठठे ठांड वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा से जन निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया डड्डे दंप करहु क्या प्राणी जो किश हुआ सो सब चलना तिसै सरी वो ता सुख पावहु सर्व निरंतर राव रहिया तड्डे ताहे उसारे आपे ज्यों तिस पावे तिवें करे कर कर वेखै हुक्म चिल्लाए तिस निस्तारी जा को नदर करी नाणे रवत रह घट अंतर हर गुण गावे सोई आपे आप मलाए करता पुनरप जन्म ना हुई तत्ते तारू पवजल हुआ ता का अंत ना पाया ना तर ना तुल्हा हम बूढ़स तार ले तार नराया थत्थे थान थनंतर सोई जाका किया सब हुआ क्या परम क्या माया कही है जो तिस पावे सोई भला दद्दे दोष ना देऊ किसे दोष करमा आपनिया जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजे अवर जना तद्दे धार कला जिन छोड़ी हर की जीज न रंग किया तिसदा दिया सबनी लिया करमी करमी हुक्म पया नन्ने ना हां भोग नित भोगे ना दीठा ना संभलिया गली हो सुहागण पैने कंत न कबहू मैं मिलिया पपे पातशाह परमेश्वर वेखण को परपंच किया देखे बूझे सब किस जाने अंतर बाहर रव रहिया फप्पे फाही सब जग फासा जम कै संगल बंद लया गुर प्रसादी से नर उबरे जे हर सरनागत भज पया बब्बे बाजी खेलन लागा चौपड़ कीते चार जुगा जी जंत सब सारी कीते पासा ढालन आप लगा पब्बे पाले है से फल पावे है गुर प्रसादी जिन को पौ पया मनमुख फिर है ना चेत है मूड़े लाख चौरासी फेर पया मम्मे मोह मरण मधुसूदन मरण पया तब चेतव्या काया पीतर अवरो पड़िया मम्मा अखर विसरिया यही जन्म ना होवी कद ही जे कर सच पछाण गुरमुख आख गुरमुख बूझे गुरमुख एको जाने रारे राव रहिया सब अंतर
जेते किए जनता जंत अपाई तंदै सब लाए कर्म हुआ तिन नाम लया लल्लै लाए तंदै जिन छोड़ी मीठा माया मोह किया खाना पीना सम कर सहना पाणे तां कै हुक्म पया ववै वास देओ परमेश्वर वेखण कहो जिन वेस किया वेखै चाखै सब किछ जाणै अंतर बाहर रव रहिया राड़े राड़ करहे क्या प्राणी तिसह त्यावो जे अमर होवा तिसह त्यावो सच समावो ओस विटोह कुर्बान किया हाहे होर न कोई दाता जी उपाई जिन रिजक दिया हर नाम त्यावो हर नाम समावो अन दिन लाहा हर नाम लिया आयड़े आप करे जिन छोड़ी जो किस करना सो कर रहया करे कराए सब किस जाने नानक शायर इव कहया राग आसा महला तीजा पट्टी एक ओंकार सतगुर प्रसाद अयो अंग सब जग आया काके कंग काल भया रीरी लल्ली पाप कमाने पर अवगण गुण विसरिया मन ऐसा लेखा तू की पढ़िया लेखा देना तेरे सिर रहिया रहाउ सिदंगा सिमरह नाही नन्ने ना तुद नाम लया सस्सै सीजह अहन समूड़े क्यों छूटह जम पाकड़िया बब्बे बूजह नाही मूड़े परम भुले तेरा जन्म गया अणहोंदा ना उतरायो पांदा अवरा का भार तुद लया जजै जोत हिर लई तेरी मूड़े अंत गया पछतावहगा एक शब्द तू चीनह नाही फिर जूनी आवहगा तुद सिर लिखिया सो पढ़ पंडित अवरा नो ना सखाल बिखिया पहला फाहा पया पांदे पिछों दे गल चाटड़िया सस्सै संयम गयो मूड़े एक दान तुद पथाई लया साई पुत्री जजमान की सा तेरी एत धान खादै तेरा जन्म गया मम्मै मात हिर लई तेरी मूड़े हों मैं वड्डा रूप पया अंतर आत्मै ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज भया ककै काम क्रोध भरम्यो मूड़े ममता लागे तुद हर विसरिया पढ़ै गुण है तू बहुत पुकार है विन बूजे तू डूब मुआ तत्तै तामस जल्यो हो मूड़े थत्तै थान पृष्ट होआ कग्गै घर घर फिरहै तू मूड़े दद्दै दान ना तुद लया पप्पै पार न पवही मूड़े परपंच तू पलच रहया सच्चै आप खुआयो हो मूड़े एहो सिर तेरे लेख पया पब्बै भवजल डुबो मूड़े माया विच गलतान पया गुर प्रसादी एको जाने एक घड़ी मह पार पया वावे वारी आईया मूड़े वास देव तुद भी सरिया ए वेला ना लह सह मूड़े फिर तू जम कै वस पया झज्जै कदे ना झूरह मूड़े सतगुर काप देस सुन तू विखा सतगुर बाजो गुर नहीं कोई न गुरे का है नाउ बुरा तद्दै तावत वर्ज रख मूड़े अंतर तेरे निदान पया गुरमुख हो वह ता हर रस पी वह जुगा जुगंतर खाही पया गगै गोविंद चित कर मूड़े गली किने ना पाया गुर के चरण हृदय वसाए मूड़े पिछले गुनहा सब बख्श लया हा है हर कथा बूझ तू मूड़े ता सदा सुख होई मन मुख पढ़े तीता दुख लागे बिन सतगुरु मुक्त ना हुई रारे राम चित कर मूड़े हृदय जिन कै रव रहया गुर प्रसादी जिन्नी राम पछाता निर्गुण राम तिन्नी बूझ लहया तेरा अंत ना जाई लखिया
अकथ न जाई हर कथिया, नानक जिन को सतगुर मिलिया, इनका लेखा निबड़िया। राग आसा महला पहला, संत कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मुंद जोबन बालड़िए मेरा पिर रलिया ला राम, तन पिर नेहो कणा रस प्रीत दयाला राम, तन पिरह मेला हुए स्वामी, आप प्रभ कृपा करी, सीजा सुहावी संग पिरकै, सात सर अमृत भरी, कर दया मया दयाल साचे, शब्द मिल गुण गावो, नानका हर वर देख बिगसी, मुंद मन अमाहो, मुंद सहज सुलो नड़िए, एक प्रेम बिनंती राम, मैं मन तन हर पावे, प्रभ संगम राती राम, प्रभ प्रेम राती हर बिनंती, नाम हर कै सुख वसै, तौ गुण पछाण है ता प्रभ जान है, गुण है वस अवगुण नसै, तुद बाज एक तिल रह ना साका, कहन सुनन ना तीजे, नानका प्रियो प्रियो कर पुकारी, रसन रस मन पीजे, सखी हो सहेलड़ी हो मेरा पिर बन जारा राम, हर नामो वणन जड़िया रस मोल अपारा राम, मोल अमोलो सच कर ढोलो, प्रभ भावे ता मुंद भली, एक संग हर कै करह रलिया, औ पुकारी दर खली, करन कारण समरथ श्री तर, आप कारज सारे नानक नदनी तन सुहागण, शब्द अब साधारे हम कर साचा सोहिलड़ा, प्रभ आयड़ी मीता राम, रावे रंग रातड़िया मन लियड़ा दीता राम, अपना मन दिया हर वर लिया, ज्यो भावे त्यो रावे, तन मन पिर आगै शब्द सुभागै, कर अमृत फल पावे, बुद्ध पाठ ना पाईऐ बहु चतुराईऐ, भाई मिले मन पाणी, नानक ठाकुर मीत हमारी, हम नाही लोकाणी, हासा महला पहला, अनहदो अनहद वाजै, रुण चुन कारे राम, मेरा मनो मेरा मन राता, लाल प्यारी राम, अन दिन राता मन बैरागी, सुन मंडल घर पाया, आद पुरख अपरंपर प्यारा, सतगुर अलख लिखाया, आसन बैसन तिर नारायण, तित मन राता विचारी, नानक नाम रते बैरागी, अनहद रुण चुन कारी, तित अगम पुरे, कहो कित बिद जाइए राम, सच संजमो सार गुणा, गुर शब्द कमाइए राम, सच शब्द कमाइए निज कर जाइए, पाइए गुणी निदाना, तित साखा मूल पत नहीं डाली, सिर सबना परधाना, जप तप कर कर संजम थाकी, हठ निग्रह नहीं पाइए, नानक सहज मिले जग जीवन, सतगुर बूझ बुझाइए, गुर सागरो रतनागर, कित रतन कनेरे राम, कर मजनू सप्त सरी, मन निर्मल मेरे राम, निर्मल जल नाए जा प्रभ भाई, पंच मिले विचारी, काम क्रोध कपट बिखिया तज, सच नाम उरतारी, हौ मैं लोभ लहर लभ थाके, पाए दीन दयाला, नानक गुर समान तीरथ नहीं कोई, साचे गुर गोपाला, हौ बन बनो देख रही, त्रिण देख सबाया राम, त्रे भवनो तुझह किया, सब जगत सबाया राम, तेरा सब किया तू ठिर थिया, तुद समान को नाही, तू दाता सब जाचक तेरे, तुद बिन किस सालाही, अण मंगिया दान दीजै दाते, तेरी भगत भरे भंडारा, राम नाम बिन मुक्त ना होई।

आद पुरुष अपरम्परु तारे नाम अग्मय गोचर अपरय पारा पार ब्रह्म परदानो आद जुगादि है पी होसी अवर झूठा सब मानो कर्म धर्म की सार ना जाने सुरत मुकट क्यों पाई नानक गुरमुख शब्द पछाण अहनस नाम त्याई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हम मैं ममता माया संग ना जाई राम मात पित भाई सुत चतुराई संग ना संपै नारी शायर की पुत्री पर हर त्यागी चरण तले विचारी आद पुरख एक चलत दिखाया जह देखा तह सोई नानक हर की भगत ना छोडो सहजे होए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच संभाले राम अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम अवगुण पर हर करनी सारी दर सच्चे सत्यारू आवन जावन थाक रहाए गुरमुख तत विचारू साजन मीत सजान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन पर गासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन रव रहिया जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मेलाया साध सभा संतां की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगत रति बैरागी चूकै मोह प्यासा नानक हों मैं मार पतीने विरले दास उदासा राग आसा।

सिरजनहार जीव सबना का दाता कर्म विधाता दुख बसारन हार जीव दुख बसारन हार स्वामी कीता जाका होवै कोट कुटंतर पापा केरे एक घड़ी मह खोवै हंस से हंसा बग से बग्गा घट घट करे बीचार जियो तू सबनी ताई जितै हो जाई साचा सिरजनहार जियो जिन एक मन प्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो तिन जम नेड़ ना आवै गुर शब्द कमावै कबहू ना आवै हार जियो ते कबहू ना हार है हर हर गुण सार है तिन जम नेड़ ना आवै जमन मरन तिना का चूका जो हर लागे पावै गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर धार जियो जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया तिसै विटोह कुर्बान जियो ताकी सेव करीजै लाहा लीजै हर दरगाह पाईऐ मान जियो हर दरगाह मान सोई जन पावै जो नर एक पछाणै ओह नव निध पावै गुरमत हर त्यावै नित हर गुण आख बखाणै अहनस नाम तिसै का लीजै हर उत्तम पुरख प्रधान जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया हौ तिसै बिटोह कुर्बान जियो नाम लैन से सो है तिन सुख फल होवै मन है से जिन जाहि जियो तिन फल तोट ना आवै जहां तिस पावै जे जुग केते जाहि जियो जे जुग केते जाहि स्वामी तिन फल टूट ना आवै तिन जरा ना मरना नरक ना परना जो हर नाम त्यावै हर हर करह से सूकह नाही नानक पीड़ ना खाहे जियो नाम लैन से सोह तिन सुख फल होवै।

कित पवह जंजाले राम साचा साहिब मन वसै की फासह जम जाले राम मछली वछुनी नैण रुनी जाल बदक पाया संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया भगत कर चित लाए हर सिउ छोड़ मनो अंदेसिया सच कह नानक चेतरे मन जीअड़िया परदेसिया नदियां वाह विछुनिया मेला संजोगी राम जुग जुग मीठा विस भरे को जाने जोगी राम कोई सहज जाने हर पछाने सतगुरु जिन चेतिया बिन नाम हर के भरम भूले पचह मुगद अचेतिया हर नाम भगत नारद साचा से अंत ताही रुनिया सच कह नानक शब्द साच मेल चिरीव सुनिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला तीजा संत घर पहला हम घरे साचा सोहिला साचा शब्द सुहाया राम धन पिर मेल भया प्रभ आप मलाया राम प्रभ आप मलाया सच मन वसाया कामन सहजे माती गुर शब्द शिंगारी सच सुवारी सदा रावे रंग राती आप गवाए हर वर पाए ता हर रस मन वसाया कहो नानक गुर शब्द सुवारी सफलियो जन्म सवाया दूजड़ै कामण भरम भुली हर वर ना पाए राम कामण गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम बिरथा जन्म गवाए मनमुख इयाणी अवगुणवंती झूरे अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलिया हदूरे देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चा शब्द सुपाए नानक बिन नावै कामण परम पलानी मिल प्रीतम सुख पाए फिर संग कामण जानिया गुर मेल मलाई राम अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई सहजे हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माणी सच्चै शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके भेखी मुक्त ना पाई नानक बिन भगती जग बौराना सच्चै शब्द मलाई सा तन मन आनंद भया हर जियो मेल प्यारे राम सा तन हर कै रस रसी गुर कै शब्द अपारे राम शब्द अपारे मिले प्यारे सदा गुण सारे मन वसी सेज सुहावी जा फिर रावी मिल प्रीतम अवगण नसी जित कर नाम हर सदा त्याई सोहे लड़ा जुग चारी नानक नाम रते सदा आनंद है हर मिलिया कारज सारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला तीजा शंत कर तीजा साजन मेरे प्रीतम हो तुम सह की भगत करे हो गुर सेवो सदा अपना।

तुम करहु ता फिर सह खुशी न आवी। भगत भाव एहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे, कह नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चित लावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे, हर सोहिला तिन सदा सदा जो हर गुण गावे। कर बैराग तू छोड़ पाखंड सो सहो सब किस जाने, जल थल महियल एको सोई गुरमुख हुक्म पछाने। जिन हुक्म पछाता हरी केरा सोई।

गुर का शब्द संभाले साथ तेरे सो सहु सदा है। एक खिन हर नाम संभाले जन्म जन्म के तेरे पाप कटे अंत परम पद पावे साचे नाल तेरा गंध लागे गुरमुख।

ऐतावत थम्या निज कर वस्या आई नाम विहाजे नाम लई नाम रहे समाई तावत थम्या सतगुर मिले दसवां द्वार पाया तिथे अमृत भोजन सहज धुन उपजै जित शब्द जगत थम रहा।

मरण जीवन की सोजी होई, गुर प्रसादी एको जान है, ता दूजा भाव ना होई, मन शांत आई बजी वधाई।

सब पर हर त्यागी सुन्ने सुन समावे बन जारे एक भगती आवह लाहा हर नाम ले जाए नानक मन तन अर्प गुर आगे जिस प्राप्त सो पाए रतना रतन पदारथ बहु सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत भरे भंडारा समुंद वरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक

राम निस्तारी, रामो राम नाम जपया, दुख किल विखनास गुआया राम, गुर परचै त्याया,

मन तन शीतल श्रृंगार सब हुआ, गुरमत राम परगासा। नानक आप अनुग्रह किया, हम दासन दासन दासा। जिन्नी रामो राम नाम वसारिया, ते मन मुख मूड अपागी राम। किन अंतरे मोह व्यापै, खिन खिन माया लागी राम। माया मल लागी मूड पय अपागी, जिन राम नाम नह पाया। अनेक कर्म करह अभमानी, हर रामो नाम चुराया। महा बिखम जम पंथ दुहेला, कालू खत्म हो अंधियारा। नानक गुरमुख नाम त्याया, ता पाए मोख द्वारा। रामो राम नाम गुरु, राम गुरमुखे जाने राम। एहु मनुआ खिन ऊब पयाली, भरम दा इकत कर आणै राम। मन इकत कर आणै, सब गत मित जाणै।

इस जुग में तुलहा जम काल नेड़ ना आवे नानक गुरमुख राम पछाता कर कृपा आप मलावे रामो राम नाम सते सत गुरमुख जानिया राम सेव को गुर सेवा लागा जिन मन तने अर्प चढ़ाया राम मन तने अर्पया बहुत मन सरदया गुर सेवक पाए मलाए।

हर हर गुण गाया, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन परधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर शब्दी हर रस भोग जियो, हर रस भोग महा निर्जोग, वडभागी हर रस पाया, से धन वड्डे सतपुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया, जन नानक रेण मंगै पग साधू।

मन तन हर गावे हैं, परम सुख पावे हैं, हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो, गुण ज्ञान पदार्थ हर हर कृतार्थ, शोभा गुरमुख हुई अंतर बाहर हर प्रभ एको, दूजा अवर ना कोई, हर हर लिव लाई हर नाम सिखाई, हर दरगाह पावे मान जियो, सत युग सब संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो, तेता जोगे आया अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो, पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया, मन हृदय क्रोध जलाए दियो, मन हृदय क्रोध महा विसलोद, निरपता वह लड़ दुख पाया, अंतर ममता रोग लगाना, हों मैं अहंकार वधाया, हर हर कृपा धारी मेरा ठाकुर, देख गुरमत हर नाम लह जाए जियो, एता जोगे आया अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो, जुग द्वापर आया परम परमाया, हर गोपी कान उपाए जियो, तप तापन ताप है जग पुन आरंभ है, अत किरिया कर्म कमाए जियो, किरिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया, दोए पग टिकै टकाए जियो, महाजुद्ध जोध बहु कीने, विच हों मैं पचै पचाए दियो, दीन दयाल गुर साध मलाया, मिल सतगुर मल लह जाए जियो, जुग द्वापर आया परम परमाया, हर गोपी कान उपाए जियो, कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टकाए जियो, गुर शब्द कमाया औखद हर पाया, हर कीरत हर शांत पाए जियो, हर कीरत रोते आई हर नाम वडाई, हर हर नाम खेत जमाया, कल युग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया, जन नानक गुर पूरा पाया, मन हृदय नाम लखाए जियो, कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टकाए जियो, आसा महला चौथा, हर कीरत मन पाई परम गत पाई, हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया, तुर मस्तक भाग प्राण जियो, तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग, हर नामे हर गुण गाया, मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी, हर नामे हर सोहाया, ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया, मिल सतगुर मनुआ मान जियो, हर कीरत मन पाई परम गत पाई, हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया, ते उत्तम जन प्रदान जियो, तिन हम चरण सरेव है खिन खिन पग धोवै है, जिन हर मीठ लगान जियो, हर मीठा लाया परम सुख पाया, मुख भागा रती चारी, गुरमत हर गाया हर हार उर पाया, हर नाम कंठ धारी, सब एक दृष्ट समत कर देखै, सब आत्म राम पछाण जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया, ते उत्तम जन प्रधान जियो, सत संगत मन पाई हर रसन रसाई, विच संगत हर रस होए जियो, हर हर अराध्या गुर शब्द विगासिया, बीजा अवरना कोए जियो, अवरना कोए हरे अमृत सोए।

संगत मन पाई हर रसन रसाई विच संगत हर रस होए जियो हर दया प्रभ तार हो पाखण हम तार हो कद लेवो शब्द सुपाए जियो मोह चीकड़ पाथे निगरत हम जाते।

गुरु मंत्र दृढ़ाए हर रस कर साए, हर अमृत हर मुख चोए जियो, हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया, फिर बहोड़ मरना होई, हर हर नाम।

बिन सह बिन सबनासै लग गुरमुख अस्थिर होए जियो। आसा महला चौथा संत वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर आदि निरंजन निरंकार जियो। ता की गत कही ना जाई अमित वड्याई मेरा गोविंद अलख अपार जियो। गोविंद अलख अपार।

गोचर आद निरंजन निरंकार जियो, तू आद पुरख अपरंपर करता, तेरा पार न पाया जाए जियो, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर, सब मैं रहया समाए जियो, घट अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर, ताका अंत न पाया, किस रूप न रेख अदिष्ट अगोचर, गुरमुख अलख लखाया, सदा आनंद रहै दिन राती, सहजे नाम समाए जियो, तू आद पुरख अपरंपर करता, तेरा पार न पाया जाए जियो, तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी, हर हर गुणी निदान जियो, हर हर प्रभ एको अवर ना कोई, तू आपे पुरख सुजान जियो, पुरख सुजान तू प्रधान, तुद जेवड़े अवर ना कोई, तेरा शब्द सब तू है वरत है, तू आपे करह सो होई, हर सब मह रव्या एको सोई, गुरमुख लखिया हर नाम जियो, तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी, हर हर गुणी निदान जियो,

सब तेरे शब्द समाए दियो, सब शब्द समावे जां तुद पावे, तेरे शब्द वडियाई गुरमुख बुद्ध पाईए आप गवाईए, शब्दे रहिया समाई तेरा शब्द अगोचर गुरमुख पाईए।

तेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजी जिस लागी पीर पेरा मुकी सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखी है मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर

हर पाया, हर भगत एक मंगा, मेरा मन तन शब्द विगासिया, जप अनंत तरंगा, मिल संत जना हर पाया, नानक सत संगा, दीन दयाल सुन बेनती, हर प्रभ हर राया राम राजी, हों मांगू सरन हर नाम की, हर हर मुख पाया, भगत वच्छल हर बिरद है,

आसा महला चौथा जिन मस्तक तुर हर लिखिया तिना सतगुर मिलिया राम राजी अज्ञान अंधेरा कट्ठा।

मेरा सतगुरु सोथान सुहावा राम राजी गुरसिखी सोथान पालिया लै तूर मुख लावा गुरसिखा की काल ताए पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर

गुर सिखा की भुख सब गई, तिन पिछै होर खाए कनेरी। जन नानक हर कुन बीजिया, फिर तोट ना आवै हर कुन केरी। गुर सिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजी। कोई कर गल सुनावै हर नाम की, सो लगै गुर सिखा मन मिठा। हर दरगाह गुर सिख पैलाई है, जिन्ना मेरा सतगुरु टुठा। जन नानक हर हर होया हर।

हर जुग जुग भगते अपाया, पैज रख दाया राम राजी, हर नाखश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया अहंकारियां।

करे, मन तृष्णा ना बुझि मेरे प्यारे, नित आस करे, नित जोवन जावे मेरे प्यारे, जम सास हिरे, भाग मणि सुहागण मेरे प्यारे, नानक हर पुर तारे, फिर रत्याड़े मैंडे लोइन मेरे प्यारे, चात्रक बूंद जिवें मन

ये रुते फिर बाजड़े हो मेरे प्यारे आंगन धूड़ लुते मन आस उड़ीनी मेरे प्यारे दोए नैन जुते गुरु नानक देख बिगसी मेरे प्यारे ज्यों मात सुते।

हर बिन प्रेम ना खेल सा क्यों पाई गुर जित लग प्यारा देख सा हर दातड़े मेल गुरु मुख।

सब किस मैं सब किस पाया नाम त्याई राम नाम त्याई सदा सखाई सहज सुपाई गोविंदा गणत मटाई चूकी ताई कदे ना व्यापै मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अचरज सोब बनाई कहो नानक फिर मेरे संगे ता मैं नव निध पाई सरसे अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता भरम गड़ा पाया खजाना बहुत नदाना साणथ मेरी आप खड़ा सोई सुगयाना सो परदाना जो

हर रंग माणी हर संता हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड भागी सत संगत पाई राम वड भागी पाए नाम ते आए लाथे दूख संतापै गुर चरणी लागे प्रम पौ भागे आप।

हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम सद बलिहारे कर नमस्कारी जिन भेटत प्रभ जाता घट घट रव रहा सब थाई पूरन पुरख विधाता गुरपुरा पाया नाम त्याया जुए जन्म न हारे बिनवंत नानक सरन तेरी राख किरपा धारे बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम तेरे चरना तेरे चरण धूड़ वडभागी पावा राम हर धूड़ी नाइए मैल गवाइए जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभ साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा बिनवंत नानक गुर सरन तरिये अपने प्रभ पावा आसा संत महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर चरण कमल मन बेदिया किशियान न मीठा राम राजे मिल संत संगत आराध्या हर घट कटे दीठा राम राजे हर घट कटे दीठा अमृतो बूठा जन्म मरण दुख नाठे गुण निद गाया सब दुख मटाया हम मैं बिनसी गांठे प्रियो सहज

जल संग राती माछली नानक हर माते चातरक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अदारा राम राजे मालक जीना।

ताठी पीत परम की भेटत गुर सूरा राम राजे पूर्ण गुर पाए पुरब लखाए सब निद दीन दयाला आद माध अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला सुख सहज आनंद कनेरे

हा कहो नानक संत अनंत ठाकुर के हर सियों की जय नेहा मन ऐसा नेहो करे हो चकवी सूर स्नेहो चितवै आस घणी कद दिन यर देखी है गोकले अंब प्रीत चवै सुहाविया मन हर रंग कीजी है हर प्रीत करीजै मान ना कीजै इक राती के हब पाहुणिया अब क्या रंग लायो मोहर चायो नांगे आवन जावणिया थिर साधु सरनी पड़ी है चरनी अब टूटस मोह जो कीती है कहो नानक संत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिन यर देखी है निष्करंक जैसे नाद सुन श्रवणी हियो डिवै मन ऐसी प्रीत कीजै जैसी तरण पतार उर्जी तिरह सिवै एहो मन लाल दीजै मन लालह दीजै भोग करीजै हब खुशियां रंग माणी तेरे अपना पाया रंग लाल बनाया हत मिलियो मित्र चराणी।

मन हर चरण गिहिजै, ऐसी मन प्रीत कीजै। आसा महला पंजवां सलोक, बन बन फिरती खोजती, हारी बहु अवगाही। नानक पेटे साध जब, हर पाया मन माही। संत जां को खोजह असंख मुनि, अनेक तपे, ब्रह्मे कोट अराधह ज्ञानी। जाप जपे, जप ताप संयम क्रिया पूजा, अनक सोधन बंदना, कर गवन बसदा। तीर्थ है मज्जन, मिलन को निरंजना, मानुख बन तिन पशु पंखी, सगल तुझ है आराधते। दयाल लाल गोबिंद नानक, मिल साध संगत होए गते। कोट बिसन अवतार, शंकर जटा धार, चाह है तुझ दयार। मन तन रुच अपार, अपार अगम गोविंद ठाकुर, सगल पूरक प्रभ धनी। सुर सिद्ध गण गंधर्व त्यावह, जख किनर गुण भनी। कोट इंदर अनेक देवा, जपत स्वामी जय जयकार। अनाथ नाथ दयाल नानक, साध संगत मिल उधार। कोट देवी जाको सेवह, लक्ष्मी अनक पांत। गुप्त प्रगट जाको राध है, पौन पानी दिन सरात। नखियतर ससियर सूर त्यावह, वसुद गगना गावे। सगल खानी सगल बाणी, सदा सदा त्यावे। सिमरत प्राण चतर बेद, खट शास्त्र जाको जपात। पतत पावन भगत वचल, नानक मिली है संग सात। जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी, अनजानत जो सेवै तेती नह जाए गनी। अवगत अगंत अथाह ठाकुर, सगल मंजे बाहरा। सर्ब जाचक एक दाता, नह दूर संगी जाहरा। वस भगत थिया मिले जिया, ताकी उपमा कित गनी। एहो दान मान नानक पाए, सीस साधा धर चरनी। आसा महला पंजवा सलोक, उदम करहो वडभागी हो। सिमरो हर हर राय, नानक जिस सिमरत सब सुख होवह। दुख दर्द भ्रम जाय, संत नाम जपत गोबिंद नह अलसाई। भेटत साधु संग, जमपुर नह जाइए। दुख दर्द ना पौ ब्यापै, नाम सिमरत सद सुखी। सास सास अराध हर हर, त्याए सो प्रभ मन मुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण निध, कर दया सेवा लाइए। नानक पयंपै चरण जंपै, नाम जपत गोबिंद नह अलसाइए। पावन पतत पनीत नाम निरंजना, परम अधेर बनास ज्ञान गुर अंजना। गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन, जल फल मही अल पूरिया। एक निमख जा कैर दैवसिया, मिटे तिसै वसूरिया। अगाध बोध समरथ स्वामी, सर्ब का पौ भंजना। नानक पयंपै चरण जंपै, पावन पतत पुनीत नाम निरंजना। ऊट गही गोपाल दयाल कृपा निदे, मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे। हर चरण कारण करण स्वामी, पतत उधरन हर हरे। सागर संसार पाव उतार, नाम सिमरत बहुतरे। आद अंत बेअंत खोजह, सुनी उधरन संत संग बिदे। नानक पयंपै चरण जंपै, ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वचल हर

सहज सुभाई भगत कार्य सारिया आनंद हर जस महामंगल सर्व दुख वसारिया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नानक पयम पै चरण जम पै

पावी अवनाशी अवघत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सद सदा प्राण पत गत मत जाति प्रिय प्रीत प्रीतम पावे नानक वखाणे गुर बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे ना जावे जाको राम पतार ता कै अनद घना सुखवंती सहनार सोभा पूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्ब सिद्ध नवनिद तित ग्रह नहीं ऊना सब कशु मधुर बाणी प्रह मानी थिर सुहागता का बना नानक वखाणे गुर बचन जाने जा को राम पतार ता कै अनद घना आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीसों चरण पखार आप त्यागी है ताजे आप मिटे संताप आप नह जनाई है सरण गिही जय मान लीजै करे सो सुख पाई है।

तपास सेवा लागी है, जां कै मस्तक भाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया, साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लागिया, परम मोह विकार दूजा सगल तिनह त्यागिया, मन शांत सहज सुभाव बूठा, आनंद मंगल गुण गाया, नानक वखाणे गुर बचन जाने, जा कै मस्तक।

कर जोड़। हर हर नाम देहो, हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया, कतहु ना तामो शरण पावो, करना मैं प्रभ करमया। समर्थ अगत अपार निर्मल, सुनो स्वामी बिनो एहो, कर जोड़ नानक दान मांगे, जन्म मरण निवार ले हो। अपराधी मत हीन, निर्गुण अनाथ नीच, साठ कठोर कोलहीन, व्यापत मोह कीच, मल परम कर्म अहं ममता, मरण चीत न आवे, बनता बनोद आनंद माया, अज्ञान ताल पटावे, खिसे जोबन बदे जरुआ, दिन निहारे संग मीच, बिनवंत नान।

संग मीठे भोग सोहन प्रमत भार अगमते आयो बहु परदेसह धायो अब ओट धारी प्रभ मरारी सर्व सुख हर नायो राखन हारे प्रभ प्यारे मुझते कछु ना हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरह पौन नाम तारीक उदारे भगत है संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवन सुन श्रवन बानी पुरख ज्ञानी मन धाना पावे हर रंग राते प्रभ बधाते राम के गुण गावे बसद कागद बनराज कलमा।

पुरख पते भगवान ताकी शरण गही निरपौ पये प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुत मीत सुरजन इष्ट बंधप जानिया गह कंठ लाया गुरम लाया जस बिमल संत बखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही प्रभ एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप भय राम नाम उरहार बिख के दिवस गए गत परम मोह बेकार बिनसे जोन आवन सब रहे अग्न सागर भय शीतल साध अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समृत बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याहे पूरन साध संग पाई परम गति जह देखो तह संग एको रव रहिया घट घट वासी आप विरल किने लहिया जल थल महियल पूर पूरन कीट हस्त समानिया आदि अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निध जन कहिया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहिया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कल मल पाप तरे दुख भूख दारिद्र नाठे प्रगट मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल संभूहा सब तरे दिन सरैन आनंद अन दिन सिमरंत नानक हर हरे।

गोविंद रमण निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत संत इन्नी रह नड़ी है चाम कन तारी जाग है संत जना मेरे राम प्यारे सदा जाग है नाम सिमर है अन दिनो चरण कमल ध्यान हिरदय प्रभ बिसर नाही एक खिनो ताज मान मोह विकार मन का कलमला दुख जारी बिनवंत नानक सदा जाग है हर दास संत प्यारी मेरी से जड़ी है आडंबर बनिया मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया प्रभ मिले स्वामी सुखागामी चाव मंगल रस परे अंग संग लागे दुख भागे प्राण मन तन सब हरे मन इच पाई प्रभ त्याई संजोग साहा शुभ गणिया बिनवंत नानक मिले श्री तार सगल आनंद रस बनिया मिल सखियां पुछ है कहो कंत नी छाणी रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी गुण गूढ़ गुप्त अपार करते निगम अंत ना पावहे भगत भाए त्याए स्वामी सदा हर गुण गावहे सगल गुण सुगयान पूरन अपने प्रभ पाणी बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज समाणी सुख सोहिलड़े हर गावन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन भागे सुख सहज सरसे हर नाम रहस्ते प्रभ आप कृपा धारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवस आए सहज पाए सगल निध प्रभ पागे बिनवंत नानक सरण स्वामी सदा हर जन तागे हासा महला पंजवा उठ मंज बटाउड़िया तैं क्या चिर लाया मोहलत पुन्नड़िया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया करहें पाप अमित्या तन पसम टेरी जमै हेरी काल बपड़ै जितया माल जोबन छोड़ वैसी रहे ओ पैनन खाया नानक कमाणा संग जुलिया नह जाए किरत कमाया हाथ हो मिर्ग जिवै पेख रहन चंद्रायन सुख हो दुख भये नित पाप कमायन पापा कमाणे छड़ह नाही लै चले कत गलाविया हर चंदौरी देख मूठा कूड़ सेजा रावया लब लोभ अहंकार माता गर्भ भया समायन नानक मृग अज्ञान बिनसे नह मिटै आवन जायन मिठै मख मुआ क्यों लए उडारी हस्ती गर्त पया क्यों तरियै तारी तरण देहला भया खिन मह खसम चेतना आयु दुखा सजाई गणत नाही की आय अपना पायु गुजा कमाणा प्रगट होवा ईत उतह खुआरी नानक सतगुर बाज मूठा मन मुखो अहंकारी हर के दास जीवे लग प्रभ की चरनी कंठ लगाए लिए तिस ठाकुर सरनी बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना आप नाम जपाया साध संगत आप हुआ आप जगत तराया।

धर्म करे दूत भय पलायन धर्म धीरज सहज सुखिए साध संगत हर भजे कर अनग्रहो राख लीने मोह ममता सब तजे गह कंठ लाए गुरमलाए गोविंद जपत अगायण विनवंत नानक सिमर स्वामी सगले आस पुजायण निद सिद चरण गहे ता केहा काड़ा सब किस वस जिसै सो प्रभु असाड़ा गह पुजा लीने नाम दीने करतार मस्तक राखिया संसार सागर नह व्यापै हम्यों हर रस चाखिया साज संगे नाम रंगे

आयो माथे जिस पास लुकाइंदड़ो सो वेखी साथ है संग देख करनहारा काए पाप कमाइए सो कृत की जय नाम लीजे नरक मूल ना जाइए आठ पहर हर नाम सिमरहो चले तेरे साथी भज साध संगत सदा नानक मिट है दुख कमाते वलवंच कर उदर पर है मूर्ख गावारा सब किश दे रहया हर देवन हारा दातार सदा दयाल स्वामी काए मनु विसारी है मिल साध संगे भजन संगे कुल समूहा तारी है सिद्ध साधक देव मुन जन भगत नाम आधारा बिनवंत नानक सदा भजिए प्रभ एक करने हारा खोट ना कीचई प्रभ परखण हारा कूड़।

तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरण आई आया। जल थल महियल रविया स्वामी पूछ अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल अधारा। एक हर चंदौरड़ी अस्त्र किस नाही माया रंग जेते से संग ना जाही। हर संग साथी सदा तेरे दिन सरहण संभाली है हर एक बिन काशे अवर नाही। भावो दुतिया जाली है मीत जोबन माल सर्बस प्रभ एक कर मन माही बिनवंत नानक।

पाद कमला प्रम पीत कमला प्रम पीत हे तीखण मद विपरीत हे अवध अकारत जात गहबर बन कोर गहबर बन कोर हे ग्रह मूसत मन चोर हे दिन करो अन दिन खात जात बेहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते कुल रूप धूप ज्ञान हीनी तुझ बिना मोहे कमन मात कर जोड़ नानक सरण आयो प्रिय नाथ नरहर करो।

नानक मगन होत अलियल गुंजात, अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास, चातरक चित प्यास हे घन बूंद विचित्र मन आस हे अल पीवत बिन सतताप तापा बनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत घना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कमन रसना गुण पना गह पुजा लेव हो नाम देव हो दृष्ट धारत मिटत पाप नानक जम पै पतत पावन हर दर्श पेख

करत न लागी वार। महला दूजा, जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़ हजार। एते चानन होंदिया गुरबिन घोर अंधार। महला पहला, नानक गुरु ना चेतनी मन।

रत्ते से जन गए हार गए से ठगण वालिया लिख नावे धर्म बहालिया। सलोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लग है पराणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख वडान रहया विस्माद। नानक बुझण पूरै भाग महला पहला। कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत पौ सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत

कुदरत जाति जिन सी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्मै अंदर वेखै वरतै ताको ताक पौड़ी आपी न भोग भोग कै होए पसमड़ पौर सदाया वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल कत चलाया अगे करनी कीरत वाची है बहलेखा कर समझाया।

कोलू चरखा चक्की चक, थल वारोले बहुत अनंत, लाटू मादानिया अनगाह, पंखी पौंदिया लैन ना साह, सूए चाड़ पवाई यह जंत, नानक पौंदिया गणतना अंत, बंधन बंद पवाए सोए, पै किरत नचै सब कोए, नच नच हसह चलह से रोए, उड़ ना जाही सिद्ध ना होहे।

सब तिसदा देखा जै आख गवाई है जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनो नीच सदाई है जे जरवाना पर हर है जर वेस करें दी आई है को रह ना परिये पाईये सलोक महला पहला मुसलमाना सिफत सरयत।

तीर्थ नावह अर्चा पूजा अगर वास बहकार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन।

गया हों विच जमया हों विच मुआ हों विच दिता हों विच लया हों विच खटिया हों विच गया हों विच सचियार।

वंदना फिर फिर जोनी पाहे। हों मैं कितों उपजे कित संजम एह जाए। हों मैं एहो हुक्म है पये किरत फराहे। हों मैं दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे। कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए। नानक कह सुनो जनहो हित संयम दुख जाहे। पौड़ी सेव कीती संतोखे जिनी सचो सच ते आया। ओनी मंदै पैर ना रखियो कर सो किरत धर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया। तू बख्शी सी अगला

जिन सचो सच वरताया, जिस तू देहे तिस मिलै सच, ता तिन्नी सच कमाया, सतगुर मिलिया सच पाया।

मल उतरै तन करे हच्छा तोय सच तां पर जानिए जा सच धरे प्यार नाउ सुन मन रहसिए ता पाए मोख द्वार।

निवास सच सबना हुए दारू पाप कड्डे तोए नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले हुए पौड़ी दान महिंदा तली खाट जे मिले ता मस्तक लाई है कूड़ा लालच छड़ी है होए एक मन अलख ते आई है फल तेवे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे होवे पूर्व लिखिया ता धूड़ तिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है सलोक महला पहला सच काल कूड़ वरतिया कल कालक बेताल बियो बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल जे एक होए ता उगवै रुती हूं रुत होए नानक पाहै बाहरा होरै रंग ना सोए भै विच खुंभ चढ़ाई है शर्म पाह तन होए नानक भग

पाहे भरे मरदार। ज्ञानी नचह वाजे वावह रूप करह सिंगार। ऊचे कूकह वादा गावह जोदा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत

जिनकी लेख पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तुर कर्म जिन्ना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया इन्ना जनता कै बस किश नाही तुद वेकी जग ते उपाया इक नानू तू मेल लै इक आपो तुद खवाया गुर किरपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया। सलोक महला पहला।

होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाउ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बातां जो किछ करना सो कर रहया महला दूजा जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पेओ नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा एक

साच रहे सबको सच समावे। रिग कह रहे आ भरपूर राम नाम देवा महसूर। नाए लय परास्त जाहे नानक तौ मुख अंतर पाहे। जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया। पार जात गोपी लै आया बिंद्रा बन मह रंग किया। कल मह वेद अथर बन हुआ नाउ खदाई अल्लुह भया।

वारिया, जित मिलिया खसम संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया, खसम छोड़ दूजे लगे डुबे से बन जा रिया, सत गुरु है बोहे था विरले किने विचारिया, कर किरपा पार उतारिया, सलोक महला पहला, सिमल रुख सरायरा, अत दीर्घ अत मोच, हुए जे आव है आस कर, जाहे नरासे केत, फल फिके फुल बक बके, कामना आवे है पत, मिठत नीवी नानका, गुण चंगे आईया तत, सब को निमै आप को, पर को निमै ना कोई, तर तारा जू तोली है, निमै सो गौरा होए, अपराधी दूना निमै, जो हंता मिर्गा हे, शीस नवाया क्या थी है, जा हृदय सुधे जाहे, महला पहला, पढ़ पुस्तक संध्या बादम, सिल पूजस बगल समाधम, मुख झूठ बेपूखण सारं, त्रैपाल तिहाल विचारं, गलमाला तिलक लिलाटं, द्वे तूती बस्तर कपाटं, जे जानस ब्रह्मं कर्मं, सब फोकट निश्चौ कर्मं, कहो नानक निश्चौ त्यावै,

धार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने होए प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे भावे सो करे मनहु चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगाह पैंदा जाए सी श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण कौ कर लावहु गोबर तरण ना जाई धोती टिक्का तै जप माली धान मलेच्छा खाई अंतर पूजा पढ़ कतेबा संजम तुरका भाई।

नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज करन मन भाव दे हर बुझण नाही हारिया कर फुरमाए सिखाया वेख महलत मरन वसारिया।

कोई, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई। सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवै रसोई, नानक सूतक एव ना उतरै ज्ञान उतारे तोय महला पहला। मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना पर त्रिय पर धन रूप, कन्नी सूतक कन पै लायत बारी खाहे। नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे। महला पहला सभो सूतक भरम है,

फिक्का मूर्ख आखिए पाणा लह सजाए महला पहला अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीरथ जे नावह उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार तिन ने लगा रब सेती देखने विचार रंग हस है रंग रूवह चुप भी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे नाह दरवाटे ऊपर खर्च मंगा

चंगी करे, दूजी पीवे रास पौड़ी, चाकर लगे चाकरी, जे चले खसम पाए, हुरमत किसनो अगली, ओह वजहो पे दूना खाए, खसम करे बराबरी, फिर गैरत अंदर पाए, वजहो गवाए अगला, मुहे मुहे पाना खाए, जिस दा दिता खावना, तिस कही ऐसा बास, नानक हुक्म ना चलई, नाल खसम चले अरदास, सलोक महला दूजा, एह कने ही दात, आपस ते जो पाई है, नानक सा करमात, साहिब तुठ है जो मिले महला दूजा, एह कने ही चाकरी, जित पौ खसम ना जाए, नानक सेवक कहडी है, जे सेती खसम समाए पौड़ी, नानक अंत ना जापनी, हर ताके पारावार, आप कराए साखती, फिर आप कराए मार, इक ना गली जंजीरियां, इक तुरी चढ़े बिसियार, आप कराए करे आप, हों कैस्यों करी पकार, नानक करना जिन किया, फिर तिस ही करनी सार, सलोक महला पहला, आपे पांडे साजियन, आपे पूरन दे, इकनी दुध समाई, इक चुल्ले रहन चढ़े, इक निहाली पै सवन, इक उपर रहन खड़े।

आप तिस विच जंत उपायिक दिख थाप उथाप किसनों कहिए नानका सब किछ आपे।

जियो गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कमन काज जग उपजै बिनसै कहो मोहे समझाया देव करो दया मोहे मार्ग लाभ हो।

इन बिद अपियो ना चूके कही ना उपजे उपजी जाने भाव अभाव बिहूना उदय अस्त की मन बुद्ध नासी तो सदा सहज लिव लीना ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा तो मन सुन समाना आसा गज साडे तै तै धूतियां तेरे पायन तग गली जिन्ना जप मालियां लोटे हाथ निबग वे हर के संतना आखी है बानारस के ठग ऐसे संतना मोह को भाव है डाला स्यों पेड़ा गटकाव है रहाव बासन मांज चिराव है ऊपर काट

गया न बाजी हारी मुई मेरी माई हों खरा सुखाला पहरो नहीं दगली लगे ना पाला रहाऊ बाल किस बापै जिन्हों जाया।

मेरा मन पाया, हम पूत तेरा तू बाप मेरा, एक ठाहर दोहां बसेरा, कहो कबीर जन एको बूझिया, गुर प्रसाद मैं सब किस सूझिया, आसा इकत पत्र पर उरकट कुरकट, इकत पत्र पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी, नकटी कोठन गन बाडाडू, किन्ह बबेकी काटी तू रहाऊ, सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलियां की हो बहन भान जी, जिन्ह बरी तिस चेरी, हमरू परता बडो बबेकी, आपे संत कहावे ओहो हमारे माथे कायम, और हमरे निकट ना आवे, नाकों काटी कानों काटी, काट कूट के

आगम निर्गम ज्योतिक जान है बहु बहु व्याकरण तंत मंत्र सब औखद जान है अंत तहु मरना राजभोग अर सतर संघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तहु मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे कहूं ना उबरना कहो कबीर इयो रामह जंपो मेट जन्म मरना आसा फीलर बाबी बल्द पखावज कौआ ताल बजावे।

रहाव बैठ सिंह कर पान लगावे कीस गलौरे लियावे कर कर मुसरी मंगल गावे कछुआ शंख बजावे बंस को पूत ब्याहन चलिया सोइने मंडप छाए रूप कन्या सुंदर बेदी ससै सिंह गुन गाए।

आसा बटुआ एक बहतर आधारी एको जिसह द्वारा नवे खंड की पृथ्वी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौनिध पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाओ खिंथा ज्ञान ध्यान कर सोई शब्द तागा मथ काले पंच तत् की कर मिर्गानी गुर कै मार्ग चाले दया पहुरी काया कर तुई दृष्ट

पढ़त गुणत ऐसे सब मारे, किन्हूं खबर ना जानी रहाओ। सकत सुनेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदौगा पाई। जोरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए। फर्द शरीरी नार ना छोड़े, तां ते हिंदू ही रही है। शाड कतेब राम भज बौरे, जुल्म करत है पारी। कबीर पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी। हासा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझे सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई। रे बौरे तोहे करी ना राख कोई, तू राम नाम जप सोई रहाओ। कां की मात पिता कहो कां को, कमन पुरख की जोई। ठट फूटे को बात ना पूछे, काढ़ो होई। देहरी बैठी माता रोए, खटिया ले गए पाई। लट छिटकाए तिरिया रोए, हंस अकेला जाई। कहत कबीर सुनो रे संतो, तै सागर कह ताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जम नहीं हटे गुसाई। दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा श्री कबीर जीओ के चौपदे एक तुके। सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया। हर का बलोव ना बलोव हो मेरे भाई, सहज बलोव हो जैसे तत ना जाई रहाओ। तन कर मटकी मन माहे बलोई, इस मटकी मह शब्द संजोई।

काज कथनी बदनी कैन कहावन समझ परी तो बिसरे ओ गावन कहत कबीर पंच जो चूरे इनते नाहे परम पद दूरे आसा सोते अपरा।

अखंडस अवगन मेरा रहाउ। जे अत क्रोप करे कर ताया, तां पी चीत ना राखस माया। चिंत भवन मन

रखवासी पास बैठी बीबी कवला दासी कंठे माला जेहवा राम सहंस नाम लै लै करो सलाम कहत कबीर राम गुण गावो हिंदू तुरक दो समझावो आसा श्री कबीर जीओ के पंच पदे नौ दो तुके पंज एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद पाती तोरै मालनी पाती पाती जीओ जिस पाहन को पा

डारी फूल शंकर देव तीन देव प्रताख तो रह करह किसकी सेव पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाओ जे एह मूर्त साची है तो गढ़न हारे खाओ पात पहत अरलापसी कर करा का सार भोगन हारे भोगया इस मूर्त के मुख शार मालिन भूली जग पुलाना हम

पन बीते, 20 वर्ष कस तप ना कियो, 30 वर्ष कस देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, शायर सोख भुजंग बलियो रहाओ, सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत है ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बह, जिहवा बचन शुद्ध नहीं निकसे, कबरे धर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिवलावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर धन पायो, अंते चलदिया नाल चलियो, कहत कबीर सुनो रे संत हो, अन तन कछुए लै ना गयो, आई तलब गोपाल।

सोकृत कर कर लीजै रे मन रहाउ। कुमारै एक जो माटी गूंदी बहु विद्वानी लाई। काहू मह मोती मुक्ताहल काहू ब्याद लगाई। सुमह धन राखण को दिया मुगद कह धन मेरा। जमका डंड मूंड मह लागे खिन मह करै निवेरा। हर जन उत्तम भगत सदावे आग्या मन सुख पाई। जो तिस भावै सत

फीकी। आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्त सरी की। माटी एक पेख तर नाना ता मैं ब्रह्म पछाना। कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दो जक स्यों मन माना। आसा गगन नगर एक

घर खबर ना पाई, क्या मांगू किस थिर ना रहाई, देखत नैन चल्यो जग जाई रहाउ, एक लख पूत सवा लख नाती, तेहे रावण घर दिया ना बाती, चंद सूरज जाके तपत रसोई, बैसंतर जाके कपड़े धोई, गुरमत राम

नाब कमल मह बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दूलोह पायो आसवड भाग हमारा सुर नर मुन जन कौतक आए कोट ते तीस उजाना कह कबीर मोहे ब्याहे चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरो रे सखी सहेली नंद गहेली देवर का बिरह जरों रे।

पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे, मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण, हृदय बस है गोविंदा, जम द्वार जब पूछस बबरे तब क्या।

अवतार चिरायु हो, कैसे खसम हमारे, तू बामन मैं कांसी के जुलहा, बुझो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे भूपत राजे, हर सो मोर त्याना, आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन सुमानं, साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निदानं, बाबा माया मोह हित कीन, जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाव, नैन देख पतंग उर्जे, पासना देख आग, काल पासना मुग्ध चेत, कनक कामन लाग, कर विचार विकार परहर, तरन तारन सोए, कह कबीर जग जीवन ऐसा, दुतिया नाही कोय, आसा जो मैं रूप किए बहुतेरे, अब फुन रूप न होय, तागा तंत साज सब ठाका, राम नाम बस होय, अब मोहे लाचनो न आवे, मेरा मन मंदरिया ना बजावे रहाओ, काम क्रोध माया ले जारी, तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना भया है पुराना, गया परम सब छूटी।

मह तेरा सोच विचार ना देखै खबर ना करै दीन के बौरे तां ते जन्म अलेखै रहाउ साचक ते बखानै अल्लाह नार पुरख नहीं कोई पड़े गुने नाही कछ बौरे जो दिल मह खबर ना होई अल्लाह गैब सगल घट पीतर।

रहो रहोरी बहुरिया कुंगट जिन काढ़े अंत की बार लहगी ना आढ़े रहाऊ। कुंगट काढ़ गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे। कुंगट काढ़े की यह बड़ाई दिन दस पांच बहु भले आई। कुंगट तेरो तो पर साचे हर गुण गाए।

जाना सब जागे आन तनायो ताना रहाओ। जब तुम सुन ले बेद पुराना तब हम इतनक पसरे उताना। तरन आकाश की कर गह बनाई चांद सूरज दोए साथ चलाई। पाई जोर बात एक कीनी तह तांती मन माना। जो लाहे घर अपना चीना घट ही राम पछाना।

जे तीर्थ लावे तिस बैकुंठ ना जाना। लोक पतीने कछु ना होवे, ना ही राम अयाना। पूजो राम ए

एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ जल तरंग हर फेन बुद बदा जल ते भिन न होई एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होई मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकिरत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मानिया कहत नाम देओ हर की रचना देखो हृदय बिचारी घट घट अंतर सर्ब निरंतर केवल एक मरारी हासा आनी ले कुंभ पराई ले उदक ठाकुर को स्नान करूं बयालीस लाख जी जल मह होते बीठल पहला काहे करूं जत्र जाऊं तत बीठल पहला महा आनंद करे सदके ला रहाओ आनी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हम पूज करूं पहले बास लई है पवर है बीठल पहला काहे करूं आनी ले दूध रिदाई ले खीरं ठाकुर को नैवेद करूं पहले दूध बटारियो बछरे बीठल पहला काहे करूं इबे बीठल उबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं थान तनंतर नामा प्रणवे पूर रहे हो तू सर्व मही आसा मन मेरो गाज जेहबा मेरी काती माप माप काटो जम की फासी।

बाद मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दुख बनास पंच दुख असाध जा मह तां की केत के आस माधो अविद्या हित कीन दुबेक दीप मलीन रहाव त्रिगद जोन अचेत संभव पुन पाप असोच मानुखा अवतार दुलभ तिहि संगत पोच जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए काल पास अबद लागे कशना चले उपाय रविदास दास उदास तज ब्रह्म तपन तप गुर ज्ञान भगत जन भय हरन परमानंद करो निदान आसा संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ संत आचरण संत चो मार्ग संत च ओलग ओलगणी और एक मांगो भगत चिंतावन जनी लखाव हो संत पापी सन रविदास भणै।

आनंद सुगंध निवासा माधो सतसंगत शरण तुम्हारी हम यौगन तुम उपकारी रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपियल हम बपुरे जस कीरा सतसंगत मिल रही है माधो जैसे मदपम खीरा जाति ऊंचा पाती ऊंचा ऊषा जन्म हमारा।

जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन तुझे चरण अरबिंद भवन मन पान करत पायो पायो रामैया धन रहाओ संपत बिपत पटल माया धन ता मह मगन होत ना तेरो जन प्रेम की जेवरी बांधे ओ तेरो जन कह रविदास छूटे बो कमन गुन आसा हर हर हर हर हर हर हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर निमत नाम देव दूध पे आया तौ जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता इयों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता माटी को पुतरा कैसे नचत है देखै देखै सुनै बोलै दौर्यो फिरत है रहाउ जब कछ पावै तब गर्भ करत है माया गई तब रोवन लगत है मन बच क्रम रस कसै लुभाना

साध दिनहु मोहब्बत जिन से सच्चिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते भोए भारथिए रहाओ आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन धन जड़ेंदी माओ आए सफल से।

खुदाई तू बख्शंदगी सेख फरीद खैर दीजै बंदगी आसा बोले सेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे एहो तन हो सी खाक निमाणी गोर करे आज मलावा सेख फरीद ताकम कुंजड़ियां मनहूम चिंदड़ियां रहाओ जे जाना मर जाइए घूमना आइए झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए।

आई, ऐसा सतगुर सेवी है मना, जित सेवे हैं गोविंद प्रीति उपजे, अवर विसर सब जाय, हर सेती चित गहर है, जरा का पौ न होवे, जीवन पदवी पाए रहाउ, गोविंद प्रीत स्यों एक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी, आप सेती आप खाया, ता मन निर्मल हुआ, ज्योति ज्योत समई, बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाईऐ, जे लोचै सब कोई, कूड़ै की पाल विचों निकलै, ता सदा सुख होए, नानक ऐसे सतगुर की क्या ओह सेवक सेवा करे, गुर आगै जियो तरे, सतगुर का पाणा चित करे, सतगुर आपे कृपा करे, गुजरी महला तीजा, हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी, हर की सेवा ते मनु चिंदिया फल पाई है, दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी।

हर मेरा सिमरत हर मेरा शास्त्र हर मेरा बंदप हर मेरा भाई हर की मैं भूख लागे हर नाम मेरा मन तृप्त है हर मेरा साख अंत होए सखाई हर बिन होर रास।

गुर आपने सत बलिहार जाऊं, सतगुर मिले हर मन वसे सहजे रह समाई रहाऊ, जा पहु पाए अपना बैराग उपजे मन आई, बैराग ते हर पाईए हर स्यों रह समाई, से मुकत जे मन जिन है फिर तात ना लागे आई, दसवें द्वार रहत करी त्रिभवन सूजी पाई, नानक गुर ते गुर होया वेखो तिस की रजाई, एहो कारण खना लागे आई, दसवें द्वार रहत करी त्रिभवन सूजी पाई, नानक गुर ते गुर होया

आज्ञा राम राम सबको कह कहे राम ना होए गुर प्रसादी राम मन वसे तां फल पावे कोई अंतर गोविंद जिस लागे प्रीत हर तिस कदे ना विसरे हर हर करह सदा मन चीत रहाओ हृदय जिन कै कपट वसे बाहर हूं।

आए, जिस नर की दुबदा ना जाए, धर्म राय तिस देश जाए, कर्म होवे सोई जन पाए, गुरमुख बूझे कोई, नानक विचो हउमै मारे, ता हर भेटै सोई, गुजरी महला तीजा, तिस जन शांत सदा मत निश्चल, जिसका अभमान गवाए, सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझै।

आवह पीवत रह सदा सुख होई रहाओ। सतगुर पेटे ता पारस होए, पारस होए ता पूज कराए, जो उस पूजे सो फल पाए, दीखिया देवे साच बुझाए। बिन पारस पूज ना हो वई, बिन मन परचे अवरा समझाए, गुरु सदाए अज्ञानी अंधा, किस ओहो मार्ग पाए। नानक बिन नदरी किछु ना पाई है, जिस नदर करे सो पाए, गुर प्रसादी दे वडियाई, अपना शब्द वरताए। गुजरी महला तीजा पंच पदे, ना कांसी मत उपजे, ना कांसी मत जाए। सतगुर मिले मत उपजे, ता एह सोजी पाए। हर कथा तू सुन रे मन, शब्द मन वसाए। एह मत तेरी थिर रहे, ता भरम विचों जाए। रहाओ हर चरण हृदय वसाए तू, किल विख हो वह नास। पंच भू आत्मा वस करह, ता तीर्थ करह निवास। मनमुख एहो मन मुगद है, सोजी किछु ना पाए। हर का नाम ना बुझई, अंत गया पछताए। एहो मन कांसी सब तीर्थ सिमरत, सतगुर दिया बुझाए। अठ सठ तीर्थ तिस संग रह, जिन हर हिरदै रहे आसमाए। नानक सतगुर मिले हुक्म बुझिया, एक वस्या मन आए। जो तुद भावे सब सच है, सच्चे रह समाए। गुजरी महला तीजा, तीजा एको नाम निधान पंडित, सुन सिख सच सोई। दूजे भाए जेता पढ़े, पढ़त गुणत सदा दुख होई। हर चरणी तू लाग रहो, गुर शब्द सोजी होई। हर रस रसना चाख तू, ता मन निर्मल होई रहाओ। सतगुर मिले मन संतोखी है, ता फिर तिछना भूख ना होए। नाम निधान पाया, पर कर जाए ना कोई। कथनी बदनी जे करे, मनमुख बूझ ना होए। गुरमत

जो आप ना पछाने सच ना धरे प्यार सच्चे जगत दहकाया कहना कछु ना जाए नानक जो तिस पावे सो करे ज्यों तिस की रजाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गुजरी महला चौथा चौपदे घर पहला हर के जन सतगुर सतपुरख।

खाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाऊ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आई, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल नानक नाम परगास। गुजरी महला चौथा, गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम। मिल सत संगत शब्द मन मोह है, जप गोविंद गोविंद त्याई है। सब को दान दे प्रभ को है, मेरे भाई जना मोको गोविंद। गोविंद गोविंद मन मोह है, गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा। मिल गुर साध संगत जन सो है रहाऊ, सुख सागर।

मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुर सरनाई, मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नावै त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख खावै, मुख फीका थुक थूक मुख पाई, जो जन हर प्रभ हर हर सरना, तिन दरगहा हर हर दे वडे आई, धन पन सबास कह प्रभ जन को, जन नानक मेन लय गल लाई, गुजरी महला चौथा, गुरमुख सखी सहेली मेरी, मोको देव हो दान हर प्राण जिवाया, हम हो वह लाले गोले गुर सिखा के, जिन्ना अन दिन हर प्रभ पुरख ते आया, मेरा मन तन बिरहो गुर सिख पग लाया, मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई, मोको करहो उपदेश हर मिले मिलाया रहाओ, जा हर प्रभ पावे ता गुरमुख मेले, जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया, बड भागी गुर के सिख प्यारी, हर निर्बाणी निर्बाण पद पाया, सत संगत गुर की हर प्यारी, जिन हर हर नाम मीठा मन पाया, जिन सतगुर संगत संग ना पाया, से भागहीन पापी जम खाया, आप कृपाल कृपा प्रभ तारी, हरे आपे गुरमुख मिले मलाया।

चौथा जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभ पाया मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे मन तन शीतल सब हरिया होवा वड भागी हर नाम।

मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाउ। तीर्ज धर्म गुरमत हर पाया, नित हर नामे हर सिउ चित लावे। अमृत बचन सतगुर की बाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे। निर्मल नाम जित मैल न लागे, गुरमत नाम जपै लिव लावे। नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया, ते भागहीन मोए मर जावे। आनंद मूल जग जीवन दाता, सब जन को आनंद करहो हर ध्यावे। तू दाता जी सब तेरे, जन नानक गुरमुख बख्श मलावे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुजरी महला चौथा घर तीजा। माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना कौ संबंध हर कर दिए। हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर, हर का तन मन सब हर के वस है। शरीर रहाओ भगत जना कौ श्रद्धा आप हर लाई। विचे ग्रिस्त उदास रहाई, जब अंतर प्रीत हर स्यों बन आई। तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ पाई। जित कारे कम हम हर लाई, सो हम करहें जो आप कराई। जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई, ते जन नानक राम नाम लिव लाई। गुजरी महला पंजवां चौपदे घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवह उद्दम, जा आहार हर जियो परया। सैल पत्थर मह जनते उपाय, ता कारजक आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले से तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई ना किसकी तरिया। सिर सिर

शरिया उन कवन खलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा वरिया गुजरी महला पंजवा चौपदी घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरियाचार करह खट करमा पितराती संसारी अंतर मैल न उतरे हुमे बिन गुरबाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा तारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाव सास्त वेद सिमरत सब सोदे

चारी अठसठ मज्जन कर इछनाना भ्रम आए धर सारी अनक सोच करह दिन राती बिन सतगुर अंधियारी धावत धावत सब जग धायो अब आए हर द्वारी दुर्मत मेट बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी गुजरी महला पंजवा हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया निमख न बिसरो मन ते हर हर साध संगत मह पाया माई खाते आयो घर कूता हर तन चलते हर तन बैसे हर तन जागत सूता रहाओ हर तन इशनान हर तन ज्ञान हर संग लाए ध्याना हर तन तुलहा हर तन बेड़ी हर हर तार पुराना हर तन मेरी चिंत वसारी हर तन लाहया धूखा हर तन ते मैं नव निध पाई हाथ चरयो हर थूका खाव हो खर्च हो टूट ना आवे हलत पलत कह संगे लाद खजाना गुरु नानक को दिया एहो मन हर रंग रंगी गुजरी महला पंजवा जिस सिमरत सब किल विख नासह पितरी होए उदारू सो हर हर तुम सद ही जापहु जा का अंत ना पारू पूता माता की आसीस निमख ना बिसरो तुम कहो हर हर सदा भजो जगदीश रहाओ सतगुरु तुम कहो होए दयाला संत संग तेरी प्रीत कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत।

सो अपना दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन भउ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस काटे रहाओ माया के संबंध सैन साक कित ही काम ना आया हर का दास नीच कुल ऊचा तिस संग मन बांछत फल पाया लाख कोट बिखिया के बिंजन ताम है त्रिशन ना बूझी सिमरत नाम कोट उजियारा बस्त अगोचर सूजी फिरत फिरत तुमरे द्वारे आया पै पंजन हर राया साध के चरण धूर जन बांछे सुख नानक एहो पाया गुजरी महला पंजवां पंच पदा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रथमे गर्भ माता कह वासा ऊहा छोड़ धरन मह आया चित्र साल सुंदर बाग मंदर संग न कछु हूं जाया अवर सब मिथया लोभ लभी गुरपुरे दियो हर नामा जी को एहा वस्त फबी रहाउ इष्ट मीत बंधप सुत पाई संग बनता रच हसिया जब अंती अवसर आए बनयो है उन पेखत ही काल ग्रसिया कर कर अनर्थ बिहाजी संपै सोयना रूपा दामा पहाड़ी को ओहो पहाड़ा मिलिया होर सगल पयो बेरा।

पदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख बिन से सुख किया निवासा तृष्णा जलन बुझाई नाम निदान सतगुरु दृढ़ाया।

तिन ही रख लिया सगल जुगत बने आई। कहो नानक प्रभ पुरख दयाला कीमत कहण ना जाई। गुजरी महला पंजवा दो पदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पतत पवित्र लिए करे अपने सगल करत नमस्कारु। वर्ण जात को पूछे नाही बांछ चरण रवारु। ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो सगल सृष्ट को तनी की जय। जन को अंग नरारु रहाउ साध संग नानक बुद्ध पाई। हर कीर्तन आधारु नाम देओ त्रिलोचन कबीर दासरु। मुक्त भयो चमियारु गुजरी महला पंजवा। है नाही को बूजन हारु जान कमन पता। शिव बरंच अर सगल मोन जन गह नास काहे गता। प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर बिद बुझिए।

पंजवा मन जोगी शास्त्रग कहावत सब कीने बस अपने ही तीन देव अर कोड़त तीसा तिनकी हैरत कछ ना रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जानस को मर्मा गुर कृपा ते लही रहाउ जीत जीत जीते सब थाना सगल भवन लपटही कहो नानक साधते भागी होए चेरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मटाया।

सगल निहोरा गुजरी महला पंजवा आल जाल प्रम मोहत जावे प्रभ सेती रंग लाई मन को एह उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जिस पेटे टूटह माया बंद बिसरना कबहू जाई रहाओ करत करत अनक बहु भांति

करी राजा रंक करै खिन पीतर नीचह जोत तरी त्याय अपनो सदा हरी सोच अंदेशा।

तह भरम अंधेरा नाही, ठाकुर जा सिमरा तू ताही, कर कृपा सर्व प्रत पालक, प्रभ को सदा सलाही, रहाउ सास सास तेरा नाम सुमारो, तुम ही कहो प्रभ आही, नानक टेक भई करते की, और आस बढ़ानी लाही। गुजरी महला पंजवां, कर कृपा अपना दर्श दीजै, जस गावो निसे अर भोर,

चरण कमल अराध हृदय एक स्यों लिव लाव पार ब्रह्म प्रभ दया तारी बक्षली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया।

तर पुत्र कलत्तर सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख नवारी मिले हर जन संत सर्ब बिद भ्रम ते पकार है कत है नाही चोट हर चरण सरन अपार प्रभ के दृढ़ गही नानक ओट गुजरी महला पंजवा घर चौथा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राज श्री तर सफल मूरत करण कारण योग गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बेयोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मटंत सिमरन काट जम दूत फास रहाउ सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना अपाउ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआउ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरण को दाता दुख भंजन सुख राय जाहे कलेश मिटे भै भरमा निर्मल गुण प्रभ गाय गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाउ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाउ रहाउ सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रगास भये साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ पहर हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उदरै बिनसी सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ सात शरण परिउ नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ गुजरे अष्टपदियां महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसी अले बरजत चोरी धावे त्रिह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावे केत हो बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाउ उर्द मूल जिस साख तलाहा चार भेद जित लागी सहज पाए जाए।

डाला। सर्वज्योत निरंजन शंभू छोटो बहुत जंजाला। सुन सिखवंते नानक बिनवै छोड़ो माया जाला। मन विचार एक लिव लागी पुनरप जन्म ना काला। सो गुरु सो सिख कतियले सो वैद जे जान रोगी। तिस कारण काम ना धंदा नाही धंदै गिरी जोगी। काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस माया। मन तत अवगत त्याया गुर प्रसादी पाया। ज्ञान ध्यान सब दात कथियले चेत बरन सब दूता। ब्रह्म कमल मद तास रसादन जागत नाही सूता। महागंभीर पत्र पाताला नानक सर्ब जो आया। उपदेश गुरु मम पुनः ना गर्भं बेख ताज अमृत पियाया। गुजरी महला पहला कमन कमन जाच है प्रभदाती। ताके अंत ना परह सुमार जैसी भूख होए अभयंतर। तू समरथ सच देवन हार ऐजी जप तप संयम सच आधार। हर हर नाम दे सुख पाई तेरी भगत भरे भंडार रहाओ। सुन समाद रह लिव लागे एका एकी शब्द विचार। जल थल धरन गगन तै नाही आपे आप किया करतार। ना तद माया मगन ना छाया ना सूरज चंद ना ज्योत अपार। सर्व दृष्ट लोचन अभयंतर एका नदर सोत्रे भवन सार। पवन पानी अगन तिन किया ब्रह्मा विष्णु महेश अकार। सर्वे जाचक तू प्रवदाता दात करे अपने विचार। कोट ततीस जाच है प्रभ नायक देंदे तोट नाही भंडार। ऊंदे भांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार। सिद्ध समाधि अंतर जाच है रिद्ध सिद्ध जाच करह जयकार। जैसी प्यास हुए माने अंतर तैसी

चिन्ना मध्यम हर शरणागत हर के लोग नाम रते केवल बैरागी सोग बजोग बिसर्जत रोग भाई रे गुर कृपा से भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहाउ हर गुण रसन रवह प्रभ संगे जो तिस भावे सहज हरि बिन हर नाम वृथा जग जीवन हर बिन निफल मेक करी ऐ जी खोटे ठौर नाही घर बाहर निंदक गत नहीं काई रोस करै प्रभ बख्शना मेटै नित नित चढ़ै सो

प्रभ बख्श मलावै बिनम न अदुआराई आनंद मूल नाथ सिर नाथा सतगुर मेल मलाई ऐ जी सदा दयाल दया कर रवया गुरमत भ्रमण चुकाई।

मनमुख भगत ना होई, सुर नर विरत पख करमी नाचे, मुन जन ज्ञान बीचारी, सिद्ध साधक लिव लागी नाचे, जिन गुरमुख बुद्ध बीचारी, खंड ब्रह्मांड त्रै गुण नाचे, जिन लागी हर लिव तुम्हारी, जी जंत सबे ही नाचे, नाचे हैं खानी चारी, जो तुद भाव है से ही नाच है, जिन गुरमुख शब्द लिव लाए, से भगत से तत् ज्ञानी, जिन को हुक्म मनाए, एहा भगत सच्चे स्यों लिव लागै।

नित न्यारी सफल जन्म भया तिन केरा आप तरे कुल तारी मनमुख दुबदा दुर्मत व्यापे जिने अंतर मोह गुबारी संत जना की कथा ना पावे ओए डूबे सन परवारी निंदक निंदा कर मल धोवे ओहो मल पख माया धारी संत जना की निंदा व्यापे ना उरवार ना पारी इहो परपंच खेल किया सब करतै हर करतै सब कल धारी हर एको सूत वरतै जोगे अंतर सूत खिंचै एकंकारी रसन रसन रस गावह हर गुण रसना हर रस धारी नानक हर बिन अवर

भय त्रास नाश कृपाल गुण निद सफल स्वामी सेव हर गोपाल गुरु गोविंद चरण सरण दयाल केशव तार जग भव सिंध रहाउ काम क्रोध हरन मद मोह दहन मरार मन मकरंद जन्म मरन निवार करनी तर पत राख परमानंद जलत अनेक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिद मंत छेद अहम बुध करना में चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान।

जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करी खुआर पौड़ी, अपना आप अपायुन कदहो होर ना कोई, मता मसूर ते आप करी जो करी सो हुई, तदहो आकाश ना पताल है ना त्रै लोई, तदहो आपे आप निरंकार है ना उपत हुई, ज्यों तिस भावै तिवें।

आई। ऐसा सतगुरु जी मिले तुठा करे पसाऊ, मुक्त द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ। महला तीजा, नानक मुक्त द्वारा

हसियो मन आए त्रिक अवेहा जीविया क्या जुग मह पाया आए माया खोटी रास है एक चसे मह पाज लह जाए हथों छुड़की तन स्याहो होए बदन जाए कुमलाए जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन सुख वसया मन आए हर नाम त्यावह रंग स्यों हर नाम रहे लिवलाए नानक सतगुर सो।

आए, तिसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू इन मल दल लाई पाए, नानक से उबरे जे सच रहे लिवलाए। पौड़ी ढाडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी, अंदर धीरक होए पूरा पाए सी। जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी, जा होवै खसम दयाल ता महल घर पाए सी। सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख मिलाए सी। सलोक महला तीजा, सबना का सहो एक है सदी रह हजूर। नानक हुक्म ना मन्ने ता घर ही अंदर दूर। हुक्म पी तिना मनाए सी, जिनको नदर करे हुक्म मन सुख पाया। प्रेम सुहागण होए महला तीजा, रैन सबाई जल मोई कंत ना लायो भावो। नानक सुख वसन सुहागणी, जिन प्यारा पुरख हर राव। पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता उपाय किते ना पाईए। हर कर्म बधाता गुर शब्दी, हर मन वसै हर सहजे जाता। अंदरों तृष्णा अग्न बुझी, हर अमृत सर नाता। वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख बोलाता। सलोक महला तीजा, काया हंस क्या प्रीत है जे पया ही छड़ जाए। इसनों कूड़ बोल के खवाली है,

आई, सतगुरु की सेवा ना कीतिया, अंत गया पछताई, अपनी कृपा करे गुर पाई है, विचों आप गवाई, कृष्णा भुख विचों उतरै, सुख वसै मन आई, सदा सदा सलाही है, हिरदै लिवलाई, सलोक महला तीजा।

होवे अंतर शीतल शांत वसै जप हिरदै सदा सुख होए अमृत खाना अमृत पहनना नानक नाम वडाई होए महला तीजा ए मन गुर की सिख सुन हर पाव है गुणी निदान हर सुख दाता मन वसै हऊ मैं जाए गुमान नानक नदरी पाई है तायन दिन लागे ध्यान पौड़ी सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता अंदरों कपट वकार गया मन सहजे जिता तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता अन दिन हर के गुण रवे गुण प्रगट किता सबना दाता एक है इको हर मिता सलोक महला तीजा ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही है जे अन दिन हर लिव लाए सतगुर पुछे सच संयम कमावे हम मैं रोग तिस जाए हर गुण गावे है गुण संग्रह ज्योति ज्योत मलाए इस युग में है को विरला ब्रह्म ज्ञानी जे हम मैं मेत समाए नानक किसनो मिलिया सदा सुख पाई है जे अन दिन हर नाम ते आए महला तीजा अंतर कपट मरमुख अज्ञानी रसना झूठ बोलाए कपट कीता हर पुरख ना पीजे नित वेखै सुनै सुभाए दूजै पाए जाए जग प्रबोधै

है काम क्रोध अहंकारा यह जम की सरकार है इना ऊपर जम का दंड करारा मनमुख जम मग पाइन।

आए गुर कै शब्द पर जाली है ता एह विचों जाए तन मन होवै उजला नाम वसै मन आए नानक माया का मारन हर नाम है गुरमुख पाया जाए महला तीजा इहो मन के तड़िया जुग भरमिया फिर रह न आवै जाए हर पाणा ता परमायन कर परपंच खेल उपाय जां हर बख्शे ता गुर मिलै अस्थिर रह समाई।

रासक होगी। आप अतीत अलिपत है निर्योग हर जोगी, जो तिस भाव है सो करे हर करे सो होगी। हर गुरमुख नाम ते आई है लह जाहे वजोगी।

माया गढ़ भीतर कूड़ कुसत अभमानी भरम भूले नदर ना आवनी मन मुखियां दे अज्ञानी उपाय कितै ना लभनी कर भेख थके भेखवानी गुर शब्दी खोलाइयन हर नाम जपानी हर जियो अमृत बिरख है जिन पिया ते त्रिपतानी।

का नाम। जिन सेविया तिन फल पाया थौ तिन बलिहारे जाओ। वाहु वाहु गुणी निदान है जिसनो दे सो खाए। वाहु वाहु जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाहु वाहु गुरसिख नित सब करहु गुरपूरे। वाहु वाहु पावे नानक। वाहु वाहु जो

जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी। तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुर अपना सेव सब फल पाया। अमृत हर का नाउ सदा त्याया संत जना कै संग दुख मिटाया। नानक भय अचिंत हर धन निह चलाया। श्लोक महला तीजा खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णय। महल भगती घर सरह सज्जन पहुण्यो बरसना ता बरस घना बहुल बरस है काहि। नानक तिन बलिहार ने जिन गुरमुख पाया मन माहि। महला तीजा मिठा सो जो भावदा सज्जन सो जे रास।

तुद त्यान बेत कते बासन खड़े गणती गणी ना जाए तेरे दर पड़े ब्रह्मे तुद त्यान इंद्र इंद्र आसन शंकर बिशन अवतार हर जस मुख भणा पीर पिकांबर सेख मसाय के औलिए ओत पोत निरंकार कट कट मौलिए कूड़ों करे वनास धर्मे तगिए

पौड़ी। नित जपिया सास ग्रास नाओ परवदगार दा, जिसनो करे रहम तिस ना विसार दा, आप उपावन हार आपे ही मारदा, सब किस जाने जान बुझ विचारदा, अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा, जिसनो लाए सच तिसै उधारदा, जिस दै हुवै वल सो कदे ना हारदा, सदा भग दी बाण है हौ तिस नमस्कार दा। श्लोक महला पंजवां। काम क्रोध लोभ छोड़ीऐ दीजै अग्न जलाए, जीव दया नित जापीऐ नानक साचा नाओ महला पंजवां। सिमरत सिमरत प्रभ अपना।

अरदास कर छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प धर पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर साध जना कै संग भवजल बिकम तर सेव हो सतगुर देव अगै ना मरहो डर हिन मैं करे निहाल ऊणे सुभर भर मन को होए संतोख त्याई सदा हर।

पंजवा खोजी लधम खोज छदिया उजाड़ तै सह दिती वाड़ नानक खेत ना सिजई पौड़ी अराध्य हो सच्चा सोए सब किश जिस पास दुहा सिरिया खसम आप किन मैं करे रास त्यागो हो सगल अपाव तिसकी ओट गहो पौ सरनाई भज सुखी हूं सुख लहो कर्म धर्म तत् ज्ञान संता संग होए जपिए अमृत नाम बिघन ना लगे कोई जिसनो आप दयाल तिस मन गुठिया पाइन सब निदान साहिब तुठिया सलोक महला पंजवा लगम लभन हार कर्म करन दो मां पिरी इको सिरजन हार नानक ब्याह ना पसी है महला पंजवा पापड़िया पछाड़

दुख जाए, भगत तेरे दयाल उना मेहर पाए। दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए, भगता एहो आधार गुण गोविंद गाए। सदा सदा दिन रैन इको एक त्याए,

जिन गिन लैन रलाए एहो इना लोड़िय त्रै गुण इनकै वस किने ना मोड़िय परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़िय गुर पूरा आराध बिखम दल फोड़िय हौ तिस अग्गै दिन रात रहां कर जोड़िय सलोक महला पंजवां किलविक सभे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कलेचा उपजह नानक बिसरै नाओ महला पंजवां नानक सतगुर भेटिऐ पूरी होवै जुगत हसंदियां खेलंदियां पै नंदियां खवंदियां विचे होवै मुकत पौड़ी सो सतगुर धन धन जिन भरम गल तोड़िया सो सतगुर वाहो वाह जिन हर स्यों जोड़िया नाम निदान।

दुर्मत थोवना जप जप तुद निरंकार भरम पौ खोवना जो तेरे रंग रत्ती से जोन ना जोवना।

का लिया जिन मन बुठा आप से सदा सुखा लिया आपे रचन रचाए आपे ही पालिया सब किसे आपे आप बेअंत अपारिया गुर पूरे की टेक नानक संभालिया। श्लोक महला पंजवा आद मद अर अंत परमेश्वर रखिया सतगुर दिता हर नाम अमृत चखिया साधा संग अपार अंदिन हर गुण रवै पाए मनोरथ सब जूनी नह पवै सब किस करते हाथ।

दौलत बन महिया अजहो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरे हो एहो अवसर।

प्रियाय आवत किने ना पेखियो कमने जाने री बाई कौन कह किन बूझिए रमैया आकुल री बाई रहाउ ज्यो अकाश पंखी अलो खोज निरखियो ना जाई ज्यो जल

पहला सेवक जन बने ठाकुर लिव लागे जो तुम राजस कहते गुरमत तिन मुख भाग सुभागे रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिसम भई मुख लागे सगली रैन सोई अंधियारी गुर किंचत कृपा जागे जन नानक के प्रभ सुंदर स्वामी मोहे तुम सर अवर ना लागे देव गंधारी मेरो सुंदर कहो मिले कित गली हर के संत बतावो मार्ग हम पीछे लाग चली रहाव प्रिय के बचन सुखाने ही अरे यह चाल बनी है भली लटुरी मधुरी ठाकुर भाई ओह सुंदर हर ढुल मिली एको प्रियो सखियां सब प्रिय की जो भावे फिर सा भली नानक गरीब क्या करे बेचारा हर भावे तित राहे चली देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलूलै राती हर प्रेम पीनी चोली है रहाव हो फिरो दीवानी आवल बावल तिस कारण हर ढोली है कोई मेलै मेरा प्रीतम प्यारा हम तिस की गुल गोली है सतगुर पुरख मनावो अपना हर अमृत पी झोली है गुर प्रसाद जन नानक पाया हर लादा देहे टोली है देव गंधारी अब हम चली ठाकुर पहार

अंतर जार, कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है तार। जो आवत सरन ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राखो कृपा तार। जन नानक सरन तुम्हारी हर जियो, राखो लाज मरार। देव गंधारी हर गुण गावे हों तिस बलिहारी, देख देख जीवा साध गुर दर्शन। जिस हृदय नाम मरारी रहाओ, तुम पवित्र पावन पुरख प्रभु स्वामी। हम क्यों कर मिल है जूठारी, हम रह जिये होर मुख होर होत है। हम कर्महीन कूड़ियारी, हमरी मुदर नाम हर स्वामी। हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी, ज्यों पावै त्यों राखो स्वामी। जन नानक सरन तुम्हारी देव गंधारी, हर के नाम बिना सुंदर है नकती। ज्यों बेसवा के करपूत जमत है, तिस नाम परयो है तरक्ती रहाओ। जिनकै हृदय नाही हर स्वामी, ते बिगड़ रूप बेरक्ती। ज्यों नुगुरा बहु बातां जाने, ओह हर दरगाह है प्रस्ती। जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी, तिन्ना साध जना पग चकती। नानक पतत पवित मिल संगत, गुर सतगुर पातै सुखती। छका एक देव गंधारी महला पंजवा, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माई गुर चरणी चित लाई है,

सुखदाई पूर्ण प्रभ करता मेरी बहुत ज्ञान पजरत निर्गुण क्रूप कोलहीन नानक हौ अनंद रूप स्वामी भरत देव गंधारी मन हर कीर्त कर सदहु गावत सुनत जपत उधारै

ज्यों अपने प्रभ भावू नीचो नीच नीच अत नाना होए गरीब बलावू रहाऊ अनक अडंबर माया के बिरथे ता स्यों प्रीत कटावऊ ज्यों अपनो स्वामी सुख माने ताम है सुबा पावऊ दासन दास रेण दासन की जन की टहल कमावऊ सर्व सुख बड़े।

सेवा दर्शन दुख अवतारयो नाम जपत महा सुख पायो चिंता रोग बदारयो काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बसारयो माया बंद काटे कृपा निद नानक आप उधारयो देव गंधारी मन सगल सियान परही करन कराम नहार स्वामी नानक ओट गही रहाउ आप मेट पए सरनाई एह मत साधु कही प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया परम अंधेरा लही।

महा किल बिख कोट दोख रोगा प्रवदिष्ट तुहारी हाते सोवत जाग हर हर हर गाया नानक गुर चरण पराते।

हा रहाऊ खोजत खोजत खोज बिचारियो हर संत जना पह आहा तिने प्राप्त इहो निधाना जिनकै कर्म लिखा हा ते बड़ भागी ते पतवंते ते पूरे साहा सुंदर सुगड़ स्वरूप ते।

रहाउ जिन पिया तिस सिमर प्राणी यो प्राण जिन तारा तिसह त्याग अवर लपटावह मर जन्म है मुग्ध गुआरा अंध गुंग पिंगल मतहीना प्रभ राख हो राखन हारा करण कराम नहार।

देव गंधारी पंजवा मन गुर मिल नाम अरादेव सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल भादेव रहाओ कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया पादेव भाओ भगत गाए गुण गोविंद जम का मार्ग साधेव भयो अनग्रहो मिट्यो मूर्चा अमोल पदार्थ ला देव बलिहार है नानक लख बेरा मेरे ठाकुर अगम अगा देव देव गंधारी पंजवा माई जो प्रभ के गुण गावे सफले आया जीवन फल ताको पार ब्रह्म

मैं ही पुरजायो इतनी ना बूझै कब हूँ चलना विकल भयो संग मायो रहाओ कुसुम रंग संग रस रचिया विखिया एक उपायो लोभ सुने मन सुख कर माने बेग तहां उठतायो फिरत फिरत बहुत श्रम पायो संत द्वारे आयो करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी नानक लियो समायो।

परयो साध की शरण देव गंधारी महला पंजवा अपने हर पै बिनती कही है चार पदार्थ अनद मंगल नित सुख सहज सिद लही है रहा मान त्याग हर चरणी लागो जिस प्रभ अंचल गही है आंच न लागे अग्न सागर ते शरण स्वामी की अही है कोट पराध महा कीर्त कान बहुर बहुर प्रभ सही है करुणा मैं पूर्ण परमेश्वर नानक तिस शरण ही है देव गंधारी पंजवा गुर के चरण हृदय प्रवेशा रोग सोग सब दुख बनाते उतरे सगल कलेचा रहाव जन्म जन्म के किल विकनाश है कोट

को उपजी, छोड़ ना तुहु जाता रहाउ। बैठत हर हर सोवत हर हर, हर रस भोजन खाता, अठ सठ तीरथ मज्जन कीनो, साधु धूरी नाता, सफल जन्म।

लाइय संकट घोर कटे खिन तर नानक हर दर्स समाइय देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाव दुई कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्म मन त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन को बल जाइए।

तारियो दीन दयाल भये प्रभ अपने बहुड़ जन्म नहीं मारियो रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रतन जन्म नहीं हारियो प्रभ गुण गाए बिखे बन तरिया कुल है समूह उधारियो चरण कमल बसिया रिद पुत्र तास ग्रास उचारियो नानक उठ गई जगदीश पुनः पुनः बलिहारियो।

रहाउ काहे प्रमत हो तुम प्रमहु ना पाई रवियारे रविया सर्वथान ज्यों बैसंतर काष्ट मजार बिन संजम नहीं कार्य सार बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार मिल संगत ताज अभमान

कर चतुराई बिस्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध अर साधक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादक चतुर वेद उचरत दिन रात।

छुटकी रे मन छुटकी रे काकत संग ना छुटकी रे रहाउ। जो काजर भर मंदर राखियो जो पैसा कालू की रे दूरों ही ते भाग गयो है जिस गुरमिल छुटकी त्रे कुटीरे मांगो दान कृपाल कृपा।

साध पगा हे तरुल तीरे राग देव गंधारी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब दिन के सम्राट पंथ बिठले हों बल बल जाओ।

रहाउ। मद माया कै भयो बावरू, हर जस नह उचरै, कर पर पंच जगत को डहकै, अपनो उधर भरै। समान पूछ ज्यो होए ना सूदो, कहो ना कान धरै। कहो नानक भज राम नाम नित, जाते काज सरै। देव गंधारी महला नावा, सब किश जीवत को व्यवहार। मात पिता भाई सुत बंधप, हर फुन ग्रह की नार रहाव। तन ते प्राण हो जब न्यारे, तीरत प्रेत पकार। आद करी को नह राखै, घर ते देत निकार। मृग तृष्णा ज्यों जग रचना, यह देखो हृदय विचार। कहो नानक भज राम नाम नित, जहां ते होत उधार। देव गंधारी महला नौवां, जगत में

मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़िए हर हर नाम त्याए राम हर भाग वड्डे लिख पाया मेरी जिंदड़िए जन नानक नाम समाए राम हर सेती मन बेदया मेरी जिंदड़िए ज्यों बालक लग दुध कीरे राम हर बिन चातना पाईऐ मेरी जिंदड़िए ज्यों चातरक जल बिन तेरे राम।

गुर सतगुर अलख लखाए राम, गुर आसा ममता पूरिया मेरी जिंदड़िए, हर मिलिया भुख सब जाए राम। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया मेरी जिंदड़िए, जन नानक हर गुण गाए राम। हम पापी

फिर मरदा बहुड़ जीव आया राम, जन नानक सतगुरु जो मिले मेरी जिंदड़िए, इनके सब दुख गवाया राम, अत उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए, इत जपे पाप गवाते राम, पतत पवित्र गुर हर।

गुण गावै हर प्रभ कीरे राम ते सर्वन भले सोभ नीक है मेरी जिंदड़िए हर कीर्तन सुनह हर तेरे राम सो सीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए जो जाए लगे गुर पैरे राम गुर विटो नानक वारिया मेरी जिंदड़िए जिन हर हर नाम च तेरे राम ते नेत्र भले प्रवान है मेरी जिंदड़िए जो साधु सतगुरु देख है राम ते हस्त पनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए जो हर जस हर हर लेख है राम तिस जन के पग नित पूजिया है मेरी जिंदड़िए जो मार्ग धर्म चले सह राम नानक तिन विटो वारिया मेरी जिंदड़िए हर सुन हर नाम मने सह राम धरत पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए सब हर हर नाम त्यावै राम पौन पानी वै संतरो मेरी जिंदड़िए नित हर हर हर जस गावै राम वण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए मुख हर हर नाम।

राम जिस अंतर हृदय शुद्ध है मेरी जिंदड़िए तिन जान सब डर सुट कत्ते राम हर निरपो नाम पतीजिया मेरी जिंदड़िए सब झक मारन

तिनकै संग मल उतरै मेरी जिंदड़िए रंग राते नदर निशाने राम। नानक की प्रभ बेनती मेरी जिंदड़िए मिल साधु संग अगाने राम। हे रसना जप गोविंदो मेरी जिंदड़िए जप हर हर कृष्ण।

ढावे जिस होए कृपाल दयाल स्वामी सो प्रभ अंक समावे भाग मस्तक होए जिसकै तिस गुर नाल सनेहा जन कह नानक मिल साध संगत हर हर नाम पूजेहा दह दिस खोज तहम फेरे मेरे लाल जियो हर पाए अड़ा घर आए राम हर मंदर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो हर तिस मैं रहया समाए राम सर्वे समाणा आप स्वामी गुरमुख प्रगट होया मिटिया अंधेरा दुख नाथा हमें हर रस चोया।

सुंदर शोभा लाल गोपाल दयाल की, अपर अपारा राम गोपाल दयाल गोविंद लालन, मिलहो कंत नमाणिया नैन तरसन दर्श परसन, नह नींद रैन विहानिया ज्ञान अंजन नाम बिंजन, पये सगल शिंगारा नानक पयंपै संत जंपै, मेल संत हमारा लाख उलहने मोहे, हर जब लग नह मिले राम, मिलन को करो उपाव किस हमारा नह चले राम, चल चित बित अनित प्रिय बिन कमन विधि ना धीजी है, खान पान सिंगार बिरते हर कंत बिन क्यों जीजी है, आसा प्यासी रैन दिनियर रह ना सकी है एक तिलै, नानक पयंपै संत दासी तो प्रसाद मेरा पिर मिले, सेज एक प्रियो संग दर्शना पाईए राम, अवगन मोहे अनेक कत महल बुलाईए राम, निर्गुण नमाणी अनाथ बिनवै मिलहो प्रभ कृपा दे दे, भ्रम भीत खोइए सहज सोइए प्रभ पलक पेखत नाम ने दे, ग्रह लाल आवै महल पावै मिल संग मंगल गाइए, नानक पयंपै संत सरणी मोहे दर्श दिखाइए, संतन कै प्रसाद हर हर पाया राम, इच पुन्नी मन शांत तपत बुझाया राम, सफला सो दिनस रैने सोहावी आनंद मंगल रस घना, प्रगटे गोपाल गोविंद लालन कवन रसना गुण भना, भ्रम लोभ मोह विकार थाके मिल सकी मंगल गाया, नानक पयंपै संत जंपै जिन हर हर संजोग मलाया, बिहागड़ा महला पंजवां कर कृपा गुरपार ब्रह्म पूरे, अन दिन नाम बखाना राम, अमृत बाणी उच्चरां हर जस

तूर भगतन की मन तन लगो हर जियो सब पतत पनीता राम। पतता पनीता होए तिन संग जिन बधाता पाया नाम राते जी दाते नित देहे चढ़ सो आया। रिद सिद्ध नव निद हर जप जिन्नी आत्म जीता बिनवंत नानक वड भाग पाई है साध साजन मीता जिन्नी सच वणंजिया।

जो जन प्रभ सिउ रातिया, एक जन है एक मन है, राम कै रंग मातिया, लग संत चरनी पड़े सरनी, मन तिना उमाहा, बिनवंत नानक जिन नाम पल्लै, से सच्चे साहा, नानक सोई सिमरिया हर जियो, जाकी कल धारी राम, गुरमुख मनु ना

संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मन शांत आई मिलिया पुरख अपारी बिनवंत नानक सिमर हर हर एछ पुन्नी हमारी बिहागड़ा महला पंजवां कर दूजा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद वद सुख रहनड़िए प्रिय प्रेम लगा घट दुख नींदड़िए परसों सदा पगा पग धूर बांचो सदा जाचो नाम रस बैरागनी प्रिय रंग राती सहज माती महा दुर्मत त्यागनी गह पुजालीनी प्रेम पीनी मिलन

है चरण लगे है मन प्रिय प्रेम घना हर की भगत मंगे है हर भगत पाइये प्रभ त्याइये जाहे मिलिये हर जना मान मोह विकार तजिये अर्प तन तन एहो मना बड पुरख पूरन गुण संपूर्ण भ्रम भीत हर हर मिल भगे है।

सज्जन हर सारी सब किल विख नास मना कर सदा मज्जन गोविंद सज्जन दुख अंधेरा नास्ते जन्म मरण ना होए तिसको कट्टे जम के पासे मिल साध संगे नाम रंगे तहां पूर्ण आसो मिनवंत नानक धार कृपा हर चरण कमल निवासो तह अनद बनोद सदा अनहद चुनकारो राम मिल गावह संत जना प्रभ का जय कारो राम मिल संत गावह खसम पावह हर प्रेम रस रंग भिन्निया हर लाभ पाया आप मटाया मिले श्री विचुनिया गह पुजा लीने दया कीने प्रभ एक अगम अपारु बिनवंत नानक सदा निर्मल सच शब्द रुण चुनकारु सुन बड़ भागिया हरे अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी किस हृदय सुमानी राम अकथ कहानी तिन्नी जानी जिस आप प्रभ कृपा करे अमृतिया फिर नाम हुआ कल कलेशा दुख हरे हर सरन पाई तज ना जाई प्रभ प्रीत मन तन पाणी बिनवंत नानक सदा गाइए पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत भये किश कहन ना जाई राम जिसते उपजेड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया

जाई बिनवंत नानक आप जाने जिन एह बणत बनाई बिहागड़ा मोहल्ला पंजवां खोजत संत फिर है प्रभ प्राण आधारिये राम तान तन कीन भया बिन मिलत प्यारे राम प्रभ मिलो प्यारे मया तारी कर दया लड़ लाए लीजी है देह नाम अपना जपूं स्वामी हर दर्श पेखे जीजी है समर्थ पूर्ण सदा निकल ऊंच अगम अपारी।

तपत ना कतह बुझे बिन स्वामी सरनाराम। प्रभ सरन तेरी काट बेरी संसार सागर तारिये, नाथ निर्गुण कछ ना जाना। मेरा गुण अवगुण ना बिचारिये, दीन दयाल गोपाल प्रीतम। सम्राट कारण करना नानक चातरक हर बूंद मांगे, जप जीवा हर हर चरना। अमह सरोवरो पियो हर हर नामा राम। संत है संग मिले जप पूर्ण कामा राम। सब काम पूर्ण दुख बदीरन, हर निमख मन हुना बीसर। आनंद अनदिन सदा साचा सर्व।

कई कोटक जग फला सुन गावन हारे राम हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम हर नाम जपत।

सदमना शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभु ऊचे अगम अपारी बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारी बिहागरा महला।

गुण गपालना जप है रसना, फिर कदहो से देह आवे, तरवर सुन्ने नह पात जुड़ते, जम मग गौन अकेली।

अनक दुख कमावनी अलिपत बंधन रहत करता किया अपना पावनी कर अनग्रह पतत पावन बहु जोन भ्रम ते हारी बिनवंत नानक दास हरका प्रभ जी प्राण आधारी तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम पाल है अकिरत घना पूर्ण दृष्ट तेरी राम अगाध बोध अपार करते मोहे नीच कछु न जाना रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच इयाना त्याग चलती महा चंचल दोख कर कर जोरी नानक सरन सम

बिन नाम हर के सुख नहीं, सहस सियाणप अपाव थाके, जह भावत कह जाही, आद अंते मद पूरन, सर्वत्र घट घट आही, बिनवंत नानक जिन साध संगम, से पत सेती घर जाही, नरपत जान ग्रहयो, सेवक सियाने राम, सरपर विचड़ना, मोहे पछताने राम, हर चंदौरी देख भूला, कहां अस्थित पाई, बिन नाम हर के आन रचना, अहला जन्म गवाई।

पछताने, तार अनग्रहो अपना कर ली नाराम, पुजा गह काग लियो साधु संग दीना राम, साध संगम हर अरादे सगल कलमल दुख जले, महा धर्म सोदान किरिया संग तेरे सिह चले, रसना अरादै एक स्वामी हर नाम मन तन पीना, नानक जिसनो हर मलाए सो सर्व गुण परवीना।

चार अंतर शब्द वसाया दुख कटिया चानन किया करतार नानक रखन हारा रखसी अपनी कृपा धार महला तीजा।

लोड़ी हर सुख दाता सबना गल्लां का तिसनों त्याय दया केव निमख घड़ी मुह मोड़ी है जिन हर त्याया तिसनों सर्ब कल्याण होए नित संत जना की संगत जाए बहिया मुह जोड़ी है सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के सब जन के बंधन तोड़ी है हर कृपा ते हुआ हर भगत जना कै मुहे दिठे जगत तरिया सब लोड़ी है। सलोक महला तीजा सारस ना जल जाओ जिन हर का स्वाओ ना पाया नानक रसना शब्द रसाए जिन हर हर मन वसाया। महला तीजा सारस ना जल जाओ जिन हर का नाम वसारिया नानक गुरमुख रसना हर जपै हर कै नाए प्यारिया पौड़ी हर आपे ठाकुर सेवक भगत हर आपे करे कराए हर आपे वेखै विगसै आपे जित पावै तित लाए हर इक ना मार्ग पाए आपे हर इक ना उजड़ पाए हर सच्चा साहिब सचत पावस कर वेखै चलत सुभाए।

कहो बलिहार है जाओ महला तीजा। नानक तरवर एक फल दुए पंखेरू आहे, आवत जातना दी सही ना पर पंखी ताहे। बहुरंगी रस भोगिया शब्द रहै निर्वाण, हर रस फल राते नानका कर्म सच्चा निशान। पौड़ी आपे धरती आपे है राह, आप जमाए पिसावै आप पकावै, आप भांडे दे परोसै आपे ही बह खावै। आपे जल आपे दे शिंगा, आपे चुली भरावै आपे संगत सद बहालै, आपे विदा करावै। जिसनु कृपाल हुआ हरे आपे तिसनु हुक्म मनावै। सलोक महला तीजा। कर्म धर्म सब बंधना पाप पुन संबंध, ममता मोह सो बंधना पुत्र कलत्र सो तंद। जह देखा तह जेवरी माया का संबंध,

आई बंधन तोड़ै सच वसै अज्ञान अंधेरा जाई सब किस देखै तिसै का जिन किया तन साज।

0: दिन रह सदा गुण गाय, बिन कर्म किन न पायु
1: भौक मोए बिल लाय।
0: गुर कै शब्द मन तन भिजै,

सब शास्त्र आप कथ आप पीजै आपे ही बह पूजे करता आप परपंच करीजै आप परविरत आप निर्विरति आपे अकाथक थीजै आपे पुन सब आप कराए आप लिप्त वर्तीजै आपे सुख दुख देवै करता आपे बख्श करीजै। श्लोक महला तीजा। सेखा अंदर हो जोर छाड़ तू पहो कर झल गवाए गुर कै भै केते निस्तरे भै विच निरभउ पाए मन कठोर शब्द भेद तू शांत वसै मन आए शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए थाए नानक काम क्रोध।

खंडन आपे सब कट भोग वै स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब बेता आपे गुरमुख भंजन जन नानक सलाहे ना रजै तुद करते तू हर सुखदाता।

लातीजा। एक सतगुर की सेवा करहें क्या करी, हर नामे लगे प्यार। नानक जन्म सवार ने अपना, कुल का करन उधार। पौड़ी

पर बुझै सब आपे, एक थै आपे करे आणी, इकना अंदर महल बुलाए, जा आप तेरे मन सच्चे पाणी, जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़ियाई, से जन सच्ची दरगह जाणी। सलोक मरदाना पहला, कल कलवाली काम मद, मनुआ पीवन हार, क्रोध कटोरी मोहे भरी, पीलावा अहंकार, मजलस कूड़े लभ की, पी पी होए खुआर, करनी लाहन सत गुड़, सच सरा कर सार, गुण मंडे कर सील के हो, शर्म मास आहार, गुरमुख पाईए नानका, हादे जाहे विकार। मरदाना पहला, काया लाहने आप मद, मजलस तृष्णा धात, मनसा कटोरी कूड़ भरी, पी लाए जमकाल, इत मद पीतै नानका, बहुते खटी है बेकार। ज्ञान गुड़ सलाह मंडे, भौ मास आहार, नानक एहो भोजन सच है, सच नाम आधार। काया लाहन आप मद, अमृत किसकी धार, सत संगत स्यों मिलाप होए, लिव कटोरी अमृत भरी, पी पी कटह बेकार। पौड़ी, आपे सुर नर गण गंधर्वा, आपे खट दर्शन की बाणी, आपे सेव संकर महेशा, आपे गुरमुख अकथ कहानी, आपे जोगी आपे भोगी, आपे सन्यासी फिरै बिबाणी, आपे नाल गोसत आप उपदेसै, आपे

हरस्यों प्रीत उपजै, माया मोह जलावै, गुर प्रसादी दुबदा मरै, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार। नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै, मर जम्मै होए खुआर महला तीजा। प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी, मेरी प्यास ना जाए। नानक सतगुर मिलिया मेरी प्यास गई, फिर पाया घर आई पौड़ी। आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास भया, आपे दस अठ वर्ण उपायन। आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़ै, आपे बख्शे करे दया। आप अभुल ना भुलै कबही, सब सचत पावस सच थिया। आपे

साहिब संभाले हो, साहिब सदा हजूर है, पर मैं के छौड़ कट के अंतर जोत तरे हो, हर का नाम अमृत है, दारू एहो लाए हो, सतगुर का भाणा चित रखो हो, संयम सच्चा ने हो, नानक एथ सुख अंदर रख सी, अगै हर स्यों केल करे हो, पौड़ी आपे भार 18।

पावै, आपे सतगुर मेल सुख देवै, अपना सेवक आप हर पावै, अपनिया सेवका की आप पैज रखै, अपनिया भगता की पैरी पावै, धर्म राय है हर का किया, हर जन सेवक नेड़ ना आवै, जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा।

होए। नानक गुरमुख पाई जा कौ नदर करे पौड़ी, आपे सब घट अंदरे आपे ही बाहर, आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जाहर, जुग शक्ति गुबार कर वर्त्या सुन्ना हर, उथै वेद प्राण ना सासता आपे हर नर हर,

अमृत भोजन नाम हर राज राज जन खाहु सब पदार्थ पाइन सिमरन सच लाहु संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहु सलूक महला तीजा सब किस हुक्मे आमदा सब किस हुक्मे जाए जे को मूर्ख आप हूं जाने अंधा अंध कमाए नानक हुक्म को गुरमुख बुझै जिसनो कृपा करे रजाए महला तीजा सो जोगी जुगत सो पाए जिसनो गुरमुख नाम प्राप्त होए तिस जोगी की नगरी सब को वसै भेखी जोग ना होए नानक ऐसा बिरला को जोगी जिस घट प्रगट होए पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार

सफलियो रुखड़ा अमृत जाका नाव जिन पिया ते तृप्त भये हऊ तिन बलिहारे जाऊ मैं की नदर ना आवही वस्सह हपियां नाल तिखा ते

बंगड़ियाह जो सह कंठ ना लगिया जलन से बाहड़ियाह सब सहिया सहु रावण गईया हों धाती कै दर जावा अम्माली हों खरी सुचजी तै सह एक ना पावा माठ गुंदाई पट्टिया भरिए मांग सदूरे अगे गई ना मनिया मरू वसूर वसूरे मैं रवंदी सब जग रुन्ना रुनने बणो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हो पिरहो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई।

जड़ी गुर कै शब्द मलाए मेरी मेरी कर दे घट गए इना हाथ के हो ना आया सतगुर मिले है सच मिले सच नाम समाया आसा मनसा इहो शरीर है अंतर जोत जगाए नानक मनमुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए वडहंस महला तीजा सुहागनी सदा मुख उजला गुर कै सहज सुभाए सदा फिर राव है अपना विचों आप गवाए मेरे मन तू हर हर नाम त्याए सतगुरु मोह को हर दिया बुझाए रहाओ दुहागनी खरियां बिल लांदियां तिन्ना महल ना पाए।

मिलाया, पूरे सतगुर हर नाम त्याया रहाय। ब्रह्म वेद बाणी परगासी, माया मोह पसारा, महादेव ज्ञानी वरतै घर अपने, तामस बहुत अहंकारा, किसन सदा अवतारी रूदा, कित लग तरै संसारा, गुरमुख ज्ञान रते जोगे अंतर, चूकै मोह गुबारा।

भाव गुआई। देह शरीर सुख होवै शब्द हर नाई, नाम परमल हृदय रहया समाई। नानक मस्तक जिस वड भाग, गुर की बाणी सहज बैराग।

मन आए परमे भूला फिरे संसार मर जन्मे जम करे खुआर नानक से बड़ भागी जिन हर नाम ते आया गुर प्रसादी

हर मेरे वडहंस महला चौथा। मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी, हौ हर प्रभ छोड़ दूजे लोभानी। हौ क्यों कर पिर को मिलो इयानी, जो पिर पावे सा सुहागण।

जिन पेर रावया सा भली सुहागण से मैं गुण नाही हौं क्या करी दोहागण नित सुहागण सदा पेर रावे मैं कर्महीन कब ही गल लावे तू पेर गुणवंता हौं औगण यारा मैं निर्गुण बख्श नानक वेचारा वडहंस महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं मन वड्डी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावा हौं जाए पुछा अपने सतगुर गुर पुछ मन मुग्ध समझावा भूला मन समझै गुर शब्दी हर हर सदा त्याए नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा तो हर चरणी चित लाए हौं सब वेस करी पिर कारण जे हर प्रभ साचे पावा सो पिर प्यारा मैं नदर ना देखै हौं क्यों कर धीरज पावा जिस कारण हौं शिंगार शिंगारी सो पिर रत्ता मेरा अवरा नानक तन तन तन सुहागण जिन पिर रावड़ा सच सवरा हौं जाए पुछा सुहाग सुहागण तुसी क्यों पिर पायड़ा प्रभ मेरा मैं ऊपर नदर करी पिर साचै मैं छोड़ियाड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करहो हर प्रभ का इत मार्ग भैने मिलिया आप नड़ा प्रभ नदर कर देखै नानक जोत ज्योति रलिया जो हर प्रभ का मैं दे सनेहा इस मन तन अपना देवा नित पक्खा फेरी सेव कमावा तिस आगै पानी धोवा नित नित सेव करी हर जन की जो हर हर कथा सुनाए तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा नानक मन आस पुजाए गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम ते आवा गुर सतगुर पासो हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर गुण गावा गुण गावा नित नित सद हर के मन जीवै नाम सुन तेरा नानक जित

खाले। जिसनो नदर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा संभाले, सो हर हर नाम सदा सदा संभाले। जिस सतगुरु पूरा मेरा मिलया नानक हर जन हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया। वडहंस महला पंजवां घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अत ऊंचा ताका दरबारा अंत नाही किश पारा वारा। कोट कोट कोट लख तावै एक तिल ताका महल ना पावै। सहावी कौन सोवेला जित प्रभ मेला रहाव। लाख भगत जाको अराध है लाख तपीसर तप ही साध है। लाख जोगीसर करते जोगा लाख पुगीसर भोग है भोगा।

संतन पह आया, दुख भ्रम हमारा सगल मताया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा, वडहंस महला।

प्रभ दाते जिसह जनावो हो तिनह तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण किशु ना जाता नानक साधु देख मन राता वडहंस महला पंजवा अंतर जामी सो प्रभ पूरा दान दे साधु की तूरा कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला रहाओ जल कल महियल रहे आपर पूरे निकट वसै नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पैर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सरन परे हो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा तू वड दाता अंतर जामी सब मह रविया पूर्ण प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम अधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होए संतां तूरे चरण कमल हृदय उरतारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारी।

अंतर भूख न उतरै अमाली। जे सौ भोजन मैं नीरे मेरा मन तन प्रेम परम का, बिन दर्शन क्यों मन धीरे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई,

पूरे। मैं सर्व सुखा सुख पाया अमाली, फिर सर्व रहया पर पूरे। जन नानक हर रंग माणिया अमाली, गुर सतगुर कै लग पैरे। वडहंस महला तीजा अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सच्ची बाणी सच धुन सच शब्द विचारा, अन दिन सच सलाहना, धन पन वड भाग हमारा।

सच रती तन मन सच्चा होए बिन साचे होर सलाहना जात है जन्म सब खोए सच खेती सच बीजना साचा वापारा अन दिन लाहा सच नाम धन भगत भरे भंडारा।

वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसैना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वन्यावना।

वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, तब उपायन आप आपे नदर करे, कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे, सब कोई मीठा मांग देखे, खसम भावे सो करे, किश पुन दान अनेक करनी, नाम तुल ना समसरे, नानका जिन नाम मिलया, कर्म होवा तुर कदे, सब उपायन आप आपे नदर करे, बड़हंस महला पहला, करहो दया तेरा नाम बखाना, सब उपाय आप आपे सर्ब समाना, सर्बे समाना आप तू है, उपाय तमै लाइया, एक तुझ ही किए राजे, किकना भिख पवाइया, लोभ मोह तुझ पिया मीठा, एत भरम भलाना, सदा दया करो अपनी, ताम नाम वखाना, नाम तेरा है साचा, सदा मैं मन पाना, दुख गया सुख आए समाना, गावन सुर नर सुगड़ सुजान, सुर नर सुगड़ सुजान गावे, जो तेरे मन भावहि, माया मोहे चेतह नाही, अहला जन्म गवावहि, एक मूड मुग्ध

रंग रत्ती मुइये सुभावंती नारे सत्या शब्द मिल रही मुइये फिर रावे पाए प्यारी सत्या पाए प्यारी कंत सवारी हर हर त्यों ने हो रचाया आप गुआया तां फिर पाया गुरु कै शब्द समाया सा धन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा धन मेल लई पिर आपे साचै साहि सवारी निर्गुण वंतड़िए पिर देख हदूरे राम गुरमुख जिन्नी रावया मुइये फिर रव रहे आपर पूरे राम फिर रव रहे आपर पूरे वेख हजूरे जुग जुग एको जाता तन बाली भोली फिर सहज रावै मिलिया कर्म विधाता जिन हर वस चाखिया शब्द सुभाखिया हर सर रही भरपूरे नानक कामन सा फिर भावै शब्दे रह हदूरे।

नानक हर की भगत नराली गुरमुख विरलै कीजै गुरमुख खेती हर अंतर बीजी हर लीजै शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस पुंच तू लाहा लै परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए धन खेती वापारा हर नाम त्याए मन वसाए।

नानक नाम बीज मन अंदर सच्चै शब्द सुपहाय हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमति मन निज कर वसिया सच्चै शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हूं मैं मारी साचै शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पहु पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वडियाई राम गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मलाई राम हुक्म मलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच सवार नहारा पौ भंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहया समाई वडहंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा

माणि सच रते अधिकाई नानक मानस जन्म दलंब है सतगुर बूझ बुझाई मन मेरे सतगुर सेवन अपना से जन वडभागी राम जो मन मार है अपना से पुरख बैरागी राम से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया मत निश्चल अत गूढ़ी गुरमुख सहजे नाम बखाणिया एक कामन हितकारी माया मोहे प्यारी मनमुख सोए रहे अपागे नानक सहजे सेवै गुरे अपना से पूरे वडभागे बड़ा हंस महला तीजा रतन पदार्थ बन गई है सतगुर दिया बुझाई राम लाहा लाभ हर भगत है गुण मह गुणी समाई राम गुण मह गुणी समाए जिसे आप बुझाए लाहा भगत सह सारे बिन भगती सुख ना होई दूजै पत खोई गुरमत नाम अधारे वखर नाम सदा लाभ है जिसनों एतवा पार लाए रतन पदार्थ बन

खरे सब परखियन, तित सच्चे कै दरबार आराम, खोटे दरगहा सुटियन, उभे करन पुकारा राम, उभे करन पुकारा मुग्ध गुवारा, मनमुख जन्म गवाया, विख्या माया जिन जगत पुलाया, साचा नाम ना पाया, मनमुख संता नाल वैर कर,

लागे रसना राम रबीजै नानक नाम रते से निर्मल होर हऊ मैं मैल परीजै पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पह करह पुकारा राम माया मोह अंतर मल लागे माया के वापारा राम माया के वापारा जगत प्यारा आवन जान दुख पाई बिख का कीड़ा बिख स्यों लागा बिष्टा माही समाई जो तुर लिखिया सोए कमावे कोई ना मेटन हारा नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया होर मूर्ख कूक मोए गावारा माया मोहे मन रंगिया मोहे सुध न काई राम गुरमुख इहो मन रंगी है दूजा रंग जाई राम दूजा रंग जाई साच समाई सच भरे पन

सच्चा मन पाया सच वसाया शब्द रत्ते अंत नबेरा नानक नाम रत्ते से सच समाणे बहुर ना पवजल फेरा माया मोह सब बरल है दूजै।

सेवा लागे सेवड़ भागे जुग जुग एको जाता जात सत संयम कर्म कमावै बिन गुर गत नहीं पाई नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवै हर सरनाई जो हर मत दे सा उपजै होर मत ना काई राम अंतर बाहर एक तू आपे देहे बुझाई राम आपे देहे बुझाई अवर ना पहाई गुरमुख हर रस चाखिया दर साचै सदा है साचा साचै शब्द सुभाखिया घर मह निज घर पाया सतगुरु दे वडाई नानक जो नाम रते से महल पाए मत प्रवान सच साई वडहंस महला चौथा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई राम हर हर

हो मन तन काट काट तिस दे जो सतगुर बचन सुनाए मेरा मन बैराग भया बैरागी मिल गुर दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो सुख दाती देहो सतगुर चरण हम तूरा।

तह तिन के जिन सतगुर पुरख प्रभ के आया तू वरदाता अंतर जामी मेरी श्रद्धा पूर हर राया गुरसिख मेल मेरी श्रद्धा पूरी अन दिन राम गुण गाए जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मिलाए हों वारी गुरसिख मीत प्यारे राम हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नाम अधारे राम हर हर नाम मेरा प्राण सिखाई किस बिन घड़ी निमक नहीं जीवा हर हर कृपा करे सुख दाता गुरमुख अमृत पीवा हर आपे श्रद्धा लाए मलाए हर आपे आप सुवारे हों वारी गुरसिख मीत प्यारे हर आपे पुरख निरंजन सोई राम हर आपे मेलै करै सो होई राम जो हर प्रभ भावै सोई होवै अवर न करना जाई बहुत सियाणप लया न जाई कर थाके सब चतुराई गुर प्रसाद जन नानक देखिया मैं हर बिन अवर ना कोई हर आपे पुरख निरंजन सोई बड़ा।

0: अंत सखाई गुर सतगुर नाम दृढ़ाया
1: जिथे पुत कलत्र कोई बेली नाही
0: तिथे हर हर नाम छड़ाया तन तन सतगुर पुरख निरंजन जित मिल हर नाम त्याई मेरा सतगुर प्यारा मैं गुर बिन रहन ना जाई जिन्नी दर्शन सतगुर पुरख ना पाया राम तिन निफल जन्म सब बिरथा गवाया राम निफल जन्म तिन बिरथा गवाया
1: ते साकत मोए मर चूरे
0: कर हुंदै रतन पदार्थ भूखे भागहीन हर दूरे हर हर तिनका दर

सतगुर पुरख ना पाया, हम चातरक दीन, हर पास बेनंती राम, गुर मेल मेरा प्यारा, हम सतगुर करह भगती राम, हर हर सतगुर करह भगती, जा हर प्रभ कृपा तारे, मैं गुर बिन अवर ना कोई बेली, गुर सतगुर प्राण हमारे, कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती, हम चातरक दीन, हर पास बेनंती। वडहंस महला चौथा, हर कृपा कर, सतगुर मेल सुखदाता राम, हम पूछे हैं, सतगुर पास हर बात पूछे हैं, जिन नाम पदार्थ पाया, पाई लग हैं नित कर हैं बेनंती, गुर सतगुर पंथ बताया, सोई भगत दुख सुख समत कर जाने, हर हर नाम हर राता, हर कृपा कर, गुर सतगुर मेल सुख दाता, सुन गुरमुख नाम, सब बिन से हूं मैं पापा राम, जप हर हर नाम, लथ अड़े जग तापा राम, हर हर नाम जिन्नी अरादया, तिनके दुख पाप नवारे, सतगुर ज्ञान खड़ग हाथ दीना, जम कंकर मार बिदारे, हर प्रभ कृपा धारी सुख दाते, दुख लाथे पाप संतापा, सुन गुरमुख नाम, सब बिन से हूं मैं पापा, जप हर हर नाम, मेरा मन पाया राम, मुख गुरमुख जप, सब रोग गवाया राम, गुरमुख जप सब रोग गवाया, अरोगत भये शरीरा, अनदिन सहज समाध हर लागी, हर जपया गहर गंभीरा, जात अजात नाम जिन त्याया, इन परम पदार्थ पाया, जप हर हर नाम, मेरा मन पाया, हर तारु हो कृपा।

आया तू दुख भंजन सर्व सुख दाता हम पाथर तरे तराया सतगुर भेट राम रस पाया जन नानक नाम उधारी हर धारहु हर धारहु कृपा कर कृपा लेहु उबारे राम वडहंस महला चौथा घोड़िया एक ओंकार सतगुर प्रसाद देह तेजन जी राम उपाइया राम धन मानस जन्म पुन पाइया राम मानस जन्म वड पुन्ने पाया देह सो कंचन चंगड़िया गुरमुख रंग चलूला पावे हर हर हर नव रंगड़िया एह देह सो बांकी जित हर जापी हर हर नाम सुहाविया वडभागी पाई नाम सुखाई जन नानक राम उपाइया।

हर मिले हर गुण सुख घनी, गुर शब्द पाया हर नाम त्याया, बडभागी हर रंग हर बाणी, हर मिले स्वामी अंतर जामी, हर नव तन हर नव रंगी।

मन मैगल गुर शब्द वस आया राम। मन वसगत आया परम पद पाया, सा धन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती। कर सो है हर प्रभ नारी, हर रंग राती सहजे माती। हर प्रभ हर हर पाया, नानक जन हर दास कहत है। वडभागी हर हर त्याया, देहे घोड़ी जी जित हर पाया। राम मिल सतगुर जी।

से प्रधान्य हर से तीरंग राते हर रसै अगाए सहज समाए घट घट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुरे अपने पाणी कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिनकै सद कुरबाणी सलोक देह अंधारी अंध सुनी नाम विहूणिया नानक सफल जनम जय घट गुठा सच धनी संत तिन खनिया वन्या जिन मेरा हर प्रभ डीठा राम जन चाख अगाणी हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तूठा हमें बूठा सुख भये दुख नास भरम बनास तन ते जप जगदीश ईसह जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तिन खनिया वन्या जिन घट मेरा हर प्रभु बूठा सलोक जो लड़ींदे राम सेवक से कांडिया नानक जाने सत साई संत ना बाहरा शंत मिल जल जलह खटाना राम संग ज्योति ज्योत मलाना राम समाए पूर्ण पुरख करते आप आपह जानिए तह सुन सहज समाध लागी एक एक वखाणिए आप गुप्ता आप मुक्ता आप वखाना नानक भ्रम पै गुण बिनासी मिल

मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो शरण आवे गुण निदान पावे सो बहुड़ जन्म ना मरता।

मन इच्छेड़ा फल पाइय राम। मन इच्छ पाइय प्रभ त्याइय, मिट है जम के त्रासा। गोविंद गाया साध संगाया, भई पूर्ण आसा। तज मान मोह विकार सगले, प्रभु कै मन पाइय। बिनवंत नानक दिन सरैणी, सदा हर हर त्याइय। दरवाजे है अनहत वाजे राम, घट घट हर गोविंद गाजे राम। गोविंद गाजे सदा बिराजे, अगम अगोचर ऊंचा। गुण बेअंत किस कहन ना जाई, कोई ना सकै पहुंचा। आप अपाए आप प्रतपाले, जी जंत सब साजे। बिनवंत नानक सुख नाम भगती, दर वजह है अनहद वाजे। राग बड़ा हंस महला पहला, घर पंजवा अलाहनिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, धन सरंदा सच्चा पातशाह। जिन जग धंदै लाया, मोहलत पुन्नी पाई भरी। जानी अड़ा घत चलाया, जानी घत चलाया लिखया आया।

ऐथे आया सब को जासी, कूड़ करहो अहंकारो, नानक रुन्ना बाबा जानिए, जे रोवे लाए प्यारो, वड़ांस महला पहला, आव हो मिल हो सहेली हो, सचड़ा नाम लए हां, रोवे है बिरहा तन का, अपना साहेब संभाले हां, साहेब संभाले हैं पंथ निहाले हैं, असा पे उते जाना, जिसका किया तिन्हीं लिया, हुआ तिसे का पाणा, जो तिन कर

हारेवा रोवे माया मुठड़ी धंधड़ा रूवण हारेवा धंधा रूवे मैल ना धोवे सुपनंतर संसारू ज्यो बाजीगर पर मैं भूले झूठ मुठी अहंकारू आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाई नाम रते गुरपूरे राखी नानक सहज सुपहाई वडहंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसार होवा सच्चा घर सचड़ै से।

प्रेम समाए जिने अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़े आरे सुने हो कंत मेहली हो फिर सेवे हो शब्द विचारे सब जागे आप उपायन आवन जान संसारा माया मोह खुआयन।

जन्म गवायो रोवे अवगुण यारी झूठी फिर जग जीवन किसनो रोइये रोवे कंत वसारे सब जग आप उपायो आवन जान संसारी सो फिर सच्चा सद ही साचा है ना ओह मरे ना जाए भूली फिरे धन इणिया रंड बैठी दूजे पहाय रंड बैठी दूजे पाई माया मोहे दुख पाए आप कटे तन सीजे जो किश आया सब किश जासी दुख लागा पाए दूजे जम काल ना सूजे माया जग लूजे लभ लोभ चेत लाए।

पिर नाले, गुर प्रसादी साचा पिर मिले, अंतर सदा संभाले, फिर अंतर संभाले सदा है नाले, मन मुख जाता दूरे, इहो तन रुलै रलाया काम ना आया, जिन खसम ना जाता हदूरे, नानक सा तन मिले मलाई, फिर अंतर सदा संभाले, फिकरो वह पिरह विछुनिया, अंधी ना जाने पिरह नाले, बढ़ांस महला तीजा, गुरु वह पिरह विछुनिया, मैं फिर सचड़ा है सदा नाले, जिन्नी चलन सही जानिया, सतगुर सेव है नाम संभाले, सदा नाम संभाले सतगुर है नाले, सतगुर सेव सुख पाया, शब्दे काल मार सच उरतार, फिर आवन जान ना होया, सच्चा साहिब सच्ची नाही, वेखै नदर निहाले,

सब आखो सतगुरु वाहो वाहो जिन दान हर नाम मुख दिया सलोक महला तीजा भै विच सब आकार है निरपो हर जीओ सोए सतगुर सेवे हर मन वसै तिथे भउ कदे ना होए दुश्मन दुख तिसनो नेड़ ना आवे ओहे ना सकै कोई गुरमुख मन विचारिया जो तिस भावै सो होए नानक आपे ही पत रखसी कारज सवारे सोए महला तीजा एक सज्जन चले एक चल गए रहंदे भी फुन जाहे जिन्ने सतगुर ना सेवेओ ते आए गए पछताहे नानक सच रते से ना विछड़ है सतगुर सेव समाहे पौड़ी तिस मिलिया सतगुर सज्जन है जिस अंतर हर गुणकारी तिस मिलिया सतगुर प्रीत मैं जिन हूं मैं विचों मारी सो सतगुर पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जप्यो संतोह राम नाम भौजल बिख तारी गुरपूरै हर उपदेश।

काम क्रोध विनाश सतगुर का भव छोड़िया मन हठ काम ना आवै रास जमपुर बदे मारिय है को ना सुने अरदास नानक पूर्व लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास पौड़ी सो सतगुर सेवे हो साध जन जिना हर हर नाम दिरडाया सो सतगुर पूजो हो दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया सो सतगुर देखो हो एक निमख निमख जिन हर का हर पंथ बताया किस सतगुर की सब पगी पवो हो जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो हो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया श्लोक महला तीजा सतगुर मिले भुख गई

मनाई। इस भेखै थामहू गिरहो भला जिथहू को वरसाई। शब्द रत्ते तिन्ना सूझी पई दूजे भरम भुलाई। पै किरत कमावना कहना कछू ना जाए। नानक ज्योति सुभावै।

ना हो गई अचिंत वत्स मने आय अंतर तीर्थ ज्ञान है सतगुर दिया बुझाय मैल गई मन निर्मल हुआ अमृत सारे तीर्थ नहाए सज्जन मिले सज्जना सच्चा शब्द सुपहाय घर ही परचा पाया ज्योति ज्योत मिलाय पाखंड जम काल ना छोड़े ले जासी पत गवाय नानक नाम रते से उबरे सच्चे सिंह निबलाए पौड़ी तित जाए बहु सत संगति जित हर का हर नाम बिलोई सहजे ही हर नाम ले हो हर तत् ना खोई है नित जप्यो हो हर हर दिन सरात हर दरगाह ढोई है सो पाए पूरा सतगुरु जिस तुर मस्तक लिलाट लखोई है तिस गुर को सब नमस्कार करो जिन हर की हर गाल गलोई है श्लोक महला तीजा सज्जन मिले सज्जना।

गुर कै शब्द अपार एह सज्जन मिले ना विछड़ है जे आप मेले करतार इक ना दर्शन की प्रतीत ना आईया शब्द ना करह विचार विछड़िया का क्या विछड़ जिन्ना दूजे भाए प्यार मनमुख सेती दोस्ती थोड़िया दिन चार इस प्रीति टुटदी विलम ना होवे

वर्मी मारी साप ना मरे त्यों गुरे कर्म कमाहे सतगुर दाता सेविए शब्द वसे मन आए मन तन शीतल शांत होए तृष्णा अग्न बुझाए सुखा सिर सदा सुख होए जा विचों आप गवाए गुरमुख उदासी सो करे

अंध बहु कर्म कमावे, दूजे भाए प्यार अणहोंदा आप गणाईंदे, जम मार करे तिन खुआर। नान

साध ना आयु जिचर गुरमुख शब्द ना लागे सतगुरु सेवे नाम मन वसे विचों भ्रम पौ भागे जेहा सतगुरु नो जाने ते हो हुए तां सच नाम लिव लागे नानक नाम मिले वडियाई।

सतगुर की गल मन्नी जो गुरमुख नाम के आए दे तिन चढ़ी चवगण वन्नी। सलोक महला तीजा मनमुख कायर रूप है बिन नावे नक नाही अन दिन धंधे व्यापिया सुपने भी सुख नाही। नानक गुरमुख हो है ता उबर है नाही ता बदे दुख सहाय। महला तीजा गुरमुख सदा दर सोहने गुर का शब्द कमाहे अंतर शांत सदा सुख दर सच्चे सोभा पाए। नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाए। पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई। गुरमुख वशिष्ट हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई। गुरमुख हर भगत हर आप लहाई। सलोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत ना आईया शब्द ना लागो भाव उसनो सुख ना उपजै भावें सौ गेड़ा आवो जाओ। नानक गुरमुख सहज

हर नाम सखाई मित्र हमारा, हर नावे नाल गल्ला, हर नावे नाल मसलक, हर नाम हमारी करदा नित सारा, हर नाम हमारी संगत अत प्यारी, हर नाम कुल हर नाम परवारा, जन नानक कौ हर नाम हर गुर दिया, हर हलत पलत सदा करे निस्तारा। श्लोक महला तीजा, जिन कौ सतगुर भेटिया, ते हर कीर्त सदा कमाहे, चिंत हर नाम तिनकै मन वसिया, सच्चै शब्द समाहे, कुल उधार है अपना, मोख पदवी आपे पाहे, पार ब्रह्म तिनको संतुष्ट भया, जो गुर चरणी जन पाहे, जन नानक हर का दास है, कर कृपा हर लाज रखाई। महला तीजा, हौ मैं अंदर खड़क है, खड़के खड़क विहाय, हौ मैं वड्डा रोग है, मर जमे आवे जाय, जिनको पूर्व लिखिया, तिन्ना सतगुर मिलिया प्रभ आय, नानक गुर प्रसादी उभरी, हौ मैं शब्द जलाए पौड़ी, हर नाम हमारा प्रभ अवगत अगोचर, अविनाशी पुरख विधाता, हर नाम हम सिरेव है, हर नाम हम पूज्य है, हर नामे ही मन राता, हर नामे जेवड़ कोई अवर ना सूजे, हर नामो अंत छडाता, हर नाम दिया गुर पर उपकारी, तन तन गुरु का पिता माता।

सार नानक जिनको नदर करे से गुरमुख लंगे पार महला तीजा। इको सतगुर जागता होर जग सूता मोह प्यास सतगुर सेवन जा गन से जो रते सच नाम गुणतास। मनमुख अंध ना चेतनी जन्म मर होहे विनाश नानक गुरमुख तिन्नी नाम त्याया जिनको धुर पूर्व लिखे आस पौड़ी। हर नाम हमारा भोजन शक्ति प्रकार जित खाया हमको तृप्त भई। हर नाम हमारा पहनन जित फिर नंगे ना होवे होर पहनन की हमारी सरद गई। हर नाम हमारा वणज

कीर्तन सदा करह। गुरु कै शब्द अपारा, शब्द गुरु का सद उच्च रह। जुग जुग वर्तावन हारा, एहो मनुआ सदा सुख वस्त है। सहजे करे वापारा, अंतर गुरु ज्ञान हर रत्न है। मुक्त करावन हारा, नानक जिसनो नदर करे सो पाए। सो हुए दर सचियारा पौड़ी, तन तन सो गुर सिख कही है। जो सतगुर चरणी जाए पया, तन तन सो गुर सिख कही है। जिन हर नामा मुख राम कहया, तन तन सो गुर सिख कही है। जिस हर नाम सुनिया मन आनंद भया, तन तन सो गुर सिख कही है। जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया, तिस गुर सिख कौ हौ सदा नमस्कारी। जो गुर कै पाण गुर सिख चलिया, सलोक महला तीजा। मन हथ किने ना पायो, सब थके कर्म कमाए। मन हठ भेख कर भरम दे,

पौड़ी, जिन उपाए जी तिन हर राखिया, अमृत सच्चा नाउ भोजन चाखिया, तिपत रहे आघाए मिटी पपाखिया, सब अंदर एक वरतै तिने विरले लाखिया, जन नानक भय निहाल प्रभ की पाखिया। श्लोक महला तीजा, सतगुरु नो सब को वेखदा, जेता जगत संसार दिठै मुक्त ना हो गई, जिचर शब्द ना करे विचार, हम मैं मैल ना चुकई, नाम ना लगे प्यार, एक आपे बख्श मलायन डुबदा ताज विकार, नानक एक दर्शन देख मर मिले, सतगुर हेत प्यार। महला तीजा, सतगुरु ना सेवे मूर्ख अंध गवार, दूजा

0: मन हर सरनी पढ़ रही है।
1: हर दिन कोई मार जीवाल ना सके,
0: मन हुए निचिंद निसल हुए रही है। उठदियां बहदियां सुतियां सदा सदा हर नाम ते आई है।

कटियन ते भाई से वीर अगे गए ना मनियन मार कड होवे पीर सोठ महला पहला कर पहला मन हाली किरसानी करनी शर्म पानी तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस पाओ कर्म कर जमसी से कर भागठ देख बाबा माया साथ ना होए इन माया जग मोहया विरला बूझै कोई रहाओ हाण हट कर यार जा सच नाम कर वथ सुरत सोच कर भांड साल तिस विच तिसनो रख वणजारिया स्यो वणज कर लै लाहा मन हस्त सुन सासत सौदागरी सत घोड़े लै चल खर्च बन चंगियाइया मत मन जान है कल निरंकार कै देस जाहे ता सुख लह महल लाए चित कर चाकरी मन नाम कर कम बन बदियां कर धावनी ता को आखै धन नानक वेखै नदर कर चढ़ै चवगण वन सोठ महला।

अत भाई हुक्म भया बाहर घर छोड़िया खिन मह भई पराई नाम दान इशनान ना मन मुख तित तन धूड़ तुमाई मन मानिया नाम सिखाई पाए परहु गुर कै बलिहार जिन साची बूझ बुझाई रहाओ जग स्यो झूठ प्रीत मन भेदया जन स्यो वाद रचाई माया मगन एहन समग जो है नाम ना लेवै मरे बिख खाई गंधन वहन रत्ता हितकारी शब्द सुरत ना आई रंग ना राता रस नहीं भेदया मनमुख पत गुआई साध सभा मह सहज ना चाखिया जिहवा रस नहीं राई मन तन धन अपना कर जानिया दर की खबर ना पाई अखी मीट चलिया अंधियारा घर दर दिसै ना पाई।

कन्नी सुन सुन शब्द सलाही, अमृत हृदय वसाई, निर्भउ निरंकार निर्वैर, पूर्ण ज्योत समाई। नानक गुरविण भरम ना भागै, सच नाम वडियाई। सोट महला पहला दुतुके, पुड़ धरती पुड़ पानी आसन, चार कुंत चौबारा, सगल भवन की।

मैं मूर्ख किस दीजै, प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, डुबदा पत्थर लीजै, सूठ महला पहला, हौ पापी पतत परम पाखंडी, तू निर्मल निरंकारी, अमृत चाख परम रस राते, ठाकुर शरण तुम्हारी, करता तू मैं मान निमाणी, मान महत नाम धन पल्ले, साच्या शब्द समाने रहाओ, तू पूरा हम पूरे होशे, तू गौरा हम हौरे, तुझ ही मन राते अहनस प्रभाते, हर रसना जप मान रे, तुम साचे हम तुम ही राचे, शब्द भेद फुन साचे, अहनस नाम रते से सूचे, मर जन्मे से काचे, अवर ना दीसै किस सालाही, तिसह शरीक ना कोई, प्रणवत नानक दासन दासा, गुरमत जानिया सोई, सोठ महला पहला, अलख अपार अगम अगोचर, ना तिस काल ना कर्मा, जात अजात अजोनी संपहो, ना तिस भाओ ना भरमा, साचे सचियार विटोह कुरबान, ना तिस रूप वर्ण नहीं रेखिया, साचै शब्द नीशान रहाओ, ना तिस मात पिता सुत बंदक, ना तिस काम ना नारी, अकुल निरंजन अपर परंपर, सगली जोत तुम्हारी, कट कट अंतर ब्रह्म लुकाया, कट कट जोत सबाई, वज्र कपाट मुक्ते गुरमति, निरभय ताड़ी लाई, जंत उपाए काल सिर जंता, वसगत जुगत सबाई, सतगुर सेव पदार्थ पावह, छूटह शब्द कमाई, सूचै भांडै साच समावै, विरले सूचाचारी, तंतै कौ परम तंत मलाया।

केहो रस त्यों लहू। गुर मेलै हर दे रहाउ, संत जना मिल संगति गुरमुख तीरथ होए। अट तट तीरथ मजना गुर दर्श प्राप्त हो।

तिहारी जीव सतगुर बंधन तोड़ नरारे महुड़ना गर्भ मजारी जीव नानक ज्ञान रतन परगासिया हर मन वसिया निरंकारी जीव सूरठ महला पहला जिस जल निद कारण तुम जागे आए सो अमृत गुर पाही जीव छोड़ हो वेश भेख चतराई दुबदा इहो फल नाही जीव मन रे थिर रहो मत कत जाही जीव बाहर ढूंढत बहुत दुख पाव है घर अमृत घट माही जीव रहाओ अवगुण छोड़ गुणा कौ धावो कर अवगुण पछताही जीव कर अपसर की सार ना जाने फिर कीच बुढ़ाही जीव अंतर मैल लोभ बहु झूठे बाहर नावो काही जीव निर्मल नाम जपो सद गुरमुख अंतर की गत ताही जीव पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो सच गुर बचनी फल पाही जीओ ज्यों भावै त्यों राखो हर जीओ जन नानक शब्द सलाही जीओ सूरठ महला पहला पंच पदे अपना घर मूसत राख ना साकह की पर घर जोहन लागा घर दर राख है जे रस चाख है जो गुरमुख सेवक लागा मन रे समझ कमन मत लागा नाम वसार अनरस लोभाने फिर पछताहे अपागा रहाव आवत को हरख जात को रोवह एह दुख सुख नाले लागा आपे दुख सुख भोग पगावै गुरमुख सो अनरागा हर रस ऊपर अवर क्या कही है जिन पिया सो तृप्तागा माया मोहित जिन इहो रस खोया।

यो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो हो घट घट जोत समोई जियो चल तो ठाक रखो हो घर अपने गुर मिले एह मत हो जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसर सुख हो जियो पीवो हो अप्यो परम सुख पाई है निज करवासा हो जियो जन्म मरण भव भंजन गाई है।

रहाउ, जागत रहे तिनी प्रभ पाया, शब्दे हम मैं मारी, गिरही मह सदा हर जन उदासी, ज्ञान तत बीचारी, सतगुर सेव सदा सुख पाया, हर राखिया उर धारी, एहु मनुआ दह दिस धामदा, दूजै भाई खुआया, मनमुख मुगद हर

सुखदाता, इसका अंत न पाया। पूरे गुरु की सेवा कीनी, अचिंत हर मन वसाया। मन तन निर्मल सदा सुख अंतर, विचों भरम चुकाया। हर का मार्ग सदा पंथ विखड़ा, वो पाए गुर विचारा। हर कै रंग राता शब्दे माता, हम मैं तजे विकारा। नानक नाम रता इक रंगी, शब्द सवारन हारा। सोरठ महला तीजा, हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारी। जिचर घट अंतर है सासा, एक पल खिन बिसर है तू स्वामी। जानो बरस पचासा, हम मूड मुगद सदा से पाई। गुर कै शब्द परगासा, हर जियो तुम आपे देहो बुझाई। हर जियो तुद विटोह वारिया साध ही, तेरे नाम विटोह बल जाई रहाओ। हम शब्द मोए शब्द मार जवाले पाई, शब्दे ही मुक्त पाई। शब्दे मन तन निर्मल होआ, हर वस्या मन आई। शब्द गुरदाता जित मन राता, हर सिउ रहे समाई। शब्द ना जान है से अन्ने बोले, से कित आए संसारा। हर रस ना पाया, बिरथा जन्म गवाया। जम है वारो वारा, बिस्ता के कीड़े बिस्ता माहि समाणी। मान मुख मुग्ध गोबारा, आपे कर वेख मार्ग लाए भाई। किस बिन अवर ना कोई, जो तुर लिखिया सो कोई ना मेटै भाई। करता करे सो होई, नानक नाम वसया मन अंतर भाई।

आप राख जो तेरे मन पानी तू गुण दाता शब्द पछाता गुण कह गुणी समाणी मन मेरे हर जियो सदा संभाल अंत काल तेरा बेली होवे सदा लिब है तेरे नाल रहाव दुष्ट चौंकड़ी सदा कूड़ कमावे ना बूझ विचारी निंदा दुष्टी ते किन फल पाया हरनाक्ष नख है बिदारी प्रहलाद जन सद हर गुण गावे हर जियो लय उबारी आपस कहो बहु भला कर जान है मन मुख मत ना।

अंत गए पछताए, सफल जन्म भगतां का कीता, गुर सेवा आप लाए, शब्दे राते सहजे माते, अन दिन हर गुण गाए, नानक दास कह बेनंती, हौं लागा तिन कै पाए, सोठ महला तीजा, सो सिख सखा बंद पह पाई, जे गुर के पाणी विच आवै, अपने पाणे जो चले पाई, विछड़ चोटा खावे, बिन सतगुर सुख कदे ना पावे पाई, फिर पछोतावे, हर के दास सुहेले पाई, जन्म जन्म के किल बिख दुख काटे, आपे मेल मलाई रहाओ, यो कटंब सब जी के बंधन पाई, परम पुला संसारा, बिन गुर बंधन टूट है नाही, गुरमुख मोख द्वारा, कर्म करह गुर शब्द ना पछाण है, मर जन्म है वारु वारा, हौ मेरा जग पलच रहया पाई, कोय ना किस ही केरा, गुरमुख महल पायन गुण गावन, निज घर होए बसेरा, ऐथै बूझै सो आप पछाणै, हर प्रभ है तिस केरा, सतगुरु सदा दयाल है भाई, बिन भागा क्या पाईऐ, एक नदर कर वेखै सब ऊपर, जेहा भाउ तेहा फल पाईऐ, नानक नाम वसै मन अंतर, विचों आप गवाईऐ, सोठ महला तीजा चौथुके, सच्ची भगत।

सरनाई अपनी नदर करे पात राखै हर नामो दे वडियाई रहाओ पूरे गुरते आप पछाता शब्द सच्चा विचारा हिरदय जग जीवन सद वस्या तज काम क्रोध अहंकारा सदा हजूर रविया सब ठाई हिरदय नाम अपारा जुग जुग बाणी शब्द पछाणी नाउ मीठा मनह प्यारा सतगुर सेव जिन नाम पछाता सफल जन्म जाग आया हर रस चाख सदा मन तृप्तिया गुण गावे गुणी अगाया कमल प्रगास सदा रंग राता अनहद शब्द बजाया तन मन निर्मल निर्मल बाणी सच्चे सच समाया राम नाम की गत कोए ना बूझे गुरमत हृदय समाई गुरमुख होवै सो मग पजाने हर रस रसन रसाई जप तप संजम सब गुरते होवै हृदय नाम वसाई नानक नाम समल है से जन सोहन दर साचै पत पाई सोठ महला तीजा दुतुके सतगुर मिलै उल्टी पई पाई जीवत मरै ता बूझ पाई सो गुरु सो सिख है पाई जिस ज्योति ज्योत मलाई मन रे हर हर सेती लिव लाए मन हर जप मीठा लागे पाई गुरमुख पाए हर थाए रहाओ बिन गुर प्रीत ना उपजै पाई मन मुख दूजै पाए तोह कुट है मन मुख कर्म करह पाई पल्ले किशु ना पाए गुर मिलिया नाम मन रविया पाई साची प्रीत प्यार सदा हर के गुण रवै पाई गुर कै हित अपार आया सो परवान है पाई ये गुर सेवा चित लाए नानक नाम हर पाई पाई गुर शब्दी मेलाए सोठ महला तीजा घर पहला तिही गुणी त्रे भवन व्यापिया पाई गुरमुख बूझ बुझाए राम नाम लग छूटी है पाई।

तेरे मन वसै भाई सदा हर के गुण गाए रहाउ नामै ते सब उपजे भाई नाए विसरिया मर जाए अज्ञानी जगत अंध है भाई सूते गए मोहाए गुरमुख जागे ते उभरे भाई भवजल पार उतार जग मैं लाहा हर नाम है भाई हिरदय रखिया उरतार गुर सरनाई उभरे भाई राम नाम लिवलाए नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा भाई जित लग पार जन पाए सोठ महला तीजा घर पहला सतगुर सुख सागर जागे अंतर होर थै सुख नाई हौं मैं जगत दुख रोग व्यापिया मर जन मैं रोवै ताही प्राणी सतगुर सेव सुख पाए।

आवह हर रस साध ना आया संध्या तर्पण करह गायत्री बिन बूझे दुख पाया सतगुर सेवे सो वड भागी जिसनो आप मलाई हर रस पी जन सदा तृप्तासे विचों आप गवाई एहो जग अंधा सब अंध कमावे बिन गुर मग ना पाई नानक सतगुर मिले ता अखी वेखे करे अंदर सच पाए सोठ महला तीजा बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा जुग चारे परमाई हम दीन तुम जुग जुग दाते।

मनसा मार दुबदा सहज सुमाणी पाया नाम अपारा हर रस चाख मन निर्मल हुआ गिल बिख काटन हारा शब्द मरहो फिर जीव हो सद ही ता फिर मरन ना होई अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावे कोई दाते दात रखी हाथ अपने जिस भावे तिस देई नानक नाम रते सुख पाया दरगाह जाप है से सोठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज धुन उपजे गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या नामे नाम समाए बिन सतगुर सब जग बोराना मनमुख अंधा शब्द ना जाने झूठे भरम भुलाना रहाओ त्रै गुण माया भरम भुलाया हम मैं बंधन कमाए जमन मरन सिर ऊपर उभो

चौथा पद कीन्है राम नाम सुख होई त्रै गुण सब तेरे तू आपे करता जो तू करह सो होई नानक राम नाम निस्तारा शब्दे हौं मैं खोई सोठ महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद आपे आप वरतदा प्यारा आपे आप अपाह वणजारा जग आप है प्यारा आपे साचा साहु आपे वणज वापारिया प्यारा।

प्यारा गुर खेवट आप चला आपे ही चढ़ लंघदा प्यारा कर चोज वेखे पातशाह आपे आप दयाल है प्यारा जन नानक बख्श मला सोरठ महला चौथा चौथा आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज आपे खंड आपे सब लोए

सतगुरु विच नाम निधान है प्यारा, कर दया अमृत मुख चोए रहाउ, आपे जल थल सबत है प्यारा, प्रभ आपे करे सो होए, सब नारिजक समाह दा प्यारा, दूजा अवर ना कोई।

प्यारी ज्यों हर प्रभ मेरे पाया आपे जंती जंत है प्यारा जन नानक वजह वजाया सोठ महला चौथा आपे सिरठ उपाय दा प्यारा कर सूरज चंद चनान आप नताणिया ताण है प्यारा आप निमाणिया मान आप दया कर रखदा प्यारा आपे सुगड़ सुजान मेरे मन जप राम नाम निशान सत संगत मिल त्याए तू हर हर बहुड़ ना आवन जान रहाओ आपे ही गुण वरतदा प्यारा आपे ही परवान आपे बख्श कराईंदा प्यारा आपे सच निशान आपे हुक्म वरतदा प्यारा आपे ही फुरमान आपे भगत भंडार है।

कृपा जल देव हो हर नाय हो अंतर नाम मंगा दिन राती नामे ही शांत पाई रहाओ ज्यों चात्रक जल बिन बिल लावे बिन जल प्यास ना जाई गुरमुख जल पावे सुख सहजे हरिया भाए सुभाई

हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल भये है, तृष्णा शब्द बुझाई। सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचार चरै तां सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई। प्रेम के सर लागे तन भीतर, तां भ्रम काटिया जाई। मेरे गोबिंद अपने जन को देह वड़े आई, गुरमत राम नाम परगास्त हो।

नाही, जे को रखै लुकाई, सब किस तेरा तू अंतर जामी, तू सबना का प्रभ सोई, जिसनो दात करह सो पाई, जन नानक अवर ना कोई, सोठ महला पंजवा घर पहला ते तुके, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किस हौ जाती किस आराधी, जा सब को कीता होसी, जो जो दिसै वड्डा वडेरा, सो सो खाकू रलसी, निरभउ निरंकार भव खंडन, सब सुख नव निध देसी, हर जियो तेरी दाती राजा, मानस बपड़ा क्या सलाई, क्या तिसका मोहताजा रहाउ, जिन हर त्याया सब किस तिसका, तिसकी भूख गवाई, ऐसा धन दिया सुख दाता, नखोटना कब ही जाई, आनंद भया सुख।

निरपौ भय गुरचरणी लागे, एक राम नाम आधार सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ है ती होम नहारा। कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा, वड्डी वड्याई अचरज सोभा कारज आया रास्ते, नानक कौ गुरपुरा भेट्यो सगले दुख बिनासे। सोरठ महला पंजवा सुखिए कौ पेख सब सुखिया,

साध शर्म छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रहे फिर आवत बारो बारा रहाओ ओहो जो परम पलावा कहियत तिन मह उर्जियो सगल संसारा पूर्ण भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा निंदो नाही काहू बात है एहो खसम का किया जाको कृपा करी प्रभ मेरा मिल साध संगत नाऊ लिया पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सब ना करत उदारा कहो नानक गुर बिन नहीं तरिया एहो पूरन तत बिचारा सोठ महला पंजवा खोजत खोज

खोज बिचारियो राम नाम तत् सारा किल बिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीवो हो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावे साधु अमृत बाणी रहाओ मुकत भुगत जुगत सच पाई है सर्ब सुखा का दाता अपने दास कहो भगत दान देवे पूर्ण पुरख विधाता सरवणी सुनिए रसना गाइए हिरदय त्याई सोई करण कारण समर्थ स्वामी जाते बिरथा ना कोई वड्डे भाग रतन जन्म पा।

जोगे अंतर गुर नानक की वडियाई। चौठ महला पंजवा घर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी।

करै सो भला मनाइए सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै इयों दर्शन हर जियो पाइए भयो अनग्रहो प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कौ गुर कृपा तारी सब अकुल निरंजन दीठा सोरठ महला पंजवा कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्ब जिया का दातारे प्रतपालै नित सार संभालै एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करता रे हर जियो नाम परयो रामदास रहाउ दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्ब कटां पर पूरी रे पेखत सुनत सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे हर बेअंत हौ मित कर वरनो क्या जाना होए कैसो रे करो बेनती सतगुरे अपने मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराती तरियारे गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना परियारी सोठ महला पंजवा जिन्ना बात को बहुत अंदेसरू ए मिटे सब गया सहज सैन अर सुखमन नारी ऊंद कमल बिगसया देखो अचरज भया जेहे ठाकुर को सुनत अगाध बोध सो हृदय गुर दया रहाउ जोए दूत मोहे बहुत संतावत ते भयानक भया करह बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी सरनया जह भंडार गोविंद का खुलिया जेहे प्राप्त ते लया एक रतन मोह को गुर दीना मेरा मन तन शीतल थिया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम हुआ भगत भंडार गुर नानक कौ सौंपे फिर लेखा मूल ना लया सोठ महला पंजवा चरण कमल स्यों जाका मन लीना से जन तृप्त अघाई गुण अमोल जिस हृदय न वस्या ते नर तृष्ण त्रिखाई हर अरादे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाओ जेहे जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिये प्रभ सरने जेहे नर विसरिया पुरख बधाता ते दुखिया मह गणने जेहे गुरमान प्रभु लिवलाई ते महा आनंद रस करिया जेहे प्रभु बिसार गुर ते बेमुखाई ते नरक घोर मह परिया जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी संतन की हृदय भये मगन चरनारा सोठ महला पंजवा राजन मह राजा उरझायो मानन मह अभमानी लोभन मह लोभी लोभायो त्यों हर रंग रते ज्ञानी हर जन को यही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ अमलन स्यों अमली लपटायो भूमन भूम प्यारी हीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मह विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पाव है जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गाव है जैसी भूख तैसी का पूरन सगल कटां का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोठ महला पंजवा हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर

हम पलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निदान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे, कहो नानक हम यह हवाला।

मांगन कौ सगले दान देहे प्रभ पान हिन मह अवर हिन मह अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूडो गूडो गहर गंभीरो ऊंचो अगम अपारी साध संग जो तुम्हें मिलायो।

देवी संतन सिंह बेवहारा संतन सिंह हमलाहा खाटिया हर भगत परे पंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा धर्म राये अब कहां करे तू जो फाट्यो सगलो लिखा महा आनंद भय सुख पाया संतन कै प्रसादे कहो नानक हर सिओ मन मानिया रंग रते बिस्मादी।

अभमाना ताम है सुख नहीं पाइये हो होरेन तू सगल की मेरे मन तव आनंद मंगल सुख पाइये काल ना पाने अंतर भेद जाने ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम एहो मनुआ अकाल मूत गुरदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवी पार ब्रह्म निरंकारा नाम वर्तन नामो वालेवा नाम नानक प्राण अधारा सोठ महला पंजवा मृतक कौ पायो तन सासा बिचरत आन मलाया पशु प्रेत मुग्ध भय स्रोते हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकि कीमत कह ना जाई रहाओ दुख सोग का टाहयो डेरा अंध मंगल बिसरामा मन बांचत फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा इहां सुख आगे मुखी उज्जल मिट

मन पानी उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द भ्रम भागा कहो नानक ताके पूर करम्मा जाका गुर चरनी मन लागा चौथ महला पंजवां रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु ना पाईए पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याईए सिमरहो हर हर नाम परानी बिन सह काची दे अज्ञानी रहाउ मृग तृष्णार सुपन मनोरथ ताकी कछ ना वडाई राम भजन बिन काम ना आवस संग ना काहू जाई हौ हौ करत बेहाय अवर

पूर्ण अविनाशी काम क्रोध बिख जारी महाबिखम अगन को सागर साधु संग उधारी पूरा गुर मेट्यो परम अंधेरा पज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अगाई जत कत पूर रहे ओ परमेश्वर कत आवे कत जाई जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया तां की पूर्ण काला काल कलेश मिटे दुख सगले काती जम की पासा कहो नानक प्रभ कृपा तारी मन तन भये बिगासा सोठ महला पंजवां करन करावन हार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला तो प्रभ अंतर जामी मेरा गुर हुआ आप सहाई सुख सहज आनंद मंगल रस अचरज पई बढ़ाई रहा गुर की सरन पए पै नास्ती साची दरगाह मानी गुण गावत आराध नाम हर आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी सद बलिहार जाओ प्रभे अपने जिन पूर्ण पैज सुवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अंत सेती घर आया सूरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पै लाती दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर ध्याया

थीवै विघ्न बनासन सब दुख नासन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से फल पाई हर की कथा सुहेली आदि अंत मद नानक को सो प्रभ हुआ बेली सूरठ महला पंजवा पंच पदा बिन सह मोह मेरा अर तेरा बिन सह अपनी तारी संतो हो इहा बताव हो कारी जित हों मैं गर्भ नवारी रहाओ सर्व भूत पार ब्रह्म कर मान्या होवा सगल रे नारी देखियो प्रभ जीओ अपने संगे चूकै पीत परमहारी औखद नाम निर्मल जल अमृत पाईऐ गुरु द्वारी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी सोठ महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समाणी घट घट माध हो जिया संतो हो घट घट रहे समाहेउ पूर्ण पूर रहेउ सर्ब मह जल थलर मैया आहेउ रहाउ गुण निदान नानक जस गावै सतगुर भरम चकायउ सर्ब निवासी सदा अलेपा सब मह रहे समायउ सूरठ महला पंजवा जा कै सिमरन होए आनंदा बिन सह जन्म मरण भय दुखी चार पदार्थ नव निध पावे बहुर ना तृष्णा भुखी जाको नाम लैत तू सुखी सास सास त्याव हो ठाकुर कौ मन तन की अरे मुखी रहाओ शांत पावह होवह मन शीतल अग्न ना अंतर तुखी

आप छडावहु, एहे पीतर ते इनको डारहु, आपन निट बलावहु, अपनी बिद आप जनावहु।

गुरपूरा भेटियो वडभागी जन नानक कतह ना धावहु सूरत महला पंजवां जाकै सिमरन सब कछ पाई है बिरथी काल ना जाई तिस प्रभ त्याग अवर कत राचुहु जो सब मह रहे आसमाई हर हर सिमरहो संत गोपाला साध संग मिल नाम त्यावहु पूर्ण होवै काला रहाउ सार संभालै नित प्रत पालै प्रेम सहत गल लावै कहो नानक प्रभ तुमरे बिसरत जगत जीवन कैसे पावै सूरठ महला पंजवां अबनासी जीयन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निधान भगतन कहो बर्तन बिरला पावै कोई मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई जाकी सरन पया सुख पाई है बहुड़े दुख ना होई रहाओ वडभागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई तिनकी धूर नानक दास बांचै जिन हर नाम हृदय परोई सूरत महला पंजवां जन्म जन्म के दुख निवारै सूका मन साधारै दर्शन भेटत होत निहाला हर का नाम बीचारै मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देवै काटै जम की फंदा रहाउ समरथ पुरख पूर्ण बेधाते आपे करने हारा अपना दास हर आप उभारिया नानक नाम आधारा

जंत प्रभ सगल उधारी दर्शन देखण हारी गुरपूरे की अचरज वडियाई नानक सद बलिहारी चौरठ महला पंजवा संचन करो नाम धन निर्मल थाती अगम अपार बिलस बनोद आनंद सुख माणु खाए जीव हो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो।

अनंत अनंतर जत कत पेखो सोई नानक गुर पायो वड भागी तिस जे वडे अवन ना कोई टूठ महला पंजवा सुख मंगल कल्याण सहज धुन प्रभ के चरण निहारिया राखन हार राखियो बारिक सतगुर ताप उतारिया उबरे सतगुर की सरनाई जाकी सेवना बिरथी जाई रहाउ कर मह सूख बाहर पुन सूखा प्रभ अपने पय दयाला।

भया मन उद्दम नाम रतन जस गाई मिट गई चिंता सिमर अनंता सागर तरिया पाई हृदय हर के चरण वसाई सुख पाया सहज धुन उपजी रोगा घाण मटाई रहा क्या गुण तेरे आख बखाना कीमत कहन ना जाई नानक भगत पए अबनासी अपना प्रभ भया सहाई।

पाप रोग गए गुरबचनी, मन इच्छे फल पाया, मेरा गुर पूरा सुखदाता, करण कारण समरथ स्वामी, पूर्ण पुरख बधाता रहाउ, नंद बिनोद मंगल गुण गावहु, गुर नानक पए दयाला, जय जयकार पए जग पीतर, हुआ पार ब्रह्म रखवाला।

यो पाए पिंड जिन साजिया दिता पहनन खान अपने दास की आप पैज राखी नानक सद कुर्बान सोठ महला पंजवां दुरत गवाया हर प्रभ आपी सब संसार उभारिया पार ब्रह्म प्रभ कृपा तहारी अपना बिरद संभारिया कोई राजे राम की रखवाली सुख सहज आनंद गुण गावहु मन तन देह सुखाली रहाउ पतत उदाहरण सतगुर मेरा मोहे किसका परवासा बख्श लए सब सच्चै साहिब सुन नानक की अरदासा सूरठ महला पंजवां बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर सगले रोग बिदारे गुरपुरे की सरनी उभरे कार्ज सगल सवारे हर जन सिमरिया नाम आधार ताप उतारिया सतगुर पूरै अपनी कृपा धार रहाओ सदा आनंद करह मेरे प्यारी हर गोविंद गुर राखिया वड्डी वड्याई नानक करते की साच शब्द सत भाखिया।

ताप गवाया भाई ठांड पई संसार अपने जी जंत आपे राखे जमह कियो हकतार हर के चरण हृदय उर तार सदा सदा प्रभ सिमरी है भाई दुख किल बिख काटन हार रहाओ तिसकी सरणी उबरै भाई जिन रखिया सब कोय करन कारण समरथ सो भाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु त्याई है भाई मन तन शीतल होए चौथ महला पंजवा संत हो हर हर नाम त्याय सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया

हर का नाम अधारो नानक पात राखी परमेश्वर उदरिया सब संसारू सोठ महला पंजवा मेरा

लाथे ठोठ महला पंजवां गुरपुर कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर इशनान ग्रह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरी है उठत बैठत हर हर त्याई है अन दिन सो कृत करिय रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड़ भागी पा।

अंत सब पय पवित्रा सतगुर की सच साखी विघ्न बनासन सब दुख नासन सतगुर नाम दिरड़ाया होए पाप पय सब पावन जन नानक सुख

तेरा रखवाले गुरु गोपाला सब जी पए दयाला जाप आनंद रहो गुर चरना पाओ कत नहीं प्रभ सरना रहाव तेरिया दासा हृदय मुरारी रब अब चल नीव सारी बाल धन तकिया तेरा तू भारो ठाकुर मेरा जिन जिन साध

पार ब्रह्म निवाही पूरी, काई बात न रही आयूरी, गुर चरण लाए निस्तारी, हर हर नाम समारी, अपने दास का सदा रखवाला, कर कृपा अपने कर राखे, मात पिता ज्यों पाला रहाओ, वडभागी सतगुर पाया, जिन जम का पंथ मटाया, हर

पूरी हेम कुशल भया इस नाना पार ब्रह्म वित्तो कुरबाना गुर के चरण कवल रिद धारी विघ्न न लागे तिलका कोई कार्य सगल सवारी रहाउ मिल साधु दुर्मत खोए पतत पनीत सब होए।

मिल त्याई है मन पाछत फल पाई गुरपुरा हृदय त्याई गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम त्याया।

सर्व गुणा सुखदायो मंदर चर के पंथ निहारो नैन नीर भर आयो हौ हौ पीत भयो है बीचो सुन।

गोविंद। तेरी कुदरत को कुर्बान रहाओ, जैसा बालक पाए सुपाई, लाख अपराध कमावे, कार्य उपदेश चिड़के बहु पांती।

अब भेद जाने ता किस पह आख सुनाई है, कहने कथन ना पीजे गोविंद, हर पावे पैजर खाई है। अवर ओट मैं सगली देखी, एक तेरी ओट रहाई है।

हर हर नाम अव खद मुख पाया गन नानक सुख बसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ पय आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कारज सगले सांठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुर पूरे दियो उपदेसा जप पौजल पारे उतारा रहाओ तू है मंत्री सुन है प्रभ तू है सब किश

प्रभ स्वामी पात मत की नी पूरी सदा सदा नानक बलिहारी बांचो संतां तूरी चौठ महला पंजवा गुरपुरा नमस्कारी प्रभ सबे काज सवारी हरे अपनी किरपा तारी प्रभ पूरन पैज सवारी अपने दास को पयो सहाई सगल

सब कुशल खेम प्रभ धारी, सही सलामत सब थोक उबारी, गुर का शब्द विचारी रहाओ, साध संग मल लाथी, पार ब्रह्म भयो साथी, नानक नाम त्याया, आद पुरख प्रभ पाया, चौठ महला पंजवा, जित पार ब्रह्म चित आया, सो कर दइये वसाया, सुख सागर गुर पाया, ता सहसा सगल

प्रभु की अकथ कहानी जन बोलह अमृत बाणी नानक दास बखाणी गुरपुरे ते जानी सोठ महला पंजवा आगे सुख गुर दिया पाछे कुशल खेम गुर किया सर्व निदान सुख पाया गुर अपना हृदय ते आया।

मिल साध संग हर प्याया, आठ पहर अराध्यो हर हर, मन चिंदिया फल पाया रहाउ, परा पूर्बला अंकुर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दर्श

हर हर हर अरादु हर अराद सबो किश पाईए कार्ज सगले साधु रहाव प्रेम भगत प्रबलागी सो पाए जिस वड भागी जन नानक नाम ते आया

पन्ना अनंत करह नर नारी हर हर प्रभु कृपा तारी संतो हो सुख हो आ सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रव रहे।

सोई संत गुण गावे प्रेम भगत ताका मन लीना पार ब्रह्म मन पावे आठ पहर हर का जस रवना।

जो सिवरै तिसकी गत हुवै, उधरह सगले कोटा रहाउ। संत संग जस गाया, एहु पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मटाया, सब पार ब्रह्म।

नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया। हर की भगत फल दाती, गुरपूरै कृपा कर दीनी। बिरलै किन्ही जाती रहाउ, गुरबाणी गावह पाई।

तूरे बाजे अनहद तूरे संतो राम जपत सुख पाया संत अस्थान बसे सुख सहजे सगले दुख मिटाया रहाउ गुरपूरे की बाणी पार ब्रह्म मन पाणी नानक दास वखाणी निर्मल अकथ कहानी सोठ महला पंजवा भूखे खावत लाज ना आवे त्यों हर जन हर गुण गावे अपने काज को क्यों अलकाइए जित सिमरन दरगाह मुख उज्जल सदा सदा सुख पाइए रहाउ ज्यों कामी काम लुभावे त्यों हर दास हर जस

नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई सोठ महला पंजवा प्रभ अपना हृदय त्याई कर सही सलामत आई संतोख भया संस्था।

हर सर्ब निरंतर जानिया रहाओ सब जी तेरे दयाला अपने भगत करह प्रतपाला अचरज तेरी वड्याई नित नानक नाम त्याई। सोरठ महला पंजवां नाल नारायण मेरे जमदूत न आवै नेरे कंठ

इन सगले रोग मिटाए। सोठ महला पंजवा, सर्व सुखा का दाता सतगुर ताकी सरनी पाई है। दर्शन भेट तो होते आनंदा, दुख गया हर गाई है। हर रस पीवो हो पाई, नाम जप हो नामो अराध हो। गुरपुरे की सरनाई रहाओ, तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया। सोई पूरन पाई,

आओ जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसै अंदेसा नाही सतगुर चरण लगे पहु मिटिया हर गुण गाए मन माही सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दलासा जिन घर आए सोभा सेती पूर्ण होई आसा पूरा गुर पूरी मत जाकी।

सिमर माधो होहे पतत पनीत। काल ब्याल ज्यो पर्यो डोले मुख पसारे मीत। आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ राखो।

अनपूरन सब मही अवर सगल मिथ्याए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जोग हारियो।

रहाउ अटल पयो त्रू जा कह सिमरन हर निरपै पद पाया दुख हरता एह विद को स्वामी तै काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निधि

जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे रहाओ। कौन कर्म विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करे, कौन नाम गुर जा कै सिमरै।

कलंक निज मत साधन को पाख्यो तोहे पुकार सोठ महला नवा यह जग मीत ना देखियो कोई।

पूत संबंधी सगरे धन सिंह लागे जब ही निर्धन देखियो नर कौ संग साड सब भागे कहो कहां या मन बौरे को इनस्यों ने हो लगायो दीनानाथ सकल पै भंजन जसता को बिसरायो स्वान पूछ ज्यो भयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो नानक लाज।

अर्क सोग ते रह नियारो नाहे मान अपमाना आसा मनसा सगल त्याग्य जग ते रह नरासा काम क्रोध जेह परसै नाहन तेहे घट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जेह नर को कीनी तेहे एहे जुगत पछानी नानक।

बहुत हित जासियो सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर भागी। एह बिद को व्यवहार बनियो है जां स्यो नेहो लगायो। अंत बार नानक बिन हर जी को काम ना आयो। सोठ माला पहला घर पहला अष्टपदिया चौतुकी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुगदा ना पड़ो हर बिन होर ना।

बिंद सुख वास्ती नाम बसै सुख पाई जिहवा नेतर सोतर सच राती जल बूजी तुझ है बुझाई आस निरास रह बैरागी।

का क्या कथिय भाई, चालो सदार जाई। गुरदाता मेले ता मत होवे, निगुरे मत ना काई। ज्यों चलाए त्यों चाल है भाई, होर क्या को करे चतराई। एक भरम भलाए एक भगती राते, तेरा खेल अपारा।

प्यारे अमृत रसन हरे, बूढ़े पारे पै बिना प्यारे, तारे नदर करे पी तू है सलाहना प्यारे, पी तेरी सलाह बिन बोहित पै डुबिया प्यारी।

राम नाम मन वसिया नामे ही मुक्त पाई रिद सिद्ध सब भगता चरणी लागी गुर कै सहज सुपाई मन मुखा नु प्रतीत ना आवी अंतर लोभ सुआउ गुरमुख हिरदय शब्द ना भेदियो हर नाम न लागा पाओ कूड़ कपट पाज लह जासी मन मुख फीका हलाओ भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी

प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वसिया सब काज सुवारण हारा उन्ना की रीस करे सो विगुच्चै जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख भौंक मोए बिललाई आवह जावह ठौर ना पावह दुख मह दुख समाई गुरमुख होवै सो अमृत पीवै सहजे साच समाई बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़ै जे अनेक कर्म करै अधिकाई वेद पढ़ै तै वाद बखाणै बिन हार पत गुआई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी भज सूट है गुर सरनाई जिन

कर पाती रहे हो, नगल फिरे हो बन माही, तट तीरथ सब धरती भ्रम्यो, दुबदा छुटकै नाही, मन कामना तीरथ जाए बस्यो, सिर करवत तराई, मन की मैल ना उतरै एह बिद, जे लख जतन कराई, कनक कामनी है वर गैवर, बहु विद दान दतारा, अन बस्तर भूम बहु अर्पे, नह मिलिय हर द्वारा, पूजा अर्चा बंदन डंडो होता, खट कर्मा रत रहता, हाँ हाँ करत बंदन मह परया, नह मिलिय एह जुगता, जोग सिद्ध आसन चौरासी ही, ए पी कर कर रहया, वड़ी आर जा फिर जन्मै, हर सिंह संग ना गहया, राज लीला राजन की रचना, करया हुक्म अखारा, सेज सोहनी चंदन चोआ, नरक कोर

नानक तिस भयो परापत जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दीन

प्रठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल ना कत मन जीबे सच्चा सोए ससुर पिए पैवस्ती सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे फिर मिले खुशी रावे फिर संग सदा शिंगारी नाओ मन कदे ना मैल पतंग देवर जेठ मुए दुख ससु का डर किस जे फिर भावे नानका कर्म मणि सब सच महला चौथा सोरठ ताम सुहावनी जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावे अपना गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लभई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मन अनत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गोल गोले पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सिरजन हारिया तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सुआरिया दाता करता आप आप भोगण हारिया सब तेरा शब्द वरतै उपावन हारिया हौ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया सलोक महला तीजा हौ मैं जल ते जल मोए भ्रम आए दूजै पाए पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए एहो जग जलता नदरी आया गुर कै शब्द सुपाए शब्द रते से सीतल पए नानक सच कमाए महला तीजा सफल्यो सतगुर।

पुरख सुजान कुल उधारी अपना सूजन होवे परवान गुरमुख मोए जीवन दे परवान है मनमुख जन्म मराही नानक मोए ना आखिए जे गुर कै शब्द समाहे पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव हर नाम ते आई है सत संगत साधु लग हर

फुरमाइए कौ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाइए। सलोक महला तीजा पूर्व लिखिया कमावना जे करता है आप लिखियास मोह ठगौली पाइन विसरिया गुणतास मत जानो जग जीवंदा दूजे पाए मुहयास जिन्नी गुरमुख नाम ना चेतेओ से बहन ना मिलनी पास दुख लागा बहु अत घना पुत कलत ना साथ कोई जास लोकां विच मोह काला हुआ अंदर उबे सास मन मुखां नू को ना वे सही चुक गया वे सास नानक गुरमुखां नू सुख अगला जिन्ना अंतर नाम निवास। महला तीजा से सहन से सजना जे गुरमुख मिलह सुपाय सतगुर का पाणा अन दिन करहें से सच रहे समाय दूजे पाए लगे सजन ना आखिए है जे अभमान करहें वेकार मन मुख आप स्वार्थी कार्ज ना सकह सवार नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार पौड़ी तुदे आपे जगत अपाए कै आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया विच हों मैं लेखा मंगीए फिर आवे जाया जिन्ना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलिहारी गुर अपने सदा सदा कुमाया। सलोक महला तीजा।

जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया, तंदा करतिया निफल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया, नानक नाम तिना को मिलया, जिनको तुर लिख पाया। महला तीजा, घर ही मह अमृत भरपूर है, मन मुखा साधना पाया, ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने, भ्रम दा परम भुलाया। अमृत ताज बिक संग्रह करत आप खवाया, गुरमुख विरले सोजी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया, तन मन सीतल होया।

ज्यों मजी ठह कपड़े रंगे पी पाहे, नानक रंग ना उतरे ब्या ना लगे के पौड़ी। हरे आप वरतै आप, हरे आप बुलाए दा, हरे आपे सिठ सवार सिर तंदै लाए दा। इक ना भगती लाए इक आप खुआए दा, इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाए दा। जन नानक नाम त्याए गुरमुख गुण गाईंदा। सलोक महला तीजा, सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना हऊ मैं विचों जाए, बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रह समाए। इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसै मन आए। नानक जो गुर सेव है अपना हों तिन बलिहारे जाऊं। महला तीजा, मनमुख मन अजित है दूजे लगे जाए। तिसनु सुख सुपने नहीं दुखे दुख व्याए। कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाध लगाए। एहो मन वस न आवे थके कर्म कमाए। भेख धारी भेख कर थके अखट तीरथ नहाए। मन की सार ना जाननी हम मैं परम पलाए। गुर प्रसादी भउ पया वडभाग वस्या मन आए। पै पय मन वस हुआ हम मैं शब्द जलाए। सच रत्ते से निर्मले ज्योति ज्योत मलाए। सतगुर मिले नाउ पाया नानक सुख समाए। पौड़ी।

पकड़ चलाया काल ता खरा द्रामना ओ वेला हाथ ना आवे फिर पछतावना। श्लोक महला तीजा। सतगुर ते जो मोह फेरे से बदे दुख सहाय फिर मिलन ना पाए नी जमह तै मर जाय सहसा रूप ना छोड़ई दुख ही मह दुख पाए नानक नदरी बख्श ले शब्दे मेल मलाहे। महला तीजा। जो सतगुर ते मोह फिरे तिन्ना ठौर ना ठाउ ज्यों छुट्टड़ घर घर फिरे दुह चारन बदनाउ नानक गुरमुख बख्शी है जे सतगुर मेल मलाओ। पौड़ी। जो सेवह सत मरार से पवजल तर गया जो बोले हर हर नाउ तिन जम छड गया ते दरगाह पैदे जाहे जिन्ना हर जप लया हर सेवह से पुरख जिन्ना हर तुदमया गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भ्रम पहु गया। श्लोक महला तीजा। थाले विच तै वस्तु पईओ हर भोजन अमृत सार जित खादै मन तृप्ति है पाइए मोख द्वार एहो भोजन अलभ है संतो लभै गुर विचार ए मदावनी क्यों विचों कढ़ी है सदा रखिए उर धार ए मदावनी सतगुरु पाई गुरसिखा लद्दी पाल नानक जिस बुझाए सो बुझसी हर पाया गुरमुख काल। महला तीजा। जो तुर मेले से मिल रहे

सत हुए, मनमुख परमै सहसा हुए, अंतर चिंता नींद ना सोए, ज्ञानी जाग है सब है सुपाई, नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी, से हर नाम त्याव है जो हर रत्या, हर एक त्याव है एक, इको हर सत्या, हर इको वरत एक, इको उत्पत्या, जो हर नाम त्याव है तिन दर सट कत्या, गुरमती देव आप गुरमुख हर जपया, सलोक महला तीजा, अंतर ज्ञान ना आयु, जित किस सोजी पाई, ऋण डिठा क्या सलाही है, अंधा अंध कमाय, नानक शब्द पछाणी है, नाम वसै मन आय, महला तीजा, इक्का बाणी इक गुर, इको शब्द विचार, सच्चा सौदा हट सच, रतनी परे भंडार, गुर किरपा ते पाईन, जे देवै देवन हार, सच्चा सौदा लाभ सदा, खटिया नाम अपार, विख विच अमृत प्रगटिया, कर्म पिया मनहार, नानक सच सलाही है, धन सवारन हार पौड़ी, जिन्ना अंदर कूड़ वरतै सच ना पावई, जे को बोले सच कूड़ा जल जावई, कूड़े आरी रज कूड़ जो विष्टा काग खावे, जिस हर होए कृपाल सो नाम त्यावई, हर गुरमुख नाम अराध कूड़ पाप लह जावई, सलोक महला तीजा, सेखा चौ चक्या चौ आया, एहो मन इकत घर आन, एहड़ तेहड़ छड तू गुर का शब्द पछाण, सतगुरे अगै टै पौ सब।

पावड़ी हर सज्जन मेल प्यारी मिल पंथ दसाई जो हर दसे मित किस हों बल जाई गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम त्याई हर सेवी प्यारा नित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुर तिस जिन सोजी पाई सलोक महला तीजा पंडित मैल ना चुकई जे वेद पढ़े जुग चार त्रै गुण माया मूल है विच हों मैं नाम विसार पंडित भूले दूजे लागे माया कै वापार अंतर तृष्णा भुख है मूर्ख भुखिया मोए द्वार सतगुर सेवै सुख पाया सच्चा शब्द विचार अंदरों तृष्णा भुख गई सच्चा नाए प्यार नानक नाम रते सहजे रजे

आई। अंतर अज्ञान अंधेर है, शुद्ध ना काई पाए। मन हठ सहज ना बीजेओ, भुखा के अगे खाए। नाम निदान वसारिया, दूजे लगा जाए। नानक गुरमुख मिले वडियाईया, जे आपे मेल मिलाए। पौड़ी हर रसना हर जस गावे, हरी सुहावनी। जो मन तन मुख हर बोले, सा हर पावनी। जो गुरमुख चखे साध, सा त्रिपतावनी। गुण गावे प्यारे नित, गुण गाए गुणी समझावनी। जिस होवे आप दयाल, सा सत गुरु गुरु बुलावनी। श्लोक महला तीजा, हस्ती सिर ज्यों अंकस है, अहरण ज्यों सिर दे। मन तन आगे राख कै, ऊभी सेव करे। यों गुरमुख आप निवारी है, सब राज सृष्ट काली। नानक गुरमुख बुझी है, जा आपे नदर करी। महला तीजा, जिन गुरमुख नाम ते आया, आए ते परवान। नानक कुल उदार है अपना, दरगाह पावह मान। पौड़ी गुरमुख सखियां सिख गुरु मेलाइया, एक सेवक गुरपास एक गुर कार लाइया। जिन्ना गुर प्यारा मन चित, तिन्ना भाओ गुरु देवाइया। गुर सिखा एको प्यार, गुर मित्ता पुत्ता पाइया। गुर सतगुर

चेतनी अज्ञानी अंधले अवरे कर्म कमाहे। जमदर बदे मारी है फिर विस्ता माहे पचाहे। महला तीजा नानक सतगुर सेव है अपना से जन सच्चे परवान। हर कह नाए समाए रहे चूका आवन जान। पौड़ी धन संपै माया संची है अंते दुखदाई। घर मंदिर महल सवारी है किस साथ ना जाई। हर रंगी तुरे नित पाली है कितै काम ना आई। जन लाभ हो चित हर नाम सिउ अंत होए सखाई। जन नानक नाम त्याया गुरमुख सुख पाई। श्लोक महला तीजा बिन कर्म नाओ ना पाई है पूरे कर्म पाया जाए। नानक नदर करे जे अपनी तां गुरमत मेल मलाए। महला पहला एक दज है एक दबी है एक ना कुत्ते खाए। एक पानी विच उसती है एक भी फिर हसन पाए। नानक एव ना जापई किथे जाए समाहे। पौड़ी तिनका खादा पैंदा माया सब पवित है। जो नाम हर राती तिनके घर मंदिर महल सराई सब पवित है। जिनी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए बरसाती। तिनके तुरे जीन खुरगीर सब पवित है। जिनी गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाती। तिनके कर्म धर्म कार्य सब पवित है। जो बोले है हर हर राम नाम हर साती। जिनके पोते पुन है से गुरमुख सिख गुरु पह जाती। श्लोक महला तीजा नानक नाम कुथिया हलत पलत सब जाय। जप तप संयम सब हिर लया।

अग्गै पिच्छै सुख नहीं, मर जम्मै वारु वार, तृष्णा कदे ना बुझई, दुबदा होए खुआर, मुह काले तिना निंदका, तित सच्चै दरबार, नानक नाम विहूनिया, ना उरवार ना पार पौड़ी, जो हर नाम ते आईंदे, से हर हर नाम रते मन माही, जिन्ना मन चेते एक अरादया, तिना एक सबेन दूजा को नाही, से पुरख हर सेम दे, जिन तुर मस्तक लेख लखाही, हर के गुण नित गाम दे, हर गुण गाए गुणी समझाही, वड्याई वड्डी गुरमखा, गुरपूरै हर नाम समाही, सलोक महला तीजा, सतगुर की सेवा गाखड़ी, सिर तीजै आप गवाए, शब्द मरह फिर ना मरह, ता सेवा पवै सब थाए, पारस परसे पारस हुए, सच रह लिवलाए, जिस पूर्व होए लिखिया, किस सतगुर मिले प्रभ आए, नानक गणतै सेवक ना मिले, जिस बख्शे सो पवै थाए, महला तीजा, महल कुमहल ना जाननी, मूर्ख अपने सुहाए, शब्द

नानक गुरमुखार नाम मन वसै एहा सिद्ध एहा करमात पौड़ी हम ढाडी हर प्रभ खसम के नित गावह हर गुण क्षमता हर कीर्तन करह हर जस सुनह तिस कवला कंता हर दाता सब जगत पिखारिया मंगत जन जनता हर देव हो दान दयाल हुए विच पाथर।

जिस गुरमुख नाम आधार महला तीजा बिन मन मारे कोहे ना सिजे वेखो को लिवलाय भेख धारी तीरथ भव थके ना इहो मन मारे आ जाय गुरमुख इहो मन जीवत मरे सच रह लिवलाय नानक इस मन की मल इउं उतरे हमें शब्द जलाए पौड़ी हर हर संत मिलो मेरे भाई हर नाम बिरड़ावहो एक किनका हर हर शिंगार बनावहो हर जन हर कापड़ पहरो खिमका ऐसा शिंगार मेरे प्रभ पावे हर लागे प्यारा प्रेम का हर हर नाम बोलो दिन राती सब किल बिख काटे एक पल का हर हर दयाल हुए जिस ऊपर सो गुरमुख हर जप जिनका सलोक महला तीजा जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ स्याह खनली धोती उजली ना होवे जे सौ धोवन पाह गुर प्रसादी जीवत मरे उल्टी होवे।

काली कांडी एक उत्तम पदवी इस जोग माहे गुरमुख हर कीरत फल पाई है जिनको हर लिख पाहे नानक गुर प्रसादी अन दिन भगत हर उच्चर है हर भगती माहे समाहे पौड़ी हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर भली बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमती हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खाद्या सब रोग गवाते दुखा कान जिन्ना सास ग्रास ना विसरै से हर जन पूरे सही जान जो गुरमुख हर आराध दे तिन चूकी जम की जगत कान सलोक महला तीजा रे जन उथारै तप्यो सुत्या गई विहाय सतगुर का शब्द सुनना जाग्यो अंतर ना उपजो चाओ शरीर जलो गुण बाहरा जो गुर कार ना कमाई जगत जलंदा डिठ मैं हम मैं दूजे पाए नानक गुर सरनाई उपरे सच मन शब्द त्याए महला तीजा शब्द रते हम मैं गई सुभावंती नार फिर कह पाणे सदा चले।

जन नानक सद बलिहार बल बल जावना। सलोक महला चौथा। अंतर अज्ञान पई मत मदम, सतगुर की परतीत नाही। अंदर कपट सब कपटो कर जाने, कपटे खपह खपाही। सतगुर का पाणा चेतना आवे, अपने सुहाए फिराही। कृपा करे जे अपनी, ता नानक शब्द समाही। महला चौथा। मनमुख माया मोह व्यापे, दूजै भाई मनुआ फिर नाही। अन दिन जलत रह दिन राती।

लिया नाम उपजै किसना भुख सब जाय नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए महला चौथा सतगुर पुरख जे मारिया ब्रह्म भ्रमिया कर छोड़ गया उस पिछे वजै पकड़ी मुंह काला आ गै भया उस अरल बरल मुंह निकले नित झगू सुतदा मोआ क्या होए किसे ही दह कीते जा तुर किरत उस दा एहो जेहा पया जिथे ओह जाए तिथे ओह झूठा कूड़ बोले किसे ना पावे वेखो भाई वड्याई हर संतो स्वामी अपने की जैसा कोई करे तैसा कोई पावे।

तेन निज घर वास है, जुग जुग सुबा हुई पौड़ी। तू करण कारण समरथ है करती, मैं तुझ बिन अवर ना कोई। तुदे आपे सिष्ट सिद्धिया, आपे फुन गोई। सब इको शब्द वर्तदा, जो करे सो होई। वडियाई गुरमुख दे प्रभ, हर पावे सोई। गुरमुख नानक आराध्या, सब आखो धन धन धन गुर सोई। शुद्ध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भूत पूज

मेरा चौ दिस पसरियो है जम जेवरा रहाउ कबत पड़े पड़ कबता मुए कपड़ किदा रह जाई जटा तार तार जोगी मुए तेरी गत इन्ह ना पाई दर्ब संच संच राजे मुए गडले कंचन भारी बेल पड़े पड़ पंडित मुए।

ना जाई हमरा भरम गया पहु भागा जब राम नाम चित लागा रहाऊ बाजीगर डंक बजाई।

तुम राम न कर सपतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाउ। तेरे गलह तौक पग बेरी, तुम घर घर रमैया।

जित लाई तित लागी चेरी तै समत कहां ते पाई जाते भ्रम की लीक मटाई सो रस कबीर है जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया जे बाज ना जिया जाई जो मिले ता काल अगाई सद

निज निरखत गत व्यवहार आ रहा कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैन हो जगत निहारिया पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया

सो पंच सैल सुख माने, कबीर सो धन पाया, हर भेदत आप मिटाया। क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिलो सोई। हर का नाम ना जप सगवारा, क्या सोच है बारंबारा, रहाओ अंधियारे दीपक चहिए, एक बस्त अगोचर लहिए, बस्त अगोचर पाई, घट दीपक रहे आसमाई। कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया, मन माने लोग ना पतीजै, ना पतीजै तो क्या कीजै, हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बलो वस पानी, काया मांजस कौन गुना, जो घट पीतर है मलना, रहाओ लौकी अठ सठ तीरथ नाही,

मन पवन सुख बनिया, किस जोग प्राप्त गनिया, रहाउ गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंदलिए दरवाजे, बाजियले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उभा करिया।

तहे अनहद शब्द बजंता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी रतन कमल कोठरी चमकार भी जुल तही नेरे नाही दूर निज आत्मै रहया भरपूर जह अनहत सूर उजियारा तह जी।

हो, ऐसो बेटी बन ना साको, सब अंतर सब ठाई हो। गूंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कहन ना जाई हो।

मिल पारस कंचन होया मुख मन सारतन परोया निज पाओ पया ब्रह्म पागा गुर पूछे मन पति आगा।

नाही। अनल अगम जैसे लहर मैं उदत, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए हुए ना तैसा रहा। नरपत एक संघासन सोया, सुपने पया पेखारी। अच्छत राज बिसरप दुख पाया, सो गत पई हमारी। राज पोय अंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जनाया। अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब कट भोग वै सोई। कह रवदास हाथ पै नीरे, सहजे हुए सो होई। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बाधे। अपने शूटन को जतन करो,

करे जा कौ नदर करे तुद बाज प्यारे केवरहा सावड़े आई दे जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोई जिस आगे प्यारे जाए कहां रहाओ सेवी साहिब अपना।

राखै जां सोए। जह देखां तह रहया समाय, तुद बिन दूजी नाहीं जाय। जे को करे कीतै क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए। हुण उठ चलो।

काती कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जिया काए, जोगी जुगत ना जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद, सो जोगी जो जुगत पछाणे, गुर प्रसादी एको जाने, काजी सो जो उल्टी करे, गुर प्रसादी जीवत मरे, सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, आप तरे सगले कुल तारे, दान संबंध सोई दिल तोवे, मुसलमान सोई मल खोवे, पढ़िया बूझे सो परवान, जिस सिर दरगाह का निशान, तनासरी महला पहला कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, काल नाही जोग नाही, नाही सत का टप, था नष्ट जग प्रित होए, डूबता इव जग, कल मह राम नाम सार, अखी तामीत है नाक पकड़ है, ठगण को संसार रहाव, आंत सेती नाक पकड़ है, सूझते तिन लो, मगर पाचे कछ ना सूझे, एहो पदम अलो, खतरिया का धर्म छोड़िया, मलेस भाख्या गही, श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई, धर्म की गत रही, अष्ट साज साज प्राण सोदह, करह वेद अभ्यास, बिन नाम हर के मुक्त नाही, कह नानक दास, तनासरी महला पहला आरती, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आलो पवन चवरू करे, सगल बनराए फूलंत ज्योति, ऐसी आरती होए, भाव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ, सहस तव नैन, नन नैन है तो एको, सहस मूरत नना एक तो ही, सहस पद विमल नन एक, पद गंध बिन सहस तव गंध, इव चलत मो

आए पूरे गुर की साची बाणी सुख माने अंतर सहज समाणी एक अचरज जन देखो पाई दुबदा मार हर मन वसाई नाम अमोलक ना पाया जाए गुर प्रसाद वसै मन आए सब मह वसै प्रभ एको सोए गुरमति घट प्रगट होए सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया नानक नाम मिले मन मानिया तनासरी महला तीजा हर नाम तन निर्मल अत अपारा गुर कै शब्द भरे भंडारा नाम तन बिन होर सब बिख जान माया मोहे जले अभमान गुरमुख हर रस चाखै कोई किस सदा आनंद हुए दिन रात।

मैं मलत होए साची भगत सदा सुख होए। जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग किस सदा हरख ना।

बिन सतगुरु सब मुई बिल लाए, अन दिन दा जह शांत ना पाए। सतगुर मिले सब त्रिशन बुझाए, नानक नाम शांत सुख पाए। तनासरी महला तीजा, सदा धन अंतर नाम संभाले, जी जंत जिन्हें प्रतपाले।

जन निर्मल होए, अंतर नाम वसै पात उत्तम होए। रहाओ गुरमुख उबरे हर सरनाई, राम नाम राते भगत दिरड़ाई। भगत करे जन वडियाई पाई, काच रते सुख सहज समाई।

क्या पावा तना श्री महला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए। यो मन मरे दारू जाने कोई, मन शब्द मरे।

इस मन की सो जी पावे। मन मैं मत मैगल मिकदारा, गुरु अंकस मार जवानन हारा। मन असाध साधे जन कोई, अचार चरै ता निर्मल होई। गुरमुख एहो मन

नानक गुरमुख नाम पछाणे तनासरी महला तीजा काक्या तन संचह मूर्ख गवार मनमुख भूले अंध गवार बिख्या कै तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा तन गुरमति पाए काक्या तन हुनिया वै जाए रहाव मनमुख भूले सब मरह गवार पवजल डूबे ना उरवार ना पार सतगुर भेटे पूरे भाग साच रखे अहनस बैराग चहो जोग मह अमृत।

लाए गुरमत साची साचा विचार आपे बख्शे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूरख मूरख मन माहे हम मैं विच सबकार कमाहे गुर प्रसादी हम मैं जाए आपे बख्शे लए मलाए विख्या का तन बहुत अभमान अहंकार डूबे न पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत सालाही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर ना कोए जिस सच लाए सोई लागे नानक नाम सदा सुख आगे रागत नासरी महला तीजा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम भीखक पेखारी तेरे तू निज पत है दाता ओ दयाल नाम देहो मंगत जन को सदा रहो रंग राता हम बलिहार है।

किरपन को अब किस कृपा की जय हो दयाल दर्शन देहु अपना ऐसी बख्श करी जय पणत नानक परम पट खुले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर सिंह मन मानिया तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेव है संत भगत।

हर उड़तारी, हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर हों मैं मारी, हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी, जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पैज सुवारी, तनासरी महला चौथा, हर के संत जना हर जप्यो, तिनका दुख परम पौ भागी, अपनी सेवा आप कराई, गुरमत अंतर जागी, हर कै नाम रत्ता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन पाई, गुरमत हर

नित तीरे तुम वड पुरख वडागी तुम्हारे गत में तो कह ना सकह प्रभु हम क्यों कर मिलह अपागी हर प्रभु स्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी नानक दासन दास करो प्रभु हम हर कथा कथागी तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बाणी जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सद कुरबानी हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमख पल सब के लिख पाप लह जानी रहा ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी तिन की तूर मंग है प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी हर हर सफले हो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपे हो से त्रिपतानी हर हर अमृत पी त्रिपता से सब लाथी भूख पुखानी जिनके वड्डे भाग वाडी विचे तिन हर जपे हो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी तनासरी महल।

हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपया से हर होए हर मिलया केल के लाली हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पए हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिल लाती हर हर कृपा करहो प्रभ अपनी मुख देव हो हर निमखाती हर बिन रह ना सको एक राती ज्यो बिन अमल अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहा तुम हर सरवर आते अगाह हम लह ना सक है अंत माती तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जानो आपन गाती हर के संत जना हर जपेओ गुर रंग चलो लहराती हर हर भगत बनी अत सुबा हर जपेओ उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती नानक जन तुमरी सरनाई हर राखो लाज पगाती तनासरी महला चौथा कर युग का धर्म कहो तुम पाई के विछूट है हम छुटका की हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपेहो तरह तरा की हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी रहा हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर बचना की लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साध जना की दिनियर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चरयो चंद चंदा की तुम वड पुरख वड अगम अगोचर तुम आपे आप अपाकी जन नानक कहो प्रभ कृपा की जय कर दासन दास दसा की तनासरी महला चौथा कर पंजवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद उरतार बीचार मरार रमो रम मनमोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपुरे प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोष हर संग हरि सत संग पहे हर कंचन चंदन कीने रहाओ नव से खत बोल है मुख आगर मेरा हर प्रभ इव नाप कीने जन नानक हर हृदय सद त्यावो इं हर प्रभ मेरा पीने तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम त्याई हर दरगह पावह फिर जन्म नायावह हर हर हर जोत समाई जप मन नाम हरी हो हे सर्व सुखी।

हर कथा जिन जनहु जानी रहाओ आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभ चोज बडानी जन नानक आप मलाए सोई हर मिलसी अवर सब त्याग ओहा हर पानी तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वास है काम तीना सो ऐसा हर त्याय मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उज्जल होई है नित त्याय हर पुरख निरंजना रहाओ जह हर सिमरन पया तह अपाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक को गुर एह मत दीनी जप हर पवजल तरना।

प्यारी सब तुझ त्यावह मेरे साह ज्यों भावै त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवा घर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद भव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचल निरंकारी कोट पराध मिटे खिन भीतर।

लकी तेरी कुदरत कौन बिचारी जल थल महियल रविया सरब ठाई अगम रूप गिरधारी कीर्त करह सगल जन तेरी तू अबनासी पुरख मरारी ज्यों पावे त्यों राखो स्वामी जन नानक सरन द्वारी तनासरी महला पंजवा दिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यों हेत बढ़ायो

मन गायो भयो परगास सदा सुख मन मह सतगुर पूरा पायो रहाओ गुण निदान रिद भीतर वसिया ता दुख भरम भउ भागा भई प्राप्त वस्त अगु।

सुख सुबा बाजे अनहत बानी कहो नानक निश्चल घर बांधियो गुर कियो बंधानी तनासरी महला पंजवा वड्डे वड्डे राजने अर भूमन ताकि त्रिशन ना बूजी लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी बिख्या मह किन्ही त्रिपत ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै बिन हर कहां।

साकत की पूजा ऐसी दृढ़ी विपरीत माया मोह भूलो अवरहित हर चंदौरी बन हर पातरे यह तुहारो बीत रहाओ चंदन लेप होत देखो सुख गर्दभ पसम संगीत अमृत संग ना।

केले वेख दुख भागे गुरु ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुख ते निकसेओ नानक एक परीत तनासरी महला पंजवां पानी पक्का पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समारे।

सदा सदा तुध त्याई रहाओ। तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे, बिन सजाए परमाई, अंड रूप रवे ओ सब मदे।

आनंद राज पाई मुख तेन मुख बुलाई जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभ कै मन पाई नाम जपत कृष्णा सब गुजी है नानक त्रिपति अगाई तनासरी महला पंजवा जिन कीने वस अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा जग इशनान ताप थान खंडे क्या एहो जंत विचारा प्रभ की ओट गही तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गा।

ऐसी ठगौरी पाए पुलावे मन सब कह लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन घर घर मेले ओ दुआ किस ही वाद घाट किस ही पह सगले लर लर मुआ हम बलिहारी सतगुर अपनी जिन ओह चलत दिखाया गूजी पाहे जले संसारा भगत ना व्यापै माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक धन पाया अपने घर लै आया खाते तनासरी महला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपालो हो हम बारक तुमरे तारे।

समझावहु हमे अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावहु तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सोहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले तना।

निर्मोल कहार जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेटे नानक सुख जन रहन तनासरी महल।

हार तनासरी महला पंजवा अबहर राखन हार चितारिया पतत पनीत किए खिन पीतर सगला रोग बदारिया रहाओ गोष्ट पई साध कह संगम।

टेक मन विश्वास प्रभ धारिया चरण रीन बांछ नित नानक पुनः पुनः बलिहारिया तनासरी महला पंजवा मेरा लागो राम सिउ हेत सतगुर मेरा सदा सहाय जिन दुख का काटिया केत रहाउ हाथ दे राखियो अपना कर बिरता सगल मिटाई निंदक के मुख काले कीने जन का आप सहाई।

त्रापस नाही तृष्णा भूख मन बासना रत बिखै ब्याद पंच दूत संग महा असाद जी जहान प्राण धन तेरा नानक जान सदा हर नेरा तनास।

काल आन संयम किछ ना सूझै ए जतन काट कल काल रहाओ आद अंत दयाल पूरन।

फिरत फिरत भेटे चल साधु पूरा गुर समझाया आन सगल बिद कामना आवे हर हर नाम ते आया।

रहाउ। स्वर्ग मृत पयाल भूमंडल सगल व्यापे माए, जी उदारन सब कुल तारन हर हर नाम त्याय। नानक नाम निरंजन गाइए पाइए सर्ब निधाना, कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना। तनासरी महला पंजवां, कर दूजा चौपदे

होवह एकत्र तह हर जस गावह नाद कवित साध सभा मह अनंद विश्राम हुन संग सो पाई जिस मस्तक करा।

जास मिल साध संगत होवत परगास जीयन का दाता पूर्ण सब ठाए कोट क्लेश मिटह।

करहे करावह स्वामी सा मसलत प्रवान रहाव पत परमेश्वर गत नारायण धन गोपाल गुण साखी चरण सरण नानक दास हर हर संती ए बिद जाति तनासरी महला पंजवा सगल मनोरथ प्रभ ते पाए कंठ लाए गुर राखे संसार सागर मह जलन ना दीने किन्ह ना दुत्तर भाखे।

भगतन काय अंकुर राखियो। कनासरी महला पंजवा जह जह पेखो तह हजूर दूर कतहो ना जाई। रव रहया सरबतर मैं मन सदा त्याई। ईत ऊत नहीं बिछड़ै सो संगी गनिया बिन सजाए जो निमख मह सो अल्प सुख भनिया। रहाउ प्रित पालै अपयाउ दे कछ ऊन न होई सास सास संभालता मेरा प्रभ सोई। अशल अशेद अपार प्रभ ऊचा जा का रूप जप जप करहे आनंद जन अचरज अनूप। सामत देहो दयाल प्रभ जित तुम्हें अरादा नानक मंगे दान प्रभ रीन पग सादा।

तिने ओट गही संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अभमान एक निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारी काल कलेश लोभ मोह महा भव जल तारी रहाओ सास सास निमख निमख दिन सरहन चितारी साध संग जपन संग मन निदान तारी चरण कमल नमचकार गुण गोविंद बिचारी साध जना की रेन नानक मंगल सुख सधारे तनासरी महला पंजवा घर अठवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरौ सिमर सिमर सुख पावो सास सास समाले एह लोक परलोक संग सहाय जत कत मोहे रखवाले।

टेक मात दूध जैसे बाले सागर में बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाली तनासरी महला पंजवा पये कृपाल दयाल गोविंदा अमृत हृदय सिंचाई नवनित रिद सिद्ध हर लाग रही जन पाई संतन को अंध सगल ही जाई ग्रह बाहर ठाकुर भगतन का।

कर आई, संत अनुग्रह पए मन निर्मल, नानक हर गुण गाय। तनासरी महला पंजवा, जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिने सगल वस ताकै, जाका सतगुर पूरा।

मन भरमा तब लग मुक्त ना कोई। कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवा नाम गुर दियो है अपने जा कै मस्तक करमा। नाम दृढ़ावे नाम जपावे ता का युग मह धर्मा जन

जिस जन कै पालै सोई पूरा साहा नाम व्यवहारा नानक अधारा नाम प्राप्त लाहा तनासरी महला पंजवा नेत्र पनीत भय दर्श पेखे माथै परों रवाल रस रस

कल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल, हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधियो पाल। तनासरी महला पंजवा, अपनी उकत खिलावै भोजन, अपनी उकत खिलावै सर्ब सुख भोग रस देवै।

नानके आनंद पये दुख भागे सदा सदा हर जाप तनासरी महला पंजवा चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख।

सर्ब मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिस कै कर्म लिखिया तुर करतै नानक जन के पूर्ण काम। धनासरी महला पंजवां जन की कीनी पार ब्रह्म सार।

स्वामी कोए ना पहुंचन हार जो जो करे अवग्या जन की होए गया तत छार करन हार रखवाला हुआ जाकांत न पारा वार नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक काडे मार तनासरी महला पंजवा कर नौवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर चरण सरन गोबिंद दुख भंजना दास अपने को नाम देव हो दृष्ट प्रभ तारु हो कृपा कर तारु हो पूजा गह कूप ते काड लेव हो रहाओ काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दुखा तन शाद पूरे प्रभ बिना आन ना राख नहारा नाम सिमराव हो सरन सूरे पतत उदारना जी जंत तारना वेद उचार नहीं अंत पायो गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वत्सल नानक गायो तनासरी महला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो नाम गोबिंद का सदा लीजै मिटह कमाणे पाप चिराणे साध संगत मिल मुआ जीजै रहाउ राज जोगन बिसरंत हर माया महा दुख एहो महात कह आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत लह सरल समरथ अकथ अगोचरा पतत उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नानक के स्वामी सर्वत पूर्ण ठाकुर मेरा तनासरी महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाउ बड़े भाग भेटे गुरदेवा कोट पराद मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रापे सोग अगन किस जन ना व्यापे सागर तरिया साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे

नानक उदरे प्रभ सरनाई तनासरी महला पंजवा त्रिपत भई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रहाओ अनक प्रकारी बस्तर ओढ़ाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया तनासरी महला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुंद सागर जिन खिन मह तारा रहाउ कोई हुआ क्रम रत कोई तीर्थ नाया दासी हर का नाम ते आया बंधन काटन हार स्वामी जन नानक सिमरै अंतर जामी।

बंद हर देवन हारा, चरण कमल स्यों लागो नेहो, नानक की बेनंती है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद तनासरी महला नौवा, काहे रे बन खोजन जाई, सर्बनवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई रहाओ। ओह पमद ज्यो बास बस्त है, मुकर माहे जैसे शाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतरे को जानो, एहो गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै ना भ्रम की काई। तनासरी महला नौवा, साधो एहो जग भरम भलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता भाई सुत बनता, तां कै रस लपटाना, जोगन धन प्रभता कै मद में, अहनस रह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख भंजन, तां स्यो मन ना लगाना, जन नानक कोटन मैं किन्हू, गुरमुख होए पछाना। तनासरी महला नौवा, तेह जोगी को जुगत ना जानो, लोभ मोह माया ममता फुन, जेहे घट माहे पछानो रहाओ। पर निंदा उस्तत नह जाके, कंचन लोह समानो, हरख सोगते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन दह दिस को तावत, अचल जाए ठहरानो, कहो नानक एह बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी महला नौवा, अब मैं कौन उपाउ करूं, जेह बिद मन को संसा चूकै, पहु निद पार परो रहाओ। जन्म पाए कछ पलो ना कीनो, ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच धरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो, पास ज्यो उदर भरो, कहो नानक प्रभ बिरत पछानो, तब हो पतत तरो। तनासरी महला पहला, कर दूजा अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुर सागर रतनी परपूरे, अमृत संत चुगह नहीं दूरे, हर रस चोग चुगह प्रभ पावे, सर्वर मह हंस प्राण पत पावे। क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल ना जाए रहाओ। रख रख चरण धरे विचारी, दुबदा छोड़ पए निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आवन जान रहे गुर राखे। सर्वर हंसा छोड़ ना जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए। सर्वर मह हंस हंस मह सागर, कथ कथा गुर बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी बैसे, नारना पुरख कहो को कैसे। त्रिभवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सच्चे सरनाई, आनंद मूल अनाथ अधारी, गुरमुख भगत सहज बीचारी, भगत वचल पै काटन हारे, हों मैं मार मिले भगत हारी। अनक जतन कर काल संताए, मरन लखाई मंडल मह आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवै, आप ना चीनस भ्रम भ्रम रोवै, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीर्ज धर्म तरनी तर टेक, जत सत संयम हृदय समाए। चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल ना लागे, गुर कै शब्द भरम पौ भागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप। तनासरी महला पहला, सहज मिलै मिलिया परवान, ना तिस मरण ना आवन जान, ठाकुर मह दास दास मह सोई, जह देखा तह अवर ना कोई।
गुरमुख भगत सहज घर पाई बिन गुर भेटे मर आई जाइए रहाउ सो गुर करो जे साच दरडावे कथ कथावे शब्द मलावे हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकुर साच प्यारा तन मह

तुद पावै त्यो राखर जाए, नानक सहज पाए गुण गाए। अलासरी महला पंजवां घर छेवां अष्टपदी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जो जो जूनी आयो तेह तेह उरजायो, मानस जन्म संजोग पाया ताकि है ओट साध, राखो दे कर हाथ कर कृपा मिलो हर राया, अनक जन्म ब्रह्म थित नहीं पाई, करो सेवा गुर लागो चरण, गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई, रहाओ अनक अपाव करो माया को बचित धरो, मेरी मेरी करत सद ही विहाव।

लावे पड़े रे सगल भेद नह चूकै मन भेद एक खिन ना धीरह मेरे घर के पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए हम बुद्ध मैल लाए घर को ठाकुर एक तिल ना माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन इशनान सगल अश्रम कीने मनुआ नह पतीने विवेकहीन देही धोए कोई पाइए रे पुरख बधाता पार ब्रह्म कै रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पढ़े कहीं ना लेखै जिस भेटी है सफल मूरत करै सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत्रों पेखै मन हठ जो कमावै तिल ना लेखै पावै बगल ज्यो ध्यान लावै माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभु की कथा सुनाई जिस भेटे गत होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राय काटै रे बंधन माई गुर कै शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरपै गोविंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल सफल भई सफल यात्रा आवन जान रहे मिले सादा रहाउ दूजा तनासरी महला पहला शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पुरब सदा दसाहरा हौ नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ तरनी तरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागै सच बिना गुरवाक निर्मल सदा चानन नित साच तीर्थ मजना साच ना लागै मैल क्या मल धोई है गुणहा हार परोए किस को रोई है विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे आप पारस परम ध्यानी साच साचे पावे आनंद अनदिन हरक साचा दुख

पूरा नावण गावे गावण हार शब्द सुहावण सलाहे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग भावे सहज नावे देनी ता संगम सत सते आराध एक अंकार साचा नित दे चढ़े सुआया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मलाया कहन कह सब को एक वडे आखी है हो मूर्ख नीच अजान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा पूछ करह आवह बेखला दे शब्द सच्चा गुर मेरा आखण तोट ना भगत पंडारी भरपुर रहे आसोई नानक साच कह बेनंती मन मांजै सच सोई तनासरी महला पहला जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो गुर ज्ञान अपारा।

ना वसारी अन दिन संहारी जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता यो मन तृप्त गुरमुख अमृत पीवा नदर करे ता सतगुर मेले अन दिन विवेक बुद्ध बिचरे अंदर साचा ने हो पूरे सतगुर सत संगत मिले बड़ भाग ता हर रस आवे जियो अन दिन रह निब लाए ता सहज समावे जियो सहज समावे ता हर मन भावे सदा अतीत बैरागी हलत पलत सोभा।

सत संगत मिले वड भाग ता हर रस आवे जीओ दूजे पाए दुख होए मनमुख जम जोहिया जीओ हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोहिया जीओ माया दुख मोहिया हों मैं रोहिया मेरी मेरी करत विहावे जो प्रभ दे तिस चेतै नाही अंत गया पछतावे बिन नावे को साथ ना चाले पुत्र कलत्र माया धोहिया दूजे पाए दुख होए मनमुख जम जोहिया जीओ कर किरपा ले हो मलाए महल हर पाया जीओ सदा रह कर जोड़ प्रभ मन पाया जीओ प्रभ मन भावे ता हुक्म समावे हुक्म मन सुख पाया आन दिन जपत रह दिन राती सहजी नाम ते आया नामो नाम मिली वड्याई नानक नाम मन भावे कर किरपा लिहो मलाए महल हर पावे जीओ नासरी महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर दीन दयाल जिस संग हर गावी है जीओ अमृत हर का नाम साध संग रावी है जीओ पाज संग साधु एक अरादु जन्म मरण दुख नासे तुर कर्म लिखिया साच सिखिया कट्टी जम की फासे पै परम नाठे छुट्टी गाठे जम पंथ मूल ना आवी है बिनवंत नानक।

दातार सर्व दुख पंजनो जीयो दुख हरत करता सुख स्वामी शरण साधु आया संसार सागर महा बिखड़ा पाल एक माहे तराया पूर रहया सर्व थाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो बिनवंत नानक सदा सिमरी सर्व दुख पै पंजनो आप लिए लड़ लाए कृपा तारिया जियो मोहे निर्गुण नीच अनाथ प्रभ अगम अपारिया जियो दयाल सदा कृपाल स्वामी नीच थापन हारिया जी जंत सब वस तेरे सगल तेरी सारिया आप करता आप भुगता आप सगल बीचारिया बिनवंत नानक गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया तेरा दर्श अपार नाम अमोले जियो नित जपह तेरे दास पुरख अतोले जियो संत रसन बूठा आप तूठा हर रसै से मातिया गुर चरण लागे महाभागे सदा अन दिन जागया सद सदा सिमरतभ्य स्वामी सास सास गुण बोलई बिनवंत नानक धूर साधु नाम प्रभु अमोलई राग तलासरी बाणी भगत कबीर जी की एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सनक सनंद महेश समाना सेख नाग तेरो मर्म ना जाना संत संगत राम हृदय बसाई रहाउ हनुमान सर गरुड़ सुमाना सुरपत नरपत नहीं गुण जाना चार वेद अर सिमरत पुराना कमला पत कबला नहीं जाना कह कबीर सो पर मैं नाही पग लग राम रह सरनाही दिन ते पहर पहर ते घड़िया आप कटै तन सीजै काल एहेरी फिरै बदक ज्यो कहो कवन बिद कीजै सो दिन आवन लागा मात पिता भाई सुत बनता कहो को है काका रहाऊ जब लग जोत काया मह बरतै आपा पशु ना बूझै लालच करै जीवन पद कारण लोचन कश

सरना जो जन भाव भगत कश जानै ता को अचरज काहू ज्यों जल जल मह पैस ना निकसै त्यों ढुर मिलो जलाहू हर के लोगा मैं तो मत का पूरा जो तन कांसी तजह कबीरा रमैये कहा निहोरा रहाऊ कहत कबीर सुनहोरे लोई।

पूछे तप कर बहुर ऐबू, क्या मांगू किस थिर नाही। राम नाम रख मन माही रहाउ, शोभा राज बिभै बढ़ियाई। अंत न काहू संग सहाय, पुत्र कलत्तर लक्ष्मी माया। इनते कहो कमने सुख पाया, कहत कबीर अवर नहीं कामा। हमरे मन धन राम को नामा, राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई। राम नाम सिमरन बिन बूढ़ ते अदकाई रहाउ। बनता सुत देह गृह संपत सुखदाई, इन मैं कछ नाही तेरू काल अब दे आई। अजा मल गज गन का पतत कर्म कीने, तेहू पुत्र पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन भ्रमे तऊ लाज न आई, राम नाम छाड अमृत काहे बिख खाई। ताज परम कर्म बिदन खेद राम नाम ले ही। गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेह। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गहरी करके नीम खुदाई, ऊपर मंडप छाई। मार कंडे ते को अधकाई, जिन त्रिण तार मूंड बलाई। हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ करत हो। बिन सजाए झूठी देही रहाओ, मेरी मेरी कैरो करते। दुर्योधन से पाई, बारह योजन शत्र चले था। देही गिरजन खाई, सर्ब सोइन की लंका होती। रावण से अधकाई, कहां पयो दर बांधे हाथी। खिन मैं पई पराई, दुर्बासा से उप

दास बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नामो, सत्तर दोहे परे अमृत सार, बिख को मार कढावो, पाछे बहुर न आमन पावो, अमृत बाणी घटते उचरो, आत्म को समझावो रहाओ, बज्र कुठार मोहे है शीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, ए संसार ते तब ही छूटो, जो माया नह लपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेह तज दर्शन पावो, इत कर भगत करह जो जन, तिन भव सगल चुकाइए, कहत नाम देव बाहर क्या परमो, एह संजम हर पाइए, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, जो करंक निस नाद बाल।

आऊ ज्यो धरनी को इंद्र बालहा कुसम बास जैसे भवरला ज्यो कोकिल को अंब बालहा त्यों मेरा मन रामैया चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला ज्यो तरनी को कंत बालहा त्यों मेरा मन रामैया पार्क को जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरा मन रामैया साधक सिद्ध सगल गुण चाहे बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पुंडरक वना तांचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नचंती नाचना पहल पुरसा बरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचे पिंडी महसागरा रहाऊ।

कर्मरी रहाव शंकर मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन मधे मिलियो सार्ग पान रे कर्म कर कलंक मफीत सरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बांधवा कर्म कारो अरुण पिंगलारी अनक पात कहरता त्रे पवन नाथरी तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पाररी कर्म कर कपाल मुठीट सरी अमृत ससी तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर समागर नदी के नाथं कर्म कार्य खार मुठीट सरी दादी ले लंका गाड़ उपाड़ी ले रावण बाण सालब साल आण तो खीले हरी कर्म कर कछोटी मुठीट सरी पूर्व लोक कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन ताचे मोहे जापी अले राम चे नाम बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन धूप दीप कृत साजे आरती वार ले जाओ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को रहाओ उत्तम दियरा निर्मल बाती तुही निरंजन कमला पाती राम।

खंड खोजते नव निध पाई ना कछ आइबो ना कछ जाइबो राम की दोहाई रहाउ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे पीपा प्रणवै परम तत् है सतगुरु हुए लखावे तन्ना गोपाल तेरा यारता जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज स्वारता रहाउ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया साधन नीका अनाज मंगो सत सीका।

जिहवा क्या गुण आख बखान है, तुम वड अगम वड पुरखा, जन नानक हर कृपा धारी, पाखान दुपत हर राखा, जैत श्री महला चौथा, हम बारिक कछु न जान है गत मेत, तेरे मूर्ख मुग्ध एना, हर कृपा धार।

गुर साधु मिल साधु कपट खला ना रहाउ गुर खिन खिन प्रीत लगावो मेरा ही अरे मेरे प्रीतम नाम पराना बिन नावै मर जाइए मेरे ठाकुर जो अमली अमल लुभाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर भाग पुराना तिन हम चरण सरे वह खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा धारी मेरा ठाकुर जन बिछरिया चिरी मलाना तन तन सतगुर जिन नाम दिरडाया जन नानक तिस कुरबाना जैत श्री महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लाघबा माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी गुरबचनी बिसहर काढ़वा मेरा मन राम नाम रस लाघबा हर किए पत्र पवित्र मिल साध गुर हर नाम हर रस चाखिबा रहाऊ तन तन वडभाग मिलियो गुर साधु मिल साधु लिव उन्मन लाघबा तृष्णा अगन बुझी शांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा तिनके भाग खीन तुर पाए जिन सतगुर दर्शना पाएबा ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाएबा हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेव है हम हर मीठ लगाएबा जन नानक रेन साध पग मांगे हर हुए दयाल दुआएबा जैत श्री महला चौथा जिन हर हृदय नाम ना बसेऊ तिन मात की जय हर

हर हर कृपाल कृपा प्रभ धारी गुरु ज्ञान दियो मन समझा रहाउ हर कीरत कल युग पादे उत्तम हर पाइय सतगुर महजा हम बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा दर्शन साध मिलियो वड भागी सब किल विख गए गवाजा सतगुर साह पाया वड दाना हर किए बहु गुण सांझा जिनको कृपा करी जग जीवन हर उरतार्यो मन महजा धर्म राय दर कागद फारी जन नानक लेखा समझा जय श्री महला चौथा सत संगत साध पाई वड भागी मन चल तो भयो अरूड़ा अनहत धुन वाजह नित वाजे हर अमृत धार।

साकत बंद भय है माया, बिख संच है लाएज कीड़ा, हर कै अर्थ खर्च नह साक है, जमकाल सह सिर पीड़ा, जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु, बहु श्रद्धा लाए मुख धूड़ा, हलत पलत हर शोभा पाव है, हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरिउ मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर सिमरोह अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटै हमारा, हर हर सतगुर पुर

हर हर हर हर भगत दृढ़ावहु हर हर नाम उमाहाराम हर हर नाम दयाल त्याहा हर कह रंग सदा गुण गाह हर हर हर जस घूमर पावहु

तोल अत पहारी, गुरमत जप उमाहा राम, सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा, किल विख महल पाप तुवाहा, दीन दयाल हो जन ऊपर, देहो नानक नाम उमाहा राम। जय श्री महला पंजवा घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कोई जाने कवन इहां जग मीत, जिस होए कृपाल सोई बिद बूजै, ताकी निर्मल रीत रहाउ, मात पिता बनता सुत बंदप, इष्ट मीत अर भाई

को कहतो सब बाहर बाहर, को कहतो सब महियो, वर्ण ना दिसै चिन्ह ना लखिए, सुहागन सांत बुझहियो, सर्ब निवासी घट घट वासी, लेप नहीं अलपहियो, नानक कहत सुनो रे लोगा, संत रसन को बसहियो, जय श्री महला पंजवां, तीरों सुन तीरों प्रभ को रहाओ, जी प्राण मन तन सब अर्पो, नीरो पेख प्रभ को नीरो, बेशमार बेअंत बड दाता, मने गिहीरो पेख प्रभ को, जो चाहो सोई सोई पावो, आसा मनसा पूरो जप प्रभ को, गुर प्रसाद नानक मन वसिया, दुख न कबहू चूरों बुझ प्रभ को, जय श्री महला पंजवा, लड़िंदड़ा साजन मेरा, कर कर मंगल गावो नीके, कट कट

तो सगल मोहे मोहियो तो शरण पर्यो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत भेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाई मोरो हर चरणी चित लाग जय श्री महला पंजवां मन मह सतगुर ध्यान धरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहा काल जाल अर महा जंजाला छुटके जमह डरा आयो दुख हरन शरण करुणा पत गहयो चरण आसरा नाव रूप भयो साध संग भवने दपार परा अपयो पियो गत थियो परमा कहो।

है जिन रस रस हर गुण गाई, जय श्री महला पंजवां। गोविंद जीवन प्राण धन रूप, अज्ञान मोह मगन महा प्राणी, अंधियारे मह दीप रहाउ। सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम, चरण कमल अनूप, अनक बार करो ते बंदन।

लाड़दास जाने अपने उदरे उदर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जय श्री महला पंजवां आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर दे अंध कूप ते लाभ हो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभ हो बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मह तरनी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग आभरनी जय श्री महला पंजवां हर जन सिमरो हिरदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिगन बिन सह हर सेवा निश्चल गोविंद धाम भगवंत भगत को पौ किश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहु नानक सुख समूह विश्राम जय श्री महला नौवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूल्यो मन माया उरझायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जानियो नाहिन बन खोजन को तायो रतन राम घट ही के पीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत भजन।

को त्रास भयो उर अंतर शरण गही कृपा निद तेरी रहाओ। महापतत मुग्ध लोभी फुन करत पाप अबहारा

दह दिस को उठताया घट ही भीतर बसै निरंजन ताको मर्म ना पाया नाहिन गुण नाहिन कश जप तप कौन कर्म अब कीजै नानक हार परियो शरनागत अपै दान प्रभ दीजै जैत

को जोगी खोज तहारे पायो नाहे तेह पारा। सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबहू नाहे संभारा। नानक शरण परयो जग बंदन राखो हो बिरद तुहारा। जैत श्री महला पंजवा संत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया। किस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया। किस दास प्यारे सिर धरी उतारे एक पूरी।

पूरा पाया सगली तिखा बुजंतिया यार वे प्रिय हबे सखिया मुंह कही ना जेहिया यार वे हिक डू हिक चाड़े हौ किस चिते हिया हिक डू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हौ कद पाई गुण तासा जिन्नी मैंडा लाल रजाया हौ तिस आगे मन डेहिया नानक कह सुन बिनो सुहागण मूं दस दिखा पेर के हिया यार वे पेरे आपन पाना किस निशी शंदा यार वे तैरावया लालन मूं दस दसंदा लालन तै पाया आप गवाया जै तन भाग मथाने बाहां पकड़ ठाकुर हौ किदी गुण अवगुण ना पछाणे गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किस सुहंदा जन नानक तन सुहागण साई जिस संग पता।

आठ पहर कर जोड़, सो प्रभ त्याई है, त्याए सो प्रभ सदा अपना, मन है चिंदिया पाई है, तज मान मोह विकार दूजा, एक स्यों निवलाई है, अर्प मन तन प्रभु आगे, आप सगल मिटाई है, बिनवंत नानक धार कृपा, साच नाम समाई है, सलोक रे मन तां कौ त्याई है, सब बिद जा कै हाथ, राम नाम तन संची है।

पूर सोए जल थल मैयल पूर रहया सर्वदाता प्रभ धनी गोपाल गोविंद अंत नाही बे अंत गुणता के क्या गनी पाज सरन स्वामी।

अद पूरन अंत पूर्ण परमेश्वर है, सिमरंत संत सर्वत्र रमण, नानक अगनाशन जगदीश्वर है। देखन सुनन सनामनो मन मह दृढ़िय साच, पूर रहे हो सर्वतर मैं, नानक हर रंग राच पौड़ी, हर एक निरंजन गाई है।

अथ आपदा तिस बिन नहीं कोई खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई सलोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापन सास सास सिमरंत नानक महा अगन ना बनासन मुख तले पैरे उपरे बसंदो को हथड़े थाए नानक सो तनी क्यों वसारे हो उदर है जिस दै नाए पौड़ी रक्त बिंद कर निम्या अगन उदर मझार उर्द मुख कुचील बिकल नरक घोर गबार हर सिमरत तू ना जल है मन तन उरतार बिकम थानो जिन रखिया तिस तिल ना विसार प्रभ बिसरत सुख कदे नाही जस है जन्म हार सलोक मन इच्छा दान करन सर्वत्र आसा पूर्ण है खंडन कल कलेश प्रभ सिमर नानक नह दूर नह हब रंग मान है जिस संग तैस्यो लाई नेहो सो सहो बिंद ना विसरो नानक जिन सुंदर रह।

साध संग हर गुण रमहु बिनसे सब रोग सलोक कुटंब जतन करनं माया अनेक उदम है हर

शांत हुए केत बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दह दिसह त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग मह मन साई मुख उच्चरा वत्ता हबे लो नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता टूटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पात ना आदरु उद्यान पर मिन्ना मित्र ना एठ धन रूपहीन किस साक ना सिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना किसकी धूड़ मन उदर प्रभ हुए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राज रस रूपं शतर चमर तख्त आसनं रचंत मूड अज्ञान अंध है नानक सुपन मनोरथ माया।

लोक बसंत स्वर्ग लोक है, जित ते पृथ्वी नव खंडन है, बिसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है, कौतिक कोड तमाशिया चेतना आवस नाउ, नानक कोड़ी नरक बराबरे, उजड़ सोई थाऊ पौड़ी, महाभयान उद्यान नगर कर मानिया।

कहो कौन है जित प्रभ को पाई। सो मूरत भला संयोग है जित मिले गुसाई। आठ पहर हर त्याई कै मन इच पुजाई। बड़े भाग सतसंग होए निव लागा पाई। मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई। सलोक पतत पनीत गोबिंद है सर्व दुख निवारण है। सरन सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे। छड्यो हबे आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप।

गुर प्रसाद। राग टोडी महला चौथा घर पहला, हर बिन रह ना सकै मन मेरा। मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ गुर मेले, बहुर न भवजन फेरा रहाउ। मेरे ही अरे लोच लगी प्रभ केरी, हर नैन हो हर प्रभ हेरा। सतगुर दयाल।

आद संतन अवर न काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी रहाउ ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी ऐसो अमर मिलियो भगतन को।

उस जन्मा नानक तिस बलिहारी टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद तायो रे मन दह दिस तायो माया मगन स्वाद लोभ मोहयो तिन प्रभ आप पलायो रहाव हर कथा हर जस साध संगत सियो एक मोहत ना एहु मन लायो बिगसेओ पेख रंग कसुंभ को परग्रह जोहन जायो चरण कमल सियो पाओ ना कीनो नह सत पुरख मनायो तावत कहो तावह बहु भांति ज्यो तेली बल्द परमायो नाम दान इशनान ना कियो एक निमख ना कीरत गायो नाना झूठ लाए मन तो खियो नह बूझियो अपनायो पर उपकार न कबहू किए नहीं सतगुर सेवत आयो पंच दूत रच संगत गोष्ट मतवारो मद मायो करो बेनती साध संगत हर भगत वश्चल सुन आयो नानक भाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो टोडी महला पंजवा मनुख बिन बूझे बिरता आया अनक साज सिंगार बहु करता ज्यो मृतक ओढ़ाया रहाओ ताए ताए कृपन शर्म कीनो एकत्र करी है माया दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज ना आया कर आभरण सवारी सेजा कामन थाट बनाया संग न पायो अपने परते पेख पेख दुख पाया।

प्रभु को किस हृदय नाम वसाया, साध संगत कै पाछै परे ओ, जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवा, कृपा निद बसो हृदय हर मीत, तैसी बुद्ध करहो परगासा, लागै प्रभ संग प्रीत रहाउ। दास तुम्हारे की पावो धूरा, मस्तक ले ले लावो, महापतत ते होत पनीता, हर कीर्तन गुण गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो, कियो तुहारो पावो, जो तू देहे तही एहो तृप्तै, आन न कतहु तावो, सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी।

काल अनेक भोग रस सगल तरवर की श्याम ताए ताए बहु विध कौ तावै सगल निरारत काम बिन गोविंद अव

पंजवां सतगुरे आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी रहाओ अवर न

दुख पंजन जा का बड परताप टोडी महला पंजवा स्वामी सरन परयो दरबारी कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उदारी रहाउ खोजत खोजत बहु परकारे सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाईए माया रच बंद हारी चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुर जन मिले प्यारे नानक अंध करे हर जप जप सगले रोग निवारी टोडी महला पंजवा घर तीजा चौपदी।

आयोरे महाराज रो गाथ बाहू स्यो लुबड़ो नेह भागड़ो पाहे संजोयो रे सुन मन सीख साधु जन सगलो थारे सगले परास्त मिट्यो रे जाको लहणो महाराज री गाठड़ियो जन नानक गर्भास ना पौड़ियो रे टोडी महला पंजवा घर पंजवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन पंच दुख अर अंग रोग एह तन ते सगल दूर कीन रहाओ बंधन तोर छोर बिखियाते

मोहे हर रंग पीन, पेखियो लालन पाट बीच खोए, अनद चिता हरखे पतीन, तिस ही को ग्रहो सोई प्रभ नानक।

धर्म जप एही राम नाम निर्मल है रीत रहाउ प्राण आधार जीवन धन मोरै देखन को दर्शन प्रभ नीत बाट घाट तोसा संग मोरै मन अपने को मैं हर सखा कीत संत प्रसाद भय मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया।

बिसर नहीं निमकही रेते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ खोबो परम राख मेरे प्रीतम अंतरयामी सुगड़ सुजान कोट राज नाम धन मेरा अमृत दृष्ट तारु प्रभ मान आठ पहर रसना गुण गावे जस पूर अगावे समर्थ कान तेरी शरण जीयन के दाते सदा सदा।

सदा हजूर जो तुमरा जस गावह करते से जन कभो ना मरते चूर धंध बंध बिन से माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग इस जी के।

नाम निरंजन करते मन तन ते सब किन विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुण तास शांत सहज सुख माने उपजेओ कोट सूर नानक परगास टोडी महला पंजवा हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता रिद दास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूम बीजन सो खावन विस्मन विस्म

का छल तृण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल रहाओ छोड़ सियानप बहु चतुराई दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मनुख देका एहो उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पय मल टोडी महला पंजवां माई चरण गुर मीठे वड्डा भाग देवै परमेश्वर कोट फला दर्शन गुर दीठे रहाओ गुण गावत अचुत अवनासी काम क्रोध बिनसे मद ढीठे अस्थिर भये साच रंग राते जन्म मरण बहुर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे टोडी महला पंजवां साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद हुए दिन राती अंकुर भलो हमारा रहाओ गुरपुरा भेटियो वड भागी।

नहीं कब हूँ, होत जो संग सहाई मगन रहे हो माया मैं इस दिन छुट्टी ना मन की काई। कह नानक अब नाही अंत गत बिन हर की सरनाई। टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर। काए रे बकवाद लायो जिन हर पायो तिन्ह छपायो रहाओ। पंडित हुए कै बेद बखाने मूर्ख नाम देव रामह जाने। कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही पतत पवित भये राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई एकादशी बरत रह काहे को तीर्थ जाई। भणत नाम देव सो कृत समत भये गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए। तीन संदे खेल आछै रहाओ कुंभार के घर हांडी आछै। राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी आछै। रांडी सांडी हांडी गो बाणिये के कर हींग आछै। पैसर मातै सींग गो देवल मदे लीग आसै। लीग सीग हीग गो तेली कै कर तेल आछै।

राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दुपदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद बुद्ध सिद्ध सुख पावह भज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान प्राण जासे उत्तम खट दर्शन गावह राम शंकर करोड़ ते तीस त्यायो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नार गण गंधर्व जस गावह सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिनको ते संत भले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ इस जन को मन तन सब देव जिन हर हर नाम सुनायो धन माया संपै तिस देव जिन हर मीत मलायो खिन किंचित कृपा करी जगदीशर तब हर हर हर जस त्यायो जन नानक को हर भेटे स्वामी दुख हमै रोग गुआयो बैराड़ी महला चौथा हर

उदर मंजारा, सो ऐसा हर सेव हो मेरे मन हर अंत छावन हारा। जा कै हृदय बसिया मेरा हर हर, तिस जन को करहो नमस्कारा।

प्रसाद यक अर्ज गुप्तम पेश तू दरगोस पुन करतार हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार दुनिया मुकामे पानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल ग्रिफ तह दिल हेच ना दानी रहाउ जन पिसर पदर बिरादरा कस नेस दस्तंगीर आखर बेअपतम कस ना दारद चू स्वद तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी खयाल गाहे ना नेकी कार करदम मम ईच नी अहवाल बद बखत हम चोब खील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक तलंग महला पहला कर दूजा।

ता दर्शन की भूख मैं दर मांगो नीता नीत तौ दर्शन की करो समाए मैं दर मांगत भीख्या पाए रहाउ केसर कुसुम मिर्ग मैं हरना सर्ब शरीरी चढ़ना चंदन भगता ज्योत अनेही सर्वे परमल करना के पट भांडा कह ना कोई ऐसा भगत वर्ण मह होई तेरा नाम निवे रहे लिव लाए नानक तिन दर पीछिया पाए तलंग महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद एह तन माया पाया प्यारी लीतड़ा लभ रंगाई मेरे कंपना पावे चोलड़ा प्यारी क्यों धन सीजै।

अमन नौ निज पाई अपने कंत प्यारी सा सुहागन नानक सा सबराई ऐसे रंग राती सहज की माती एहन सफाए समाणी सुंदर साए स्वरूप विचक्षण।

पाप की जंज लह काबल हो ताया, जोरी मंगै दान वे लालो, शर्म धर्म दोहे शप खलोए, कूड़ फिरै परदान वे लालो, काजियां बामणा की गल थकी,

सोई नानक कर्म प्राप्त होई जिन जपया तिस को बलिहार तिस कै संग तरै संसार कहो नानक प्रभ लोचा पूर संत।

कट कट मालिक दिलां का सच्चा परवदगार कुदरत कीम ना जानिए वड्डा वी परवाह कर बंदे तू बंदगी जिचर घट महसाह तू समरत।

घर तीजा करते कुदरते मुसताक दीन दुनिया एक तू ही सब खलक ही ते पाक रहाओ हिन माहे थाप उथापदा आचर्य तेरे रूप कौन जाने चलत तेरे अंधियारे मह दीप खुद खसम खलक जहान अल्लाह।

सगले आपू तेरे जन देख है दीदार दुनिया चीज फिलहाल सगले सच सुख तेरा नाम गुर मिल नानक बूझिया।

उस्तत है, जो हर प्रभ भावे, जो गुरमुख प्यारा सेम दे, तिन हर फल पावे, जिन्ना हर सेती पिरहड़ी, तिना जी प्रभ नाली, ओए जप जप प्यारा जीव दे, हर नाम संभाले, जिन गुरमुख प्यारा सेविया, तिन

भजन ते निरपै पद पावै तलंग महला नौवां जाग ले हो रे मना जाग ले हो कहां गाफल सोया जो तन उपजिया संग ही सो पी संग ना होया रहाउ मात पिता सुत बंद जन हित जा स्यो कीना जियो छूट्यो जब देते डार अगन मैं दीना जीवत लो व्यवहार है जग कौ तुम जानो नानक हर गुण गाए लै सब सुफन समानो।

संपत रथ धन राज सिउ अतनेहो लगायो। काल पास जब गल परी सब भयो परायो। जान बूझ कै बावरे तैं काज बिगारियो।

नाम जपहु तब मथिया इन बिद अमृत पावहु। मन संपट जित सत सर नावन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहे।

नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट है जेता सुई महला पहला जप तप का बंद बेड़ला।

लिखिया अमृत हर का नाउ देवै दिखिया चल है सतगुर भाई पवै ना भीखिया जा को महल हजूर दूजे निवै किस दर दर वाणी नाही मूले पुछ तिस छुट्टै ताकै बोल साहिब नदर जिस।

आदि जोग ना खिंथा जोग ना डंडै जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना मुंडी मूंड मडाया जोग ना सिंगी वाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जोगत इव पाई है गली जोग ना हुई एक दृष्ट कर सम सर जान।

जोगना देश दसंतर भवे जोगना तीर्थ नाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है सतगुर भेटै ता।

पाइय अंजन माहे निरंजन रहिय जोग जुगत इव पाइय नानक जीवत आमर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाज हो सिंही वाजे तो निरपो पद पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत तो पाई है सूही महला पहला कौन तराजी कौन तुला तेरा कवन सराप भला।

हर हर करह नित कपट कमावह, हृदय शुद्ध ना हुई अन दिन कर्म करह बहुतेरी, सुपने सुख ना हुई ज्ञानी गुर बिन भगत ना होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े जे लोचे सब कोई रहाव, जप तप संयम वर्त करे पूजा मनमुख रोग ना जाई, अंतर रोग महा अभमाना दूजे।

जाने जगत गुरु नानक पूछ करो बिचारा चहो पीढ़ी आद जगाद बखीली किने ना पायो हर सेवक पाए निस्तारा सूही महला चौथा जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर कृपा ते हर मन वसै होरत बिद लया ना जाई हर तन संचिए पाई जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ सत संगती संग हर तन खटिए होरत है होरत उपाए हर तन किते ना पाई हर रतन का वापारिया हर रतन तन विहाजे कच्चे के वापारिये वाक हर तन लया ना जाई हर तन रतन जवे।

का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही। हलत पलत हर तन की भगतां को मिली वडियाई। हर धन निरपो सदा सदा अस्थिर है साचा। यो हर धन अग्नि तस्कर है पानी है जमदूत है। किसे का गवाया ना जाई हर धन को उचक्का नेड़ ना आवी। जम जा गाती डंड ना लगाई साख तू पाप करके बिखिया धन संचिया। तिना एक विख नाल ना जाई हलतै विच साकत दहेले पए। हथों छुड़क गया अगे पलट साकत हर दरगाह ढोई ना पाई। इस हर धन का साहु हर आप है संत हो। जिसनों दे सो हर धन लद चलाई। इस

जिसनो हर सो प्रसन्न हुए सो हर गुणा रवे सो भगत सो परवान तिसकी महिमा क्या वर्णी है जिसकै हृदय बसिया हर पुरख भगवान गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ सो सतगुरु सा सेवा सतगुर की सफल है जिसके पाइए परम निदान जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध सरेम दे सो निह

स्वामी मैं तुदे आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करूं बेनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास, विचे धरती विचे पानी, विच काष्ट अगन तरीजै, बकरी सिंह इक तै थाए राखे। मन हर जप भ्रम पौ दूर कीजै, हर की वडियाई देखो संतो। हर निमाणिया मान दिवाए, ज्यों धरती चरण तले ते ऊपर आवै, त्यों नानक।

आइए बुरा भला तुद सब किस सूझे जेहा को करे तेहा को पाइए मेरे साहिब तू अंतर की बिद जाने बुरा भला तुद सब किस सूझे तुद भावे तिवें भला वह रहाउ सब मोह माया शरीर हर किया विच देही मनुख भगत कराई एक ना सतगुर मेल सुख देव है एक मनमुख धंद पिटाई सबको तेरा तू सबना का मेरे करते तुद सबना सिर लिखिया लेख जे ही तू नदर करह तेहा को हुए बिन नदरी नाही को भेख तेरी बड़ियाई तू है जान है सब तुदनो नित त्याई जिसन

अंतर वस्या मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाई ते मुक्त पए जिन हर नाम त्याया तिन पवित परम पद पाई मेरे राम हर जन अरोग पए।

त्रै गुण रूपी विच हों मैं कार कमाई जिन किए तिसह ना चेतह बपड़ी हर गुरमुख सूझी पाई हों मैं रोग सब जगत ब्यापिया तिन कौ जन्म मरण दुख भारी गुर प्रसादी को विरला छूटै तिस जन को हों बलिहारी जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने ताका रूप अपारो नानक आपे वेख हर बिगसै।

कर सकीए, अपना कीता किशु ना होए, ज्यो हर भावे त्यो रखीए, मेरे हर जियो सब को तेरे वस, असा जोर नाही, जे किश कर हम साक है।

तुझ श्रेष्ठ सब साजी कोई सेवा करियो जे किछ कीता हुआ इकना सतगुर मेल तू बुझावे एक मनमुख करह से रोवे हर की वडियाई हौ आख ना साका हौ।

पंजवा गृहवास गुर की ना हो घर की नार दस दासी कर दीनी पतार सगल समगरी मैं घर की जोड़ी आस प्यासी फिर को लोड़ी कवन कहां गुणकंत प्यारी सुगड़ स्वरूप दयाल मरारी रहाउ सत श्रृंगार पहु अंजन पाया अमृत नाम तंबोल मुख खाया कंगन बस्त्र गहने बने सुहावे तन सब सुख पावे जा फिर घर आवे गुण कामन कर कंत रिजाया वस कर लीना गुर भरम चुकाया सब ते ऊंचा मंदिर मेरा सब

जन नानक पिर धन मिल सुख पाया सूही महला पंजवा उमकियो हियो मिलन प्रभ ताई खोजत चरियो देखो प्रिय जाई सुनत संदेसरो प्रिय ग्रह सेज बछाई भ्रम भ्रम आयो तो नदर ना पाई किन बिद ही अरो धीरै निमानो मिल साजन हों तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी धन कंता।

नरासी बहुत दिन लागी, देश दसंतर मैं सगली झागी, खिन रहन ना पावूं बिन पग पागी, वे कृपाल प्रभ मिलह सुभागी, पयो कृपाल सतसंग मलाया, बूझी तपत करह फिर पाया, सगल शिंगार हुन मुझ सुहाया, कहो नानक गुर परम चकाया, जह देखा तह पिर है पाई,

दृष्ट नाही रे पेखते अंधे, छोड़ जाहे झूठे सब तंधे रहाओ। कहो नानक प्रभ बख्श करी जय, कर कृपा मुहे साध संग दी जय, तो किस पाई है।

हरामी, पाहन नाव ना पार गिरामी, गुरमिल नानक ठाकुर जाता, जल फल महियल पूर्ण बेदाता, सूही महला पंजवा, लालन रावे आ कमन गतीरी, सखी बताव मुझे मतीरी, सुहब सुहब सुहवे।

जप तप संयम देव जतीरी एक निमख मलाव हो मोहि प्राण पतीरी मान तान हम्बुद हतीरी सा नानक सुहाग वती।

आई, जा कहो बिन सतबार ना काई। इह सुपना सोवत नहीं जाने, अचेत व्यवस्था मह लपटाने रहाउ। महा मोहे मोहयो गावारा, पेखत पेखत ऊठ सधारा। ऊचते ऊच ताका दरबारा, कई जंत बनाहे अपारा। दूसरो

अमृत कथा सुन करन अधारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी, दृढ़ नाम दान इसनान सुचारी, कहो नानक एहो तत बीच।

की देह मनुख अभमानी स्वाद बाद ईरख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख भंजन जग जीवन हर राया सगल त्याग नानक सरनाया सूही महला पंजवा पेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही सो किछ कार जित छुटे परानी हर हर नाम जप अमृत बाणी।

का भांडा, हाथ कुचील मिलै जम डांडा, काम क्रोध लोभ मोह बादा, महा गर्त मह निगरत जाता।

मन माही जन्म जन्म के किल बिख जाही कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक मांगे संतर वाला सुई महला पंजवा दर्शन।

साजन सुत बंधप पाई, जत कत पीखो हर संग सहाय, जत मेरी पत मेरी धन हर नाम, सूख सहज आनंद विश्राम रहाव, पार ब्रह्म जप पहर सलाह, कोट आवद तिस बेदत नाही, हर चरण सरन गर कोट हमारे, काल कंटक जम तिस ना बदारे, नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मरारी, सूही महला पंजवां, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, आनंद बनोद मंगल।

तुम्हें छड़ाई लियो जाने अपना उर्ज परियो जाल जग सुपना रहाओ पर्वत दुख महा बिकराला किन मैं दूर किए दयाला सोग रोग विपत अत भारी दूर पई जप नाम मरारी दृष्ट धार लीनो लड़ लाए।

राम आहार पूदाता प्रभ देवनहार राम रमत संतन सुख माना नानक देवनहार सुजाना सुई महला पंजवा बहती जात कदे दृष्ट ना तारत मिथ्या मोह बंद है नित पारच माधवे पाज दिन नित रहनी जन्म पदार्थ जीत हर सरनी रहाओ करत विकार दू कर चारत राम रतन रिद तिल नहीं तारत परन पोखन संग औद बेहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी सरन समराते अगोचर स्वामी।

सिमर रत्नागर सिमर सिमर जीवा नारायण। दुख रोग सोग सब बिन से गुरपुरे मिल पापत जायन रहाउ। जीवन पदवी हर का नाउ मन तन निर्मल साच सुआउ। आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है पूर्व लिखित होए ता पाई है।

आस हर से राते राम रसायणे अन दिन माते बाहा पकड़ प्रभ आपे काढ़े जन्म जन्म के टूटे गांडे उधार स्वामी प्रभ कृपा तारी नानक दास हर सरन द्वारी सूही महला पंजवा संत प्रसाद निश्चल घर पाया सर्ब सुख फिर नहीं डोलाया गुरु त्याए हर चरण मन चीने ताते करता असथर कीने रहाउ गुण गावत अचुत अबनासी ताते काटी जम की फासी कर कृपाली ने लड़ लाए सदा आनंद नानक गुण गाए सूही महला पंजवा अमृत बचन साध की बाणी जो जो जपै।

कृपाला रहाउ। कर कृपा तुम ही प्रतपाला, जियो पिंड सब तुमरा माला। अमृत नाम चले जप नाला, नानक जाचै संतर वाला। सूही महला पंजवां, किस बिन दूजा।

महला पंजवा दर्शन कौ लोचै सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई प्रेम बशोहा करत कसाई निर्दय जंत तिस दया ना पाई अनक जन्म बीतियन परवाई घर वास ना देवै दुत्तर माई दिन रैन अपना किया पाई किस दोष ना

पली सुहावी छापरी जा मह गुन गाय कित ही कामना तौल हर जित हर बिसराय रहाओ अनद गरीबी साध संग जित प्रभ चेते आए जल जाओ एहो बडपना माया लपटाई पीसन पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोख आए ऐसो राज ना कितै काज जित नह त्रिपताई नगन फिरत रंग एक कै ओहो शोभा पाई पाठ पटंबर बिरथिया जिहे रच लोभाई सब किस तुमरै हाथ प्रभ आप करे कराई सास सास सिमरत रहा नानक दान पाई सूही महला पंजवा हर का संत प्राण धन तिसका पनेहारा भाई मीत सुत सगल ते जी हूं ते प्यारा रहाउ केसा का कर बीजना संत चौर टलावो शीस निहारो चरण तल तूर मुख लावो मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याई ताज अवमान सरनी परो हर गुण निद पाई।

को सुखी ताके पाछे जाऊ छोड़ जाहे जो सगल कौ फिर लपटाऊ करहो कृपा करुणापति तेरे हर गुण गाओ नानक की प्रभ बेनती साध संग समाओ राग सूही महला पंजवा घर पंजवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया।

रहाउ निर्गुण हरिया सरगुण धरिया अनक कोठरिया भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न करिया विच मन कोट वरिया निज मंदर प्रिया तहां आनंद करिया नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया बहो विद फिरिया पर को हिरिया बिखना किरिया अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहोर ना फिरिया।

करनी आया, पुरुष आया, कृपा आया, ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी। मार्ग गुरह पठाया रहाउ, महा दुत्तर माया, जैसे पवन चलाया, सुन सुन ही डराया, करो धर्म राया, गृह अंध कुपाया, पावक सगराया, गही ओट सधाया, नानक हर त्याया, अब मैं पूरा पाया। राग सूही महला पंजवा कर छेवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सतगुर पास बे

जल थल मही अल सोई रहाउ, कोट अपराधी संत संग उदर है, जम ता कै नेड़ ना आवे, जन्म जन्म का बिछड़िया हुवे, तिन्हा

एक परवासा तुम्हारा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ अंधकूप ते काढ लिए तुम आप भये कृपाला सार संभाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छुड़ाई अपनी भगत प्रभ आप करे।

चरण धूड तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन कहो बल जाई, अमृत बचन हृदय उर धारी, तौ कृपा ते संग पाई, अंतर की गत तुद पह सारी, तुद जेवड़े अवर ना कोई, जिसनो लाए लह सो लागे, भगत तुहारा सोई।

स्वामी जिनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्शना मेटे कोई सतगुर का दिलासा नाम ते आयन सुख फल पायन आठ पहर आराध है तेरी शरण तेरे परवास है पांच दुष्ट लै साध है ज्ञान ध्यान किस कर्म

राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाओ सहज शिंगार कामन कर आवे ता सुहागण जा कंत पावे ना किस रूप ना रेखिया काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई।

निद पाई, अनक जन्म बिछरत दुख पाया, कर गै ले हो प्रीतम प्रबराया, भणत नानक सहो है पी होसी, जय पावै प्यारा तैरै वेसी। सूही महला पहला कर नौवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कच्चा रंग कसुंब का थोड़िया दिन चार जी हो, विण नावै भ्रम भुलिया।

ये भवै है बिन भागा धन नाही जियो अवगण मुठी जे फिर है बदक थाए ना पाहे जियो गुर राखे से उबरे शब्द रते मन माहे जियो चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित कठोर जियो तिन मुख नाम ना उपजे दूजे व्यापे चोर जियो मूल ना बूझ अपना से पशुआ से ढोर जियो नित नित खुशियां।

सच्चे की लिव उबर बक्षे बक्षण हार जियो अनको की जय मितड़ा खाक रल मर जाए जियो बहु रंग देख पुलाया

मूर्ख मन समझाए आखों के तड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा, नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना, जे चलह गुण नाल नाही दुख संतापना, मनमुख भरम भुलाना ना तिस रंग है, मरसी होए वडाणा मन तन भंग है, गुर की कार कमाए लाहा घर आणिया, गुरबाणी निर्वाण शब्द पछाणिया, एक नानक की अरदास जे तुद भावसी, मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी, सूही महला पहला ज्यों आरण लोहा पाए भन कढ़ाई है, त्यों साकत जोनी पाए भवै पवाई है, बिन बूझे सब दुख दुख कमावना, हम मैं आवै जाए भरम भुलावना रहाओ, तू गुरमुख रखण हार हर नाम त्याई है, मेलह तुझ रजाए शब्द कमाई है, तू कर कर वेखह आप देह सो पाई है, तू देखह थाप पथाप दर बिनाई है, देही होवग खाक पमन उड़ाई है, एहो कित्ते कर औताक महल ना पाई है, देहो दीवी अंध कोर कब महाई है, गर्भ मुसै घर चोर किस रुआई है, गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है, शब्द निवारी आग जोत दी पाई है, लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाई है, सदा रहे नेह काम जे गुरमत पाई है, रात देह हर नाम मन वसाई है, नानक मेल मलाए जे तुद पाई है, सूही महला पहला मनो ना नाम वसार अहन सत्याई है, ज्यो राखह कृपा धार तिवै सुख पाई है, मैं अंदले हर नाम लकटी टोहनी, रहूं साहिब की टेक ना मोह है मोहनी रहाओ, जह देखो तह नाल गुर देखा लिया, अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया, सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना, तुद पावै तिवै रजाए परम पौ भंजना, जन्मत ही

गुरमुख गावे गुरमुख बूजे गुरमुख शब्द बिचारी जियो पिंड सब गुरते उपजे गुरमुख कारज सुवारी मनमुख अंधा अंध कमावे भिख खटे संसारी माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुर अत प्यारी सोई सेवक जे सतगुर सेवे चाले सतगुर पहाई साचा शब्द सिफत है साची।

साचा साचा शब्द सुनाई, गुरमुख काले गुरमुख खटे, गुरमुख नाम जपाए, सदा अलिपत साचे रंग राता, गुर कै सहज सुपाय, मनमुख सद ही कूड़ो बोले, बिख बीजै बिख खाए, जमकाल बादा तृष्णा दादा, बिन गुर कवन छिडाए, सच्चा तीरथ जित सत सर नावन, गुरमुख आप बुझाए, अठसठ तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नाते मल जाए।

कृष्णा यज्ञ बुझाए गुर कै शब्द राता सहजी माता सहजी रहिया समाय हर का नाम सत कर जाने गुर कै

जो मर खाक थी, वाह मेरे साहिबा वाह, गुरमुख सदा सलाही है, सच्चा वे परवाह रहाओ, दुनिया केरी दोस्ते मनमुख दज मरन, जमपुर बद्दे मारी है वेला ना लाहन, गुरमुख जन्म सकार था सच्चा शब्द लगन, आत्म राम परगासिया सहजे सुख रहन, गुर का शब्द वसारिया दूजे पाहिर चन, तिसना भूख न उतरे अन दिन जलत फिरन, दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन, आप डुबे कुटंब स्यों सगले कुल डोबन, निंदा भली किसे की नाही मनमुख मुग्ध करन, मुह काले तिन निंदका नरके घोर पवन, ए मन जैसा सेवह तैसा हुवह, तेहे कर्म कमाए।

कोई अमृत भरे भरपूर है ओना तिल ना तमाए गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशेन सेवड़ भागी जे ओना मिल रहे अन दिन नाम लेन देसी रिजक संवाहे जिन उपाई मेदनी एको है दातार सच्चा आप धनी सो सच तेरे नाल है गुरमुख नदर निहाल आपे बख्शे मेल लए सो प्रभ सदा संभाल मन मैला सच निर्मला क्यों कर मिलया जाए।

भी मिलन जो सतगुर सेवन अंतर नव निध नाम है खान खर्चन ना निखुटे हर गुण सहज रवन ना ओए जन्म है ना मर है ना ओए दुख सहन गुर राखे से उभरे हर सिउ केल करन सज्जन मिले ना विछड़ है जे अन दिन मिले रहन इस जग में विरले जानिय है नानक सच लहन सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है कित बिद मिलिया जाय गुर कै शब्द भ्रम कटी है अचिंत वसै मन आय गुरमुख हर हर नाम जपन हौ तिन कै बलिहार न मन हर गुण सदा रवन रहाउ गुर सरवर मान सरोवर है वड भागी पुरख लहन सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन नाम त्याइन रंग सिउ गुरमुख नाम लगन तुर पूर्व होऐ लिखिया गुर भाणा मन लेन वड भागी घर खोजिया पाया नाम निदान गुरपूरै वे खालिया प्रभ आत्म राम पछान सबना का प्रभ एक है दूजा अवर ना कोए गुर प्रसादी मन वसै तित घट प्रगट होए सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसै सब थाए मंदा किसनो आखिए शब्द वेखो हो लिवलाए बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दोहो माहे गुरमुख एको बुझिया एक समाहे समाए सेवा सा प्रभ भावसी जो प्रभ पाए थाए जन नानक हर अरादिया गुर चरणी चित लाए राग सूही अष्टपदियां।

गुरु तुठा देव माए, मैं धर सच्चे नाम की हर नाम रहा लिव लाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है हर नामो दे दृढ़ाए, जिस प्राप्त सोल है गुर चरणी लागे आए। अकाल

सतगुर मीत मलाया, मैं सदा सदा तेरा तान। सतगुर मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए, ओह अविनाशी पुरख है, सब मैं रहया समाय। राम नाम धन संचया, साबत पूंजी रास, नानक दरगाह मन्या, गुरपूरे साबास। राग सूही अष्टपदिया महला पंजवा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उर्ज रहयो बिख्या कै संगा, मनह व्यापत अनक तरंगा, मेरे मन अगम अगोचर, कत पाईए पूर्ण परमेश्वर रहाउ। मोह मगन में रहया व्यापे, अत तृष्णा कबहू नहीं त्रापे,

आद मध अंत प्रभ सोई, नानक तिस बिन अवर ना कोई। राग सूही महला पंजवां, अष्टपदियां घर नौवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिन डिठिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो। संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यों रंग जियो। तिन स्यों प्रीत ना टुटई।

मन बुठा निरंकार जियो तां का अंत ना पाई है। ऊंचा अगम अपार जियो जिस प्रभ अपना विसर सो मर जमै लख वार जियो। साच नेहो तिन प्रीतमा जिन मन बुठा आप जियो। गुण सांझी तिन संग बसे आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रते परमेश्वर है बिनसे सगल संताप जियो। तू करता तू करनहार तू है एक अनेक जियो। तू समरथ तू सर्वमय तू है बुद्ध विवेक जियो। नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो। राग सूही महला पंजवां अष्टपदियां घर दसवां काफी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद जे भुली जे चुकी साई पीत हिंजी।

दातड़ी नित हृदय रखा संभाल पाम जलाई पंध तौ नैनी दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानियां जे गुर थी वै कृपाल किती

मोहे बाद अहंकार सर पर रुन्निया, सुख न पायन मूल नाम विशुन्निया, मेरी मेरी तार बंधन बंधिया, नरक सुर्ग अवतार माया तंदिया, सोदत सोदत सोद तत बीचारिया, नाम बिना सुख नाही सर पर हारिया, आवह जाही अनेक मर मर जन्मते, बिन बूझे सब वाद जोनी भरमते, जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया, अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया, खोजह कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बजाए आप नेड़ा तिस हे, विसरनाही दातार अपना नाम देह, गुण गावां दिन रात नानक चाओ एह, राग सूही महला पहला कुचजी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मन कुचजी अम्मावन डोसड़े, हौ क्यों सहोरावन जाऊ जियो, एक दू एक चढ़ंदियां कौन जाने मेरा नाउ जियो, जिन्नी सखी सहोरावया ते अंबी छावड़ी एह जियो, से गुण मान न आमनी हौ कै जी दोस त्रेउ जियो, क्या गुण तेरे विथरा हौ क्या क्या किन्ना तेरा नाउ जियो, इकत ढोल ना अंबड़ा हौ सद कुरबान तेरे जाऊ जियो, सोइना रूपा रंगला मोती तै माणिक जियो, से वस्तु सह दितियां मैं तिन स्यों लाया चित जियो, मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरास जियो, हौ एनी टोली भुलियस तिस कंत ना बैठी पास जियो, अंबर कुंजा कुरलियां बग बिहठे आए जियो, सा तन चली सोहरे क्या मुंह देसी अगे जाए जियो, सुती सुती झाल पिया भुली वाकड़ी आस जियो, तैसह नालो मुतियस दुखा को त्रियास जियो, तुद गुण मैं सब अवगणा एक नानक की अरदास जियो, सब राती सुहागनी मैं दुहागन काई रात जियो, सूही महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सब को, तू साहिब मेरी रास जियो, तुदे अंतर हौ सुख वसा तू अंतर साबास जियो, भाणे तख्त वडाइया भाणे भीख उदास जियो, भाणे थल सिर सर्व है कमल फुले आकाश जियो, भाणे भवजल लंघी है भाणे मंझ परियास जियो, भाणे सो सहो रंगला सिफत रत्ता गुणतास जियो, भाणे सहो पिहावला हौ आवन जान मुईयास जियो, तू सहो अगम अतोलवा हौ कह कह कह पयास जियो, क्या मांगो क्या कह सुनी मैं दर्शन भूख।

लाए जियो, सोई दस उपदेसड़ा, मेरा मन अनक ना काहू जाए जियो, एहो मन तै कूडे वसा, मैं मार्ग देहो बता।

सी चित मह मेरा सबो दुख गवाई दियो। इत मार्ग चले भाई अड़े गुर कह सो कार कमाई दियो। त्यागे मन की मतड़ी।

गुण सार न जानी भरम पलानी जोगन बाद गुआया वार घर दर दर्शन नहीं जाता पिरका सहज ना पाया सतगुर पूछना मार्ग चाली सूती रहन विहानी नानक बाल तनरा डेपा बिन पिर तन कुमलानी बाबा मैं वर दे मैं हर वर भावे तिसकी बलराम जियो रव रहिया जुग चार त्रिभवन बाणी जिसकी बलराम जियो त्रिभवन कंत रवै सुहागण अवगण मंती दूरे जैसी आसा तैसी मनसा पूर रहिया पर पूरे हर की नार सो सर्व सुहागण रांड ना मैलै विसे नानक मैं वर साचा पावै जुग जुग प्रीतम तैसे बाबा लगन गणाए हम भी वन्या सोहरे बलराम जियो साहा हुक्म रजाए सो ना कले जो प्रभ करे बलराम जियो किरत पया करते कर पाया मेट ना सके कोई जानी ना नरे नेह केवल रव रहिया तेहो लोई माए नरासी रोए बछुनी बाली बालै हेते नानक साच शब्द सुख महली गुर चरणी प्रभ चेते बाबुल दितड़ी दूर ना आवै घर पेयै बलराम जियो रहस्ती वेख हदूर पिर रावी घर सोहियै बलराम जियो साचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मत पूरी परधानी संजोगी मेला थान सुहेला गुणवंती गुर ज्ञानी सत संतोख सदा सच पल्ले सच बोले पिर पाई नानक बिछड़ ना दुख पाए गुरमत अंक समाए राग सूही महला पहला शंत कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम घर साजने आए साचे मेल मलाए सहज मलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिस सेती मन लाया अन दिन मेल भया मन मानिया कर मंदर सोहाई पंच शब्द तुन अनहद वाजी

हों बलिहारी साज ना मीता अवरीता गुणा का हुए वासला कड वासली जै जे गुण होवन साजना मिल सांझ करी जै सांझ करी जै गुणा केरी छोड़ अवगण चली है पहरे पटंबर कर अडंबर अपना पिड़ मली है जिथे जाए बही है भला कही है झोल अमृत पीजै गुणा का हुए वासुला कड वासली जै आप करे किस आखी है होर करे ना कोई आखण तां को जाइए जे भूलड़ा होई जे होए भूला जाए कहिए आप करता क्यों भुले सुने देखे बाज कहे दान अणमंगिया देवे दान दे दाता जग विधाता नानका सच सोई।

प्रीतम सिंह मन मानिया हर सेती राता साहिब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारिया पंच भू नायको आप सरंदा जिन सच का पिंड सवारिया हम अवगुण यारे तू सुन प्यारे तुद भावे सच सोई आवन जाना ना थी है साची मत हुई अंजन तैसा अंजी है जैसा फिर भावे समझे सूझे जानिए जे आप जनावे आप जानावे मार्ग पावे आपे मनुआ लेवे कर्म सकर्म कराए आपे कीमत कौन अपेवे तंत मंत पाख।

पर कर जाही, साज नराते सच के संगे मन माही साजन करह रलिया, कर्म धर्म सबाया, अट तट तीर्थ पुन पूजा, नाम साचा पहाया, आप साजे थाप वेख तिसे पाना पाया, साजन रंग रंगी लड़े रंग लाल बनाया, अंधा आगू जे थी क्यों पाधर जाने, आप मुस्से मत होशी है क्यों राह पछाने, क्यों राह जावे महल पावे, अंध की मत अंधली बिन नाम हर के कसना सूजे, अंध बूढ़ो तंदली बिन रात चानन चाओ उपजे, शब्द गुर का मन वस्से कर जोड़ गुर पह कर बेनंती, राह पादर गुर दस्से मन परदेसी जेती है, सब देश पर आया किस पै खोलो गंथड़ी, दुखी भर आया, दुखी भर आया जगत सबाया।

आप भुल ना भुले, जय जयकार करह तुद भाव है, गुर कै शब्द अमुले, हीनो नीच करो बेनंती, साच ना छोड़ो भाई, नानक जिन कर देखिया, देवै मत साई, राग सूई संत महला तीजा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुख सोहिलड़ा हर त्याहु, गुरमुख हर फल पावहु, गुरमुख फल पावहु हर नाम त्याहु, जन्म जन्म के दुख निवारे, बलिहारी गुरे अपने विटोहु, जिन कार्य सब सवारे, हर प्रभ कृपा करे हर जापहु, सुख फल हर जन पावहु, नानक कह सुनो जन पाई, सुख सोहिलड़ा हर त्याहु, सुन हर गुण पीने सहज सुपाई, गुरमत सहजे नाम त्याय, जिनको तुर लिखिया तिन गुर मिलिया, तिन जन्म मरण पौ भागा, अंदरों दुरमत दूजी खोई, सो जन हर लिव लागा, जिनको कृपा कीनी मेरा स्वामी, तेने अन देन हर गुण गाए, सुन मन पीने सहज सुपाई, जुग मह राम नाम निस्तारा, गुरते उपजै शब्द विचारा,

हमारा, जुग मह राम नाम निस्तारा। साजन आए उठे कर माही, हर गुण गाव है तृप्त अगाही। हर गुण गाए सदा तृप्तासी, फिर भूख ना लागे आई। दह दिस पूज हो है हर जन की, जो हर हर नाम त्याई।

गुण अवगुण पछाण हर नाम वखाण पै भगत मीठी लागी अन दिन भगत करह दिन राती घर गी मह बैरागी भगती राते सदा मन निर्मल हर जियो वेख है सदा नाले नानक से भगत हर कै दर साचे अन दिन नाम संभाले मन मुख भगत करह बिन सतगुर बिन सतगुर भगत ना होई राम हमे माया रोग व्यापे मर जन्म है दुख होई राम मर जन्म है दुख होई दूजे पाए परज बिगोई बिन गुर तत ना जानिया भगत विहूणा सब जग भरमिया अंत गया पछतानिया कोट मदे किने पछाणिया हर नामा सच सोई नानक नाम मिले वडियाई दूजे पाए पत खोई भगतां कै कर कारज साचा हर गुण सदा बखाणे राम भगत खजाना आपे दिया काल कंटक मार समाणे राम काल कंटक मार समाणे हर मन भाणे नाम निधान सच पाया सदा अखोट कदे नान खुटे हर दिया सहज सुपाया हर जन ऊचे सद ही ऊचे गुर कै शब्द सुहाया नानक आपे बख्श मलाए जुग जुग सोभा पाया तूही महला तीजा शब्द सच्चे सच सोहिला जिते सच्चे का हुए विचारो राम हमे सब किल विख काटे साच रखिया उर तारे राम सच रखिया उर तारे दुत्तर तारे फिर भवजल तरन ना होई सच्चा सतगुर सच्ची वाणी जिन सच बखालिया सोई साचे गुण गावे सच समावे सच वेखे सब सोई नानक साचा साहिब साची नाई सच निस्तारा हुई साचे सतगुर साच बुझाया पात राखे सच सोई राम सच

निवासा ज्योति ज्योत मलाई सच समाई सच नाए परगासा जिन्नी सच जाता से सच्चे होए अन दिन सच त्याएन नानक सच नाम जिन हिरदय वसिया ना विछड़ दुख पाएन सच्ची बाणी सच्चे गुण गाव है तित कर सुहला होई राम निर्मल गुण साचे तन मन साचा विच साचा पुरख प्रभ सोई राम सब सच वरतै सचो बोलै जो सच करै सो होई जह देखा तह सच पसरिया अवर ना दूजा कोई सच्चे उपजै सच समावै मर जन्मै दूजा होई नानक सब किछे आपे करता आप करावै सोई सच्चे भगत सोह है दरबारी सचो सच वखाणे राम घट अंतरे साची बाणी साचो आप पछाणे राम आप पछाण है तां सच जान है साचे सोजी होई सच्चा शब्द सच्ची है सुबा साचे ही सुख होई साच रते भगत एक रंगी दूजा रंग ना कोई नानक जिस को मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई तू ही महला तीजा जुग चारे तन जे भवै बिन सतगुर सुहाग ना होई राम निश्चल राज सदा हर केरा तिस बिन अवर ना कोई राम तिस बिन अवर ना कोई सदा सच सोई।

सतगुर सेव धन बालणीए हर वर पावह सोई राम सदा होवह सुहागणी फिर मैला वेस ना होई राम फिर मैला वेस ना होई गुरमुख बूझै।

गुरमति घट चानन होआ। प्रभ रव रहिया सब थाई राम, प्रभ रव रहिया सब थाई मन वसाई। पूर्व लिखिया पाया सेज सुखाली मेरे प्रभ पाणी, सच सिंगार बनाया कामन निर्मल हमें मल खोई। गुरमत सच समाई नानक आप मलाई, करते नाम नवें निध पाई।

शब्द रवहो, अनदिन शब्द बजाए राम, अनहद शब्द बजाए हर जियो घर आए, हर गुण गावह नारी, अनदिन भगत करह गुर आगै, सा धन कंत प्यारी, गुर का शब्द वसया घट अंतर, से जन शब्द सुहाई, नानक तिन घर सद ही सोहला, हर कर किरपा घर आई, भगता मन आनंद भया, हर नाम रहे लिवलाए राम, गुरमुखे मन निर्मल हुआ, निर्मल हर

सद जीवन मुक्त भये हर कै नाम लिव लाए राम हर नाम चित लाए गुर मेल मलाए मनुआ रत्ता हर नाले सुखदाता पाया मोह चकाया अन दिन नाम संभाले गुर शब्दे राता सहजे माता नाम मन वसाए नानक तिन घर सद ही सोहला जे सतगुर सेव समाए बिन सतगुर जग भरम भुलाया

हर मन तनो गुरमुख भीजै, राम नाम प्यारे राम, राम नाम प्यारे सब कुल उधारे, राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया, कर अनहद सुरत सुम

प्रभ अत ऊचा क्यों कर मिलिया जाए राम। गुर मेली बहु कृपा तारी हर कै शब्द सुपाए राम। मिल शब्द सुपाए आप गवाए रंग स्यों रलिया माणी। सेज सुखाली जा प्रभ पाया हर हर नाम सुमाणी। नानक सुहागन सावड भागी

हम पापी मुक्त कराया राम, पापी मुक्त कराए आप गुआए, निज कर पाया वासा, विवेक बुद्धि सुख रहन विहानी, गुरमत नाम परगासा, हर हर आनंद भया दिन राती।

वेद धर्म दृढ़ हो पाप तजाया बलराम जियो धर्म दृढ़ हो हर नाम त्याव हो सिमरत नाम दृढ़ाया सतगुर गुरु पूरा आराध हो सब किल विख पाप गवाया सहज आनंद हुआ बड़ भागी।

हर पाया प्रभ अविनाशी, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग सूई संत महला चौथा कर दूजा, गुरमुख हर गुण गाए हृदय रसन रसाए। हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए, मिलिया सहज सुपाए। अन दिन भोग भोगे सुख सोवै, शब्द रह लिवलाए। वड्डे भाग गुर पूरा पाईऐ, अन दिन नाम त्याए। सहजे सहज मिलिया जग जीवन, नानक सुन समाए। संगत संत मलाए, हर सर निर्मल नाए। निर्मल जल नाए मैल गवाए, पए पवित्र शरीरा। दुर्मत मैल गई भ्रम भागा, हम मैं बिनठी पीरा। नदर प्रभु सत संगत पाई, निज कर होआ वासा। हर मंगल रस रसन रसाई, नानक नाम परगासा। अंतर रतन बीचारी, गुरमुख नाम प्यारी। हर नाम प्यारे शब्द निसतारी, अज्ञान अंधेर गवाया। ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानन, कर मंदर सोहाया। तन मन अर्प शिंगार बनाई, हर प्रभ साचे पाया। जो प्रभ कह सोई पर की जय, नानक अंक समाया। हर प्रभ काज रचाया, गुरमुख व्याहन आया। व्याहन आया गुरमुख हर पाया।

हो संत जन हो गुण गाव है गोविंद के रे राम। गुरमुख मिल रही है कर वाज है शब्द कनेरे राम। शब्द कनेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई

पूजा नानक गुरमुख एक पछाण अवर ना जाने दूजा सब मह रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम गुर शब्द रवे रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी कट कट रव्या सोई गुरमत सच पाई सहज समाई तिस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावा जे प्रभ भावा आपे लय मलाए नानक सो प्रभ शब्दे जापै अहनस नाम त्याए एहो जगो दुत्तर मन मुख पार न पाई राम अंतरे हउमै ममता काम क्रोध चतुराई राम अंतर चतुराई थाए ना पाई बिरथा जन्म गवाया जम मग दुख पावे चोटा खावे अंत गया पछताया बिन नावे को बेली नाहीं।

राम सतगुर पाए चलो जीवत्या इव मरिया राम जीवत्या मरिया भौजल तरिया गुरमुख नाम समावै पूरा पुरख पाया बड़ भागी सच नाम लिव लावै मत परगास भई मन मानिया राम नाम वडियाई नानक प्रभ पाया शब्द मलाया ज्योति ज्योत मिलाई सूही महला चौथा कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर संत जनो प्यारा मैं मिलिया मेरी तृष्णा बुझ गई आसे हो मन तन देवा सतगुर है मैं मेले प्रभ गुण तासे तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर साबासे वड भागी हर पाया जन नानक नाम वगासे गुर सज्जन प्यारा मैं मिलिया हर मार्ग पंथ दसाहा कर आवहो चिरी विछुनिया मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा हाँ तुझ बाजो खरी उडीनिया ज्यों जल बिन मीन मराहा वड भागी हर त्याया जन नानक नाम समाहा मन दह दिस चल चल परमिया मन मुख परम भुलाया नित आसा मन चितवै मन तृष्णा भुख लगाया अनता धन धर दबिया फिर बिख भालन गया जन नानक नाम सलाहे तू बिन नावै पच पच मोया गुर सुंदर मोहन पाए करे हर प्रेम बाणी मन मारिया मेरा हिरदय सुध बुद्ध विसर गई मन आसा चिंत वसारिया मैं अंतर वेदन प्रेम की गुर देखत मन साधारिया वड भागी प्रभ आए मिल जन नानक खिन खिन वारिया सूही संत महला चौथा मारे हिस्वे जन हों मैं बिखिया जिन हर प्रभ मिलन ना दितिया दे कंचन वे वन्निया इन हों मैं मार विगुतिया मोह माया वे सब कालखा इन मनमुख मूड सजुतिया जन नानक गुरमुख उबरे गुर शब्दी हों मैं छुटिया बस आने हो वे जन इस मन को मन बासे ज्यों नित पौंदिया दुख रहन वे विहानिया नित आसा आस करेंदिया गुर पाया वे संत जनो मन आस पूरी हर चौधिया जन नानक प्रभ देहो मती छड आसा नित सुख सौंदिया सा तन आसा चित करे राम राज।

हथ गुलाला शब्द चीन गुर मीठा मिथ्या मोहे मगन सी रहया झूठ संग लपटाना नानक दीन सरन कृपा निद राख लाज भगताना सुन बावरे सेव ठाकुर नाथ पुराणा सुन बावरे जो आया तिस जाना निश्चल हब वैसी सुन परदेसी संत संग मिल रही है हर पाई है भागी सुन बैरागी चरण प्रभु गह रही है एहो मन दीजै संक ना कीजै गुरमुख ताज बहु माणा नानक दीन भगत।

प्रवत्याया जिन प्रवत्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई है थियो नमाणा सद कुरबाणा सगला आप मिटाई है ओह धन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पह आप विचाया नानक दीन सरण सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवा हर चरण कमल की टेक सतगुरु दित्ती तुस कै बलराम जीओ हर अमृत भरे भंडार सब किश है घर तिस कै बलराम जीओ बाबुल मेरा वड समरथा करन कारण प्रभहारा जिस सिमरत दुख कोई न लागे भवजल पार उतारा आद जगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा नानक नाम।

रहन आस तुम्हारी, सफल दर्श भेटिया गुरपूरा, नानक सद बलिहारी, संभलिया सच थान मान महत, सच पाया बलराम जियो, सतगुर मिलिया दयाल, गुण अविनाशी गाया बलराम जियो, गुण गोविंद गाओ नित नित,

वजी वधाई मनहु कदे ना विसरै बिनवंत नानक सतगुर दरड़ाया सदा भज जगदीसरै राग सूही संत महला पंजवां घर तीजा।

तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम पेर हम बहरिया राम। तुम वड्डे वड्डे वड ऊचे, हौ इतनी कलहरिया राम। हौ किस नाही एको तू है, आपे आप सुजाना। अमृत दृष्ट निमख प्रभ जीवा, सर्ब रंग रस माना। चरण सरनी दासह दासी, मन मौलै तन हरिया। नानक था

जाको नदर सरम दे मनमुख भूली बहुती राही हाथी माया फंदे ठाकुर पाणी सा गुणवंती तिन्ही सब रंग माना नानक की धार तू है ठाकुर तू नानक का माना हो वारी वन्या कोली वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम हौ बल जाई लख लख लख बरिया जिन भ्रम परदा खोला राम मिटे अंधारे तजे बिकारी ठाकुर सिउ मन माना प्रभ जी पाणी पई निकाणी सफल जन्म परवाना पई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खुला कहो नानक हौ निरपो होई सो प्रभ मेरा ओला। सूही महला पंजवां साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा तिस बिन अवर न जाना राम मात पिता भाई सुत बंदप जी प्राण मन पाणा राम जियो पिंड सब तिस का दिया सर्ब गुणा पर पूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्ब रहे पर पूरे ताकी सरन सर्ब सुख पाए हुए सर्ब कल्याण सदा सदा प्रभ कौ बलिहारे नानक सद कुर्बाना ऐसा गुर वड भागी पाई जित मिले प्रभ जापै राम जन्म जन्म के किलविख उतर है हर संत धूड़ी नित नापै राम हर धूड़ी नाई है प्रभु ते आई है बहुड़ जोन ना आई है गुर चरणी लागे भ्रम पौ भागे मन चिंदिया फल पाई है हर गुण नित गाए नाम ते आए फिर

हर गुण निधि हर संतन कै वासिया ही राम संत चरण गुर सेवा लागी तिन्नी परम पद पाई राम परम पद पाया आप मटाया हर पूरन कृपा धारी सफल जन्म हुआ पौ भागा हर भेटिया एक मरारी जिसका साथ नहीं मेल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिए मिल सतगुर सुख पाया गाओ मंगलो नित हर जनो।

मेरे प्यारे, मुख हर अरादे मेरा राम, हर अरादे जम पंथ साधे, दुख ना व्यापै कोई, जल थल मही अलपूर।

तेरा कोट करण दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए है अबलासी राम सुन सुन एहो मन निर्मल हुवै कटिए काल की फासी राम कटिए जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना हर हर जप जपिए दिन राती लागे सहज ध्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा की जय हर गुण सुनिए है अवनासी करोड़ हस्त तेरी टहल कमावे है चरण चल है प्रभ मार्ग राम भव सागर नाव हर सेवा जो चढ़े तिस तारग राम भव जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे महाबिकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे मन बांचत फल पाए सगले कुदरत कीम अपारग कहो नानक प्रभ कृपा की जय मन सदा चले तेरे मार्ग एहो वर एहा वडियाई एहो तन हुए वडभागा राम एहो रंग एहो रस भोगा हर चरणी मन लागा राम मन लागा चरणे प्रभ की सरणी करण कारण गोपाला सब किस तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकुर दीन दयाला मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा सूही महला पंजवा हर जपे हर मंदर साजिया संत भगत गुण गावे राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सगले पाप तजावे राम हर गुण गाए परम पद पाया प्रभ की उत्तम बाणी सहज कथा प्रभ की आत्मीठी कथी अकथ कहानी भला संजोग मूर्त पल साचा अब चल नीम रखाई जन नानक प्रभ भये दयाला सर्व कला बन आई आनंदा वजह नित वाजे पार ब्रह्म मन बूठा राम गुरमुखे सच करनी सारी बिनसे भ्रम भय झूठा राम अनहद बाणी गुरमुख बखाणी जस सुन सुन मन तन हरिया सर्व सुखा तिस ही बन आए जो प्रभ अपना करिया घर मह नवनिध भरे भंडारा राम नाम रंग लागा नानक जन प्रभ कदे ना विसरै पूर्ण जाके भागा छाया प्रभ शतरपत कीनी सगली तपत बनासी राम दुख पाप का डेरा ढाठा कारज आया रासी राम हर प्रभ फुरमाया मिटी बुलाया साच धर्म पुन फलिया सो प्रभ अपना सदा त्याई सोवत बैसत खलिया गुण निधान सुख सागर स्वामी जल थल महियल सोई।

प्रभु परसे हर राया राम, मेरा मन सुहया मीत साजन सरसे, गुण मंगल हर गाया राम। गुण गाए प्रभु त्याए साचा, सगल इच्छा पाइया गुर चरण लागे सदा जागे, मन वजियां वाधाइया करी नदर स्वामी सुखागामी, हलत पलत सवारिया बिनवंत नानक नित नाम जपिया, जियो पिंड जिन तारिया सूही महला पंजवा, पै सागरु पै सागर तरिया हर हर नाम त्याए राम। बोह थड़ा हर चरण अरादे मिल सतगुर पार लंघाए राम, गुर शब्दी करिए बहुड़ ना मरिए चूकै आवन जाना, जो किश करे सोई भल मानो ता मन सहज समाना, दुख ना भूख ना रोग ना व्यापै सुख सागर सरणी पाए, हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन की चिंत मटाए, संत जना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसगत कीने राम, आपनड़ा मन आगे धरिया सर्बस ठाकुर दीने राम, कर अपनी दासी मिति उदासी हर मंदर थित पाई, अणद बनोद सिमरहु प्रभु साचा विछड़ कबहू ना जाई, सावड़ भागन सदा सुहागन राम नाम गुण चीने, कहो नानक रवह रंग राते प्रेम महारस पीने, अनद बनोद पए नित सकिए मंगल सदा हमारे राम, आप नड़ै प्रभ आप शिंगारी शोभावंती नारे राम, सहज सुभाए पए कृपाला गुण अवगुण ना बीचारिया, कंठ लगाए लिए जने अपने राम नाम उरतारिया, मान मोह मद सगल व्यापी कर कृपा आप निवारी, कहो नानक पै सागर तरिया पूरन काज हमारी, गुण गोपाल गाव हो नित सखी हो सगल मनोरथ पाए राम, सफल जन्म हुआ मिल साधु एक अंकार त्याए राम, जप एक प्रभु अनेक रविया सर्ब मंडल छाया, ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया, जल थल महियल पूर पूरन तिस बिना नहीं जाए, पेख दर्शन नानक बिगसे आप लए मलाए, सूही महला पंजवा अब चल नगर गोविंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया राम, मन इच्छे से ही फल पाए करते आप वसाया राम, करते आप वसाया सर्ब सुख पाया पुत भाई सिख बिगासे, गुण गावे है पूर्ण परमेश्वर कारज आया रासे, प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया, कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन एहो थान सोहाया, कर मंदर हट नाले सोहे जिस विच नाम निवासी राम, संत भगत हर

नामते आए सगल समग्री पूरन होई मन इच्छे फल पाए संत सज्जन सुख मान है रलिया दुख दर्द भ्रम नास्ती शब्द सवारे सतगुर पूरे नानक सद बल जासी दात खसम की पूरी होई नित नित चढ़े सवाई राम पार ब्रह्म खसमाना किया जिस दी वड्डी वड्याई राम आद जगाद भगतन का राखा सो प्रभ भया दयाला जी जंत सब सुखी वसाए प्रभ आपे कर प्रतपाला दह दिस पूर रहया जस स्वामी कीमत कहन ना जाई कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन अब चल नीम रखाई ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिए राम अनहद चोज भगत पाव पंजन अनहद वाजे तुनिए राम अनहद चुनकारे तत बीचारे संत गोष्ठ नित होवे हर नाम अराध है मैल सब काट है किलविक सगले खोवे तह जन्म ना मरना आवन जाना बहुड़ ना पाईए जुनी है नानक गुर परमेश्वर पाया जिस पर

आवि काल सुहावा विति अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पया जागे अंतर लाथे सगल विसूरे पूर्ण पुरखा चुत अबनासी जस वेद पराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम त्याया नवनिध सिद्ध रिद दीने करते तोट न आवे काई राम खात खर्चत बिलशत सुख पाया करते की दात सवाई राम दात सवाई न खुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिगन सगले उठ नाठे दुख ना नेड़े आया शांत सहज आनंद कनेरे बिनसी भूख सबाई नानक गुण गावह स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन्ही किया मानस क्या वेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावह सदा करह जयकारा राम गुण गाए गोविंद आनंद उपजे साध संगत संग बनी जिन उद्म किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी हथ सत तीरथ पुन किरिया महानिर्मल चारा पतत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द अधारा।

ज्ञान की जय बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाय अन दिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजै दिनवंत नानक इच्छ पुन्नी पेख दर्शन जीजै राग सूही महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेट

मैं अवगण को ना चितारी पतत पावन हर बिरद सदाई एक तिल नहीं भन्ने काली घट घट वासी सर्ब नवासी नेरा ही ते नेरा नानक दास सदा सरनागत हर अमृत सज्जन मेरा हौ बिस्म भई जी हर दर्शन देख अपारा मेरा सुंदर स्वामी जी हौ चरण कमल पग शारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा तिस जे वड़े अवर ना कोई आद अंत मद प्रभ रविया जल कल मही अल सोई चरण कमल जप सागर तरिया पवज

प्राण अधारु गुर सतगुर कहे आजी साचा अगम बीचारु मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाथे सहज सुख आनंद कनेरे हौ मैं बिनठी गाठे सब कै मद सब हूं ते बाहर राग दुख ते न्यारू नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मने सधारु मैं खोजत खोजत जी हर निश्चल सो कर पाया सब आत्रुव डिथे जियो ता चरण कमल चित लाया प्रभ अवनासी हौ तिसकी दासी मरै न आवै जाए धर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छ पुजाए श्रुत सिमरत गुण गावह करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक सरन कृपा निध स्वामी वड भागी हर हर गाया।

मुंद सहावी सोहनी जिस कर सहज पतार नानक सा धन रावी है रावे रावण हार पौड़ी मोह कूड़ कटंब है मनमुख मुग्ध रत्ता हउमै मेरा कर मोए किस साथ ना लिता सिरे उपर जमकाल ना सुजई दूजे परमिता फिर वेला हाथ ना आवई जमकाल वस किता जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता सलोक महला तीजा सतियां ए ना आखियन जो मढ़िया लग जलन नानक सतियां जानियन जे बिरहे चोट मरन महला तीजा पीसो सतियां जानियन सील संतोख रहन सेवन साई अपना नित उठ संभालन।

हुआ नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी हम मैं माहर मन निर्मला हर नाम पुरतारी कोठे मंडप वाड़िया लग पए गावारी जिनकी ये तिसह ना जाननी मन मुख गोबारी जिस बजाए सो बुझसी सच्या क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा कामन तो शिंगार कर जा पहला कंत मनाए मत से जय कंत ना आवई इवें बिरथा जाए कामन फिर मन मानिया तौ बनिया शिंगार किया तौ प्रवान है जा सहो धरे प्यार पाओ शिंगार तंबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत कहो तौ नानक भोग करे। महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले धन किया शिंगार सीजै कंत ना आयो इवें भया विकार। महला तीजा धन पेरे एह ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति धन पिर कही है सोए पौड़ी पै बिन भगत ना होवी नाम ना लगे प्यार सतगुर मिले पौ उपजे पै पाए रंग सवार तन मन रत्ता रंग सियो हम मैं तृष्णा मार मन तन निर्मल अत सोहना भेटिया कृष्ण मरार पौ पाओ सब तिसदा सो सच वरतै संसार। श्लोक महला पहला वाह कसम तू वाह जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुंद सर।

पुरख सजान गुर प्रसादी सेविया सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान।

निशान नानक नाम लाहा प्रवान घर आए बजी वधाई सच नाम की मिली वडियाई महला पहला राती होवन कालिया सोपेदा सेवन देहु बग्गा तपै घना कालिया काले वन अंधे अकली बाहरे

हर सच्चै आपी एक दूजे भाई खुआयन होमै विच व्यापी यो मानस जन्म दलंब सा मनमुख संतापी जिस आप बुझाए सो बुझसी जिस सतगुर थापे सब जग खेल।

आस अज्ञान मटंत वेद पाठ संसार की कार पढ़ पढ़ पंडित करह विचार बिन बूझे सब होए खुआर नानक गुरमुख उत्त

मत दिन पी जाए, भवर गए बग बैठे आए रहाव। काकै करवै रहे ना पानी, हंस चलिया काया कुमलानी। कुआर कन्या जैसे करत शिंगारा, क्यों रलिया मन बाज पतारा। काग उडावत भुजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी। सूही कबीर जियो हमल सरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना। क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सताप दीवान बुलाया। चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फरमान दरगाह का आया रहाव। करो अरदास गाम किश बाकी, लेओ नबेर आज की राती। किस पी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गजारो। साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सो जन पुरख सुभागा। ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले। जागत सोया जन्म गवाया, माल धन जोरिया भया पराया। कहो कबीर तेई नर भूले, खसम बसार माटी संग रूले। सूही कबीर जियो ललित, थाके नैन श्रवण सुन थाके। थाकी सुंदर काया जरा हाक दी, सब मत थाकी। एक ना थाक समाया।

देवहु जब लग घट मह सासा जे घट जाए ता भाउ ना जासी हर के चरण निवासा जिस को शब्द बसावे अंतर चूकै तिसह प्यासा हुक्मै बूझै चौपड़ खेलै मन जिन ताले पासा जो जन जान भजह अवगत कहो तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबहु ना हारह ताल जो जानह पासा सूही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदा।

सह की सार सुहागण जान ताज अभमान सुख रलिया मान तन मन दे न अंतर राख अवरा देख न सुने अपाख सो कत जान पीर पराई जां कै अंतर दर्द ना पाई राहाउ दुखी दुहागण दोए पाख हीनी जिन नाहा नरन

ना पाया। कह रवदास सरन प्रभ तेरी, ज्यों जान हो त्यों कर गत मेरी। सूही जो दिन आवह सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना। रहाओ जिन जियो दिया, सो रिजक अंबरावे। सब घट भीतर हाट चलावे।

एक करी फुन रहन ना होई। इह तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी। रहाव भाई बंद कटंब सहेरा, वे पी लागे काड सवेरा। घर की नार उरह तन लागी, ओहो तो भूत भूत कर भागी। कह रविदास सबे जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सूही बाणी शेख फरीद जी की। तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरो, बावल हुई सो सहो लोरो। तै सह मन मह किया रोस, मुझे अवगन सह नाही दोस। तै साहिब की मैं सार ना जानी, जोबन खोए पाछे पछतानी। रहाओ काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हों बिरह जाली। बिरह बहून कतह सुख पाए।

ललत बेड़ा बंद ना सक्यो बंधन की वेला पर सरवर जब उछले तब तरन दुहेला हाथ ना लाए कुसुम्बड़े जल जासी टोला।

कहाउ अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करहु हमारी जल थल मही अल भरपुर लीना कट कट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदर छावा तेरे तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे जी जंत सब सरन तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासी

कर कृपा मोहि मार्ग पावहु साध संगत कै अंचल लावहु क्यों तरिये बिख्या संसार सतगुरु बोहित पावे पार रहाउ पवन किलारी माया दे हर के भगत सदा थिर से हरख सोग ते रह निरारा सिर ऊपर आप गुरु रखवारा पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा हम पचे दीपक देख पतंगा सगल सिंगार करे नहीं पावे जा हुए कृपाल ता गुरु मलावे हों फिरो उदासी मैं एक रतन दसाया निर्मूलक हीरा मिले ना उपाया हर का मंदिर तिस महलाल गुर खोलिया पड़ता देख पई निहाल जिन चा

पंजवा सर्व कल्याण किए गुरुदेव सेवक अपनी लायो सेव विघ्न ना लागे जप अलख अपेव तरत पनीत भई गुण गाय दुर्त गया हर नाम त्याय रहाव सबनी थाई रव्या आप आद जगाद जाका वड प्रताप गुर प्रसाद ना हुए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न हुए सब थाई बूठे सब सुख पाए सतगुर तूठे पार ब्रह्म प्रभ भय रखवाली जितै कितै दिसह नाली नानक दास खसम प्रतपाली बिलावल महला पंजवां सुख निधान प्रीतम प्रभ मेरे अगणत गुण।

गया पूरे कर्म कमावा। नानक की बेनती स्वामी तेरे जन देखन पावा। वड भागी से कांडी है प्यारी संत संगत जिन्ना वासु। अमृत नाम अराधी है निर्मल मन हुए परगासु। जन्म मरण दुख काटिय प्यारी चूके जम की कानी। तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पानी। ऊच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। गावते उधर है सुनते उधर है बिनसे है पाप कनेरे। पशु परेत मुग्ध कौ तारे पाहन पार उतारे। नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारे। बलावल महला पंजवा बिखे बन फीका त्यागरी सखिए। नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली। सुखी ना होवत जियो मान महत ना सकते ही काई। साधा दासी थियो नानक से दर सोभावंते। जो प्रभ अपने कियो हर चंदौरी चित भ्रम सखिए। मृग तृष्णा द्रुम छाया चंचल संग ना चालती सखिए। अंत तज जावत माया रस भोगन अत रूप रस माते। इन संग सूख ना पाया धन धन हर साध जन सखिए। नानक जिन्नी नाम ते आया जाए बसो वड भागनी सखिए। संतां संग समाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापै। चरण कमल लिव लाइए तह जन्म ना मरण ना आवन जाना। निश्चल सरनी पाइए प्रेम बशोहो ना मोह ब्यापै। नानक हर एक त्याईए दृष्ट धार मन बेदिया प्यारी। रतड़े सहज सुपाए सेज सुहावी संग मिल प्रीतम। आनंद मंगल गुण गाए सखी सहेली राम रंग राती। मन तन इच पजाए नानक अचरज अचरज स्यों मिलिया। कहना कछु ना जाए राग बलावल महला पंजवा कर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक रूप सगल उपासारा। आपे बंज आप व्योहारा ऐसो ज्ञान बिरलोई पाई। जत जत जाइए तत

आप ही जुगता, नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। बलावल महला पंजवा, आप उपावन आप सधरना, आप करावन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभव आप ही जरना, रहाउ आप ही मस्त आप ही बोलना, आप ही अशालना जाई चलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप अलिपना, आपे अवगत आप संग रचना। कहो नानक प्रभ के सब जचना, बलावल महला पंजवा, भूले मार्ग जिन्ह बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारी, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारी, रहाउ काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुन मुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़त संसारा, नानक बाहां पकड़ सतगुर निस्तारा। बलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पौ सब अपना, कमल सो मत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मांगन, तुम पेखत सोभा मेरे आंगन। रहाउ अनक जुगत कर बहुत बिचारों, साध संग इस मन है उदारों, मत बुद्ध सुत नाही चतराई, ता मिलिए जा लई मलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया। कहो नानक सफल सो आया, बलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ न माया, साध संग सब दुख मिटा।

बहु तपत व्यापिया शीतल भये हर हर जस जापिया कोट जतन संतोख ना पाया मन त्रिपताना।

मिले निस्तरीय बिलावल महला पंजवा गुर का शब्द हृदय महचीना सगल मनोरथ पूर्ण आसीना संत जना का मुख उज्जल कीना कर कृपा अपना।

तुम ही जानो अपनी पूजा, आपो हो कछु ना होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण नान प्रभ तिन ही पाया। बलावल महला पंजवा, मात गर्भ मह हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिख्या फल चाखिया। पज गोविंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संघारे मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल रहाव। तन मन धन अपना कर थापिया, करन हार एक निमख ना जापिया। महा मोह अंध कूप परिया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया। वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बलावल महला पंजवा, मात पिता सुत बंधप पाई, नानक होवा पार ब्रह्म सहाई। सुख सहज आनंद घने, गुरपूरा पूरी जाकी बाणी। अनक गुणा जाके जाहि ना गणे रहाव। सगल सरंजाम करे प्रभ आपी, भय मनोरथ सो प्रभ जापी। अर्थ धर्म काम मोख का दाता, पूरी भई सिमर सिमर बेधाता। साध संग नानक रंग माणिया, कर आया पूरे गुर आणिया। बलावल महला पंजवा, सर्व निधान पूर्ण गुरदेव रहाव। हर हर नाम जपत नर जीवे, मर खवार साख नर थीवे। राम नाम हुआ रखवारा, चख मारो साकत बेचारा। निंदा कर कर पचह कनेरे, मृतक फास गले सिर पैरी। कहो नानक जपह जन नाम, ताके निकट न आवे जाम। राग बलावल महला पंजवा, कर चौथा दुपदी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कवन संयोग मिलो प्रभ अपने। पल पल निमख सदा हर जपने, चरण कमल प्रभ के नित ध्यावो। कमन सो मत जित प्रीतम पावो रहाओ। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, हर नानक बिसर न काहू बेरे। बलावल महला पंजवा, चरण कमल प्रभ हृदय त्याय। रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काटिया दीनो दान। सफल जन्म जीवन परवान रहाव। अकथ कथा अमृत प्रभ बाणी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बलावल महला पंजवा, शांत पाई गुर सतगुर पूरे। सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाव। ताप पाप संताप बनासे, हर सिमरत किल विख सब नासे। आनंद करहु मिल सुंदर नारी, गुर नानक मेरी पैज सुवारी। बलावल महला पंजवा, ममता मोह त्रोह मद माता। बंधन बांधिया अत बिकराल, दिन दिन सिजत बकार करत औद। फाही फाता जम कै जाल, तेरी शरण प्रभ दीन दयाला। महा बिखम सागर अत भारी, उदरहो साधु संगर वाला रहाव। प्रभ सुखदाते समरथ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल। भ्रम के बंधन काटो परमेश्वर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बलावल महला पंजवा, सगल आनंद किया परमेश्वर। अपना बिरद सम्हारिया, साध जना हुए कृपाला। बिगसे सब परवारिया, कारज सतगुर आप सुवारिया। वड्डी आर जा हर गोबिंद की, सुख मंगल कल्याण बिचारिया रहाव। वण तिण त्रे भवन हरिया होए, सगले जी साधारिया। मन इच्छे नानक फल पाए, पूर्ण इच्छ पुजारिया। बलावल महला पंजवा, जिस ऊपर होवत दयाल। हर सिमरत काटै सो काल रहाव। साध संग भजियै गोपाल, गुण गावत टूटै जम जाल। आपे सतगुर आपे प्रतपाल,
नानक जाचै साधरवाल बलावल महला पंजवां मन मैं सिंचहो हर हर नाम अन दिन कीर्तन हर गुण गाम ऐसी प्रीत करो मन मेरे आठ पैर प्रभ जानो नेरे रहाओ कहो नानक जाके निर्मल भाग हर चरणी ताका मन लाग बलावल महला पंजवां रोग गया प्रभ आप गवाया नींद पई सुख सहज घर आया रहाओ राज राज भोजन खावो मेरे भाई अमृत नाम रिद माही त्याई नानक गुरपुरे।

गुर अमर कराया, सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला। कीमत कही ना जाइए क्या कह मुख बोला, सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण निध तेरी बाणी। पावो तूर तेरे दास की नानक कुर्बानी। बलावल महला पंजवा, रख हो अपनी सरन प्रभ मोहे कृपा तारी। सेवा कछु ना जानू नीच मूरखारी, मान करो तुदे उपरे मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारी। रहाओ हम अवगन करहें असंख नीत तुम निर्गुण दातारे। दासी संगत प्रभु त्याग हे कर्म हमारी। तुम देव हो सब किश दया तार हम अकिरत किनारे। लाग परे तेरे दान स्यों नह चित खसमारे। तुझ ते बाहर किश नहीं भव काटन हारे। कहो नानक सरन दयाल गुर लेहो मुगद उधारे। बलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याइए। जित सेवै सुख होए कना मन सोई गाइए। कहिए काए प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी। सब अवगुण हमा रहाओ ज्यों तुम राख हो त्यों रहा। अवर नहीं चारा नी धरिया धर तेरिया एक नाम आधारा। जो तुम करहो सोई भला मन लेता मुक्ता। सगल समगरी तेरिया सब तेरी जुगता। चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावे। हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे। बलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे पशुआ नहीं बुझे। बाद साद अहंकार में है मरना नहीं सूझे। सतगुर से वो अपना काहे फिर हो अपागे। देख कसुम्बा रंगुला काहे भूल लागे। रहाओ कर कर पाप दर्ब किया वर्तन कह ताई। माटी स्यो माटी रली नांगा उठ जाई। जा कह किए श्रम करे ते बैर विरोधी। अंतकाल भज जाहेंगे काहे जलो क्रोधी। दास रेन सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा। कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना। बलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्ब कीता। अंदले त्रे पवन सूजिया गुर पेट पनीता। महमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पे चीता। रहाओ ऐसी भगत गोविंद की कीत हस्ती जीता। जो जो कीनो अपनो तिस अपै दान दीता। सिंह बलाई होए गयो त्रिण मेर दखीता। श्रम करते दम आड़ को ते गनी तनीता।

सर मन आनंद होत चितवत कृपाल रहाव। जगत उधारन साध प्रभ तिन लागो पाल, मोको दीजे दान प्रभ संतन पगराल। उकत सियानप कछ नहीं नाही कछ काल, परम पै राखो मोहते काट हो जमजाल। बिनो करो करना पते पिता प्रतपाल, गुण गावो तेरे साध संग नानक सुख साल। लावल

जमदूत छड जाए तुमरी कृपा ते छूती है बिनसै अहमेव सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव रहाउ खोजत खोजत खोजिया नामै बिनकूर जीवन सुख सब साध संग प्रभ मन साकूर जित जित लाव हो तित तित लग है स्यानप सब जाली जात कात तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली सब किश तुम ते मांगना बड़ भागी पाए नानक की अरदास प्रभ जीवा गुन गाए बलावन महला पंजवा साध संगत कै बास बै कल मल सब नसना प्रभ सेती रंग रातिया ताते गर्भ ना ग्रसना नाम कहत गोबिंद का सूची पई रसना मन तन निर्मल हुई है गुर का जप जपना रहा हर रस चाखत त्रापिया मन रस लै हसना बुद्ध प्रगास प्रगट पई उल्ट कमल बिगसना शीतल शांत संतोख होए सब बूझी तृष्णा दह दिस धावत मिट गए निर्मल थान बसना राखन हारे राखिया पई भ्रम पसना नाम निधान नानक सुखी एक साध दर्शना बलावल महला पंजवा पानी पखा पीस दास कै तब होहे निहाल राज मिलक सिकदारिया अग्नि मह जाल संत जना का शोहरा इस चरणी लाग माया तारी शत्रपत तिन छोड़ो त्याग रहाउ संतन का दाना रूखा सो सर्ब निदान ग्रह साकत शक्ति ही प्रकार ते बिखु समान भगत जना का लूघरा ओड नग्न न होई साकत सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई साकत स्यों मुख जोरे है अद विचो

बिनो बलावो पाम मनोवा आप त्याग संत संग समाव सास सास नह विसरे अनकत है ना तामो सफल दर्शन गुर पेटी है मान मोह मटावो सत संतोख दया धर्म सिंगार बनावो सफल सुहागन नानका अपने प्रभ पावो बलावल महला पंजवा अटल बचन साधु जना सब मैं प्रगटाया जिस जन होवा साध संग तिस भेटै हर राया एह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया अनक बातां सब कर रहे गुर घर लै आया रहाउ शरण परे की राखता नाही सहसाया कर्म भूम हर नाम बोए अवसर दुलभाया अंतर जामी आप प्रभ सब करे कराया पतत पनीत घने करे ठाकुर बिरदाया मत भूलो मनुख जन माया परमाया नानक तिस पत राखसी जो प्रभ पहराया बलावल महला पंजवा माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे अनक सिदर मन मह ढके निर्मल दृष्टि क्यों बिसरे प्रभ मने ते जिसके गुण ए प्रभ तज रचे जे आनस्यो सोरलिया खे रहाउ सिमरहो सिमरहो सास सास मत बिलम करे छोड़ पर पंच प्रभ स्यो रचो तज कूड़े ने जिन अनक एक बहुरंग किए है होसीए कर सेवा तिस पार ब्रह्म गुरते मत ले ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरने दास दास को दासरा नानक कर ले बलावल महला पंजवा एक टेक गोविंद की त्यागी अन्यास सब ऊपर समरथ प्रभ पूरन गुणतास जन का नाम आधार है प्रभ सरणी पाहे

सास सास सुमारे करनहार जो कर रहे आ साई वडे आई गुरपूरे अपदेसिया सुख खसमर जाई चिंत अंदेसा गणत ताज जन हुक्म पछाता नह बिन सह नह छोड़ जाए नानक रंग राता। बिलावल महला पंजवा महा तप्त ते भई शांत परसत पाप नाठी हंड कूप मैं गलत थे काढ़े दे हाथे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन भेटत होवत सुखी जी दान देन रहाओ। परा पूर्व ला लिखिया मिलिया अब आए बस्त संग हर साधकै।

मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करन कारण समरथ प्रभ हरे अगम अपार बलावल महला पंजवा सोई मलीन दीन हीन जिस प्रभ बिसराना करने हार ना बूझे आप गने बिगाना दुख तदे जद विसरे सुख प्रभ चेते आई संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए रहाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खिन मह थापे कीमत कही ना जाइए ठाकुर प्रतापे पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुपने का सुपना भया संग चलिया कमा।

ना जापै हर हर हर हर जापिए अंतर लिव लाई के लिवक उतर है सुध हुए साधु सरनाई सुनत जपत हर नाम जस ताकी दूर बलाई महामंत्र नानक कथै हर के गुण गाई। बलावल महला पंजवा पै ते उपजै भगत प्रभ अंतर होए शांत नाम जपत गोविंद का बिनसै भ्रम भ्रांत गुरपूरा जिस पेटिया ता कै सुख परवेश मन की मत त्यागी है सुनिए उपदेश रहाउ सिमरत सिमरत सिमरिए सो पुरख दातार मन ते कबहु ना विसरै सो पुरख अपार चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरदेव जाको कृपा करो प्रभ ताको लावो सेव निद निदान अमृत पिया मन तन आनंद नानक कबो ना विसरै प्रभ परमानंद। बलावल महला पंजवा कृष्ण बुझी ममता गई नाठे भय परमा थित पाई आनंद भया गुर कीने धर्मा गुरपूरा आराध्या बिनसी मेरी पीर तन मन सब शीतल भया पाया सुख बीर रहाउ सोमत हर जप जागया देखिया बिस्माद पी अमृत तृपतासिया ताका अचरज स्वाद आप मुक्त संगी तरे कुल कटंब उदारे सफल सेवा गुरदेव की निर्मल दरबारे नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा पई दास अपना कीन। बलावल महला पंजवा हर भगता का आसरा अन नाही ठाऊ तान दे बाण परवार तन प्रभ तेरा नाऊ कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसिए रहाव संता एक त्यामना दूसर को नाहे एक से आगे बेनती रव्या सब थाई कथा परातन इयों सुनी भगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड किए जान लिए मानी सत बचन नानक कह प्रगट सब माही प्रभ के सेवक सरन प्रभ तिनको भओ नाही। बलावल महला पंजवा बंधन काटै सो प्रभु जा कै कल हाथ अवर कर्म नहीं छूती है राखो हर नाथ तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए संसार ते राखै गोपाल रहाओ आसा परम बकार मोह इन मह लोभाना झूठ समगरी मन वसी पार ब्रह्म ना जाना परम ज्योत पूर्ण पुरख सब

नानक परिया साध संग हर हर गुण गाव। बलावल महला पंजवां। कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महा मोहनी मोहया नरक की रीत। मन खुटहर तेरा नहीं बसास, तू महा उदमादा। खर का पैखर तौ छुट्टै जो ऊपर लादा रहाउ। जप तप संयम तुम खंडे जम के दुख डांड, सिमर है नाही जोन दुख निरलजे पांड। हर संग सहाई महामीत तिस स्यो तेरा भेद, बीदा पंच बटवारे उपजियो महाखेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना, तन तन सरबसे अपना प्रभ जन को दीना। बलावल महला पंजवां। उदम करत आनंद भया सिमरत सुख सार, जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म अराध ते मुख अमृत पीवा। रहाउ जी जंत सब सुख बसे सब कै मन लोच, पर उपकार नित चितव ते नाही कछ पोच। धन सो थान बसंत धन जह जपिय नाम, कथा कीर्तन हर अत कन।

पंजवा खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बन थान अशल अशेद अभेद प्रभ ऐसे भगवान कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग जागण ते सुपना भला बसिए प्रभ संग रहा वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास रूप ना रेख ना पंच तत् ठाकुर अविनाश ओह स्वरूप संतन कह विरले जोगीसर कर कृपा जा कहो मिले तन तन ते ईश्वर सो अंतर सो बाहरे बिनसे तह परमा नानक तिस प्रभ भेटिया जाके पूर्ण कर्मा बलावल महला पंजवा जी जंत सो प्रसन्न भय देख प्रभ परताप करज उतारिया सतगुरु करिया हरियाप खात खर्चत निबहत रह गुर शब्द अखू

धर्म अर्थ अर काम मूख देते नहीं बार, भगत अराध है एक रंग गोविंद गोपाल। राम नाम धन संचया जा का नहीं सुमार, शरण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वड्याई। नानक अंत ना पाई है बेअंत गुसाई, बलावल महला पंजवा। सिमर सिमर पूरन प्रभु कार्य पय रास, करतारपुर करता वसै संतन के पास। रहाउ बिघन न को लागता गुर पै अरदास, रखवाला गोबिंद राए भगतन की रास। तोट न आवै कदे मूल पूर्ण भंडार, चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगम अपार। बस्त कमावत सब सुखी किसी ऊन न दिसै, संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसै। जय जयकार सबै करहै सच थान सुहाया, जप नानक नाम।

प्रभ राखता भगतन की यान। जो जो चितव है साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरनारबिन जन प्रभ के प्राण। सहज सुपाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप। प्रभ शरणागत जन परे ता का सद प्रताप। राखनहार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव। राम राज राम दासपुर कीने गुरदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याई है किस बिघन ना लागे। नानक नाम सलाही है भय दुश्मन भागे। बलावल महला पंजवा मन तन प्रभ आराधी है मिल साध समागे। उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे। राम नाम जो जन जपे अन दिन सद जागे। तंत मंत नह जो हुई तित चाख ना लागे रहाओ। काम क्रोध मद मान मोह बिनसे अनरागे। आनंद मगन रस राम रंग नानक सरनागे। बलावल महला पंजवा जी जुगत वस प्रभु कह जो कह सो करना। पये प्रसन्न गोपाल राय पहु किश नहीं करना। दुख ना लागे कदे तुद पार ब्रह्म चितारे। जम कंकर नेड़ ना आवे गुर सिख प्यारे रहाओ। कर्ण कारण समरथ है किस बिन नहीं होर। नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बलावल महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ अपना नाठा दुख ठाओ। विश्राम पाए मिल साध संग ताते बहुड़ ना ताओ। बलिहारी गुरे अपने चरणन बल जाओ। आनंद सुख मंगल बने देखत गुण गाओ रहाओ। कथा कीर्तन राग नाद धुन एहो बनियो सुवाओ। नानक प्रभ सो प्रसन्न पहे बाँचत फल पाओ। बलावल महला पंजवा दास तेरे की बेनती हृदय कर परगास। तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दुखन को नास। चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास। कीर्तन नाम सिमरत रहूं जब लग घट सास रहाओ। मात पिता बंदब तू है तू सर्ब निवास। नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास। बलावल महला पंजवा सर्ब सिद्ध हर गाई है सब भला मनाव है। साध साध मुख ते कह सुन दास मलाव है। सुख सहज कल्याण रस पूरे गुर कीन। जी सगल दयाल भये हर हर नाम चीन रहाओ। पूर रहो सर्बतर मैं प्रभ गुणी गहीर। नानक भगत आनंद मैं पेख प्रभ की तीर। बलावल महला पंजवा अरदास सुनी दातार प्रभ होए कृपाल। राख लिया अपना सेव को मुख निंदक शार। तुझे ना जो है को मीत जन तू गुर का दास। पार ब्रह्म तू राखिया दे अपने हाथ रहाओ। जीयन का दाता एक है बिया नहीं होर। नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बलावल महला पंजवा मीत हमारे साजना राखे गोविंद। निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभ किए भेटे गुरुदेव। जय जय कार जगत में सफल जाकी सेव। ऊंच अपार अगंत हर सब जी जिस हाथ। नानक प्रभ शरणागति जात कत मेरे साथ।
ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਬਤਾਇਆ ਟੂਟੇ ਜਮ ਜਾਲ। ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸੰਸਾ ਮਿਟਿਆ, ਗਾਵਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। ਸਹਿਜ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ। ਰਹਾਉ ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਭਏ, ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜਾ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਸਫਲ ਥਾਨ। ਪੂਰਨ ਭਏ ਕਾਮ, ਭਉ ਨਾਥਾ ਭ੍ਰਮ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਰਵਿਆ ਨਿਤ ਰਾਮ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸਤ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਬਿਸਰਾਮ, ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ। ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਾਉ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ। ਫਿਰਤੇ ਪਹਿ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਰਨਾਗਤੀ। ਘਟ ਘਟ ਸਭ ਜਾਨ, ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ ਆਪ ਪ੍ਰਭ, ਉਪਜਿਆ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ। ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਚਰਜ ਰੂਪ, ਹਰ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਰਾਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਹਮ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਜੋ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਰਹਾਉ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਰ ਮਰ ਜਨਮੇ ਜਿਨ ਬਿਸਰਿਆ, ਜੀਵਨ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਸੇਵਿਆ, ਅਨ ਦਿਨ ਰੰਗ ਰਾਤਾ।

पार ब्रह्म सरनाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पये सहाई बलावल महला पंजवां अपने बाल के आप रखियन पार ब्रह्म गुरुदेव सुख शांत सहज आनंद पये पूर्ण पई सेव रहाओ भगत जना की बेनती सुनी प्रभे आप रोग मटाए जिवालियन जा का वड प्रताप दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तारी मन बाचत फल दितियन नानक बलिहारी।

दाती मिल संगत हर गुण गाए रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्श रंग लाए हो कृपाल दीन दुख भंजन मोहे चरण हृदय वसाए सबहू तले तले सब ऊपर ए

पूर रही दिन अर रात रहाउ, कर कृपा अपने प्रभ कीने, नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के, काम क्रोध इस तन पे जात। तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन, अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी, कर कृपा संत संग मलात। बलावल महला पंजवा, राख लिए अपने जन आप। कर कृपा हर हर नाम दीनो, बिनस गए सब सोग संताप। रहाव गुण गोविंद गाव हो सब हर जन, राग रत्न रसना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवरी, राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे सरन सुख दाती,

अपर अपारा, एक बस तीरन एक संपूर्ण, एक है प्राण अधारा, निर्मल निर्मल सूचा सूचो, सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊचो ऊचा। बिलावल महला पंजवा, बिन हर काम न आवत हे, जां स्यो राच माच तुम लागे, ओहो मोहनी महावत हे रहाओ, कनक कामनी सेज सोहनी, छोड़ खिनह मैं जावत हे, उर्ज रहे इंद्री रास प्रेरियो।

नाम जरा मरा कछु दुख न व्यापै आज्ञा दरगाह पूर्ण काम रहाउ आप त्याग परियै नित सरनी गुर ते पाईऐ एहो निदान जन्म मरण की कटियै फांसी साची।

पंजवा अच्युत पूजा जोग गोपाल मन तन अर्प रखो हर आगै सर्व जिया का है प्रतपाल रहाउ सरन समरथ अकथ सुख दाता कृपा सिंध बड़ो दयाल कंठ लाए राख है अपने को तिसनो लगे ना ताती बाल दामोदर दयाल स्वामी सर्वस संत जना धन माल नानक जाचक दर्स प्रभ मांगे संत जना की मिले रवाल बलावल महला पंजवा सिमरत नाम कोट जतन पए साध संग मिल हर गुण गाए जम दूतन को त्रास अहे रहाओ जेते पुनः चरण से कीने मन तन प्रभ के चरण गहे आवन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपौ होए भजो जगदीसै इहो पदार्थ वड भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रभ दाते निर्मल जस नानक दास कहे बलावल महला पंजवा सुलही के नारायण राख सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे सुलही हुए मुआ ना पाक रहाऊ काड कुठार कसम सिर काटिया इनमें हुए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचिया जिन रचिया तिन दीना ताक पुत्र मीत तन किशु ना रहो सो छोड़ गया सब पाई साक कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी जिन जन का कीनो पूर्ण वाक बलावल महला पंजवा पूरे गुर की पूरी सेवा आपे आप वरतै स्वामी कार्ज रास किया गुरुदेव रहाउ आद मद प्रभ अंत स्वामी अपना थाट बनायो आप।

हस्त प्रभ दीने जगत उधार नव खंड प्रताप दुख बिन से सुख अंध प्रवेशा त्रिशन बुझे मन तन सच त्राप नाथ को नाथ सरन समरथा सगल श्रेष्ठ को माई बाप भगत वचल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक अलाप बलावल महला पंजवा जिसते उपजिया तह पछान पार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल खेम हुए कल्याण रहाउ गुरपुरा पेट्यो बड़ भागी अंतर जामी सुगड़ सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड़ समरथ नमाणिया को मान भ्रम पै बिन सगए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास आराध नानक सदा सदा जाइए कुर्बान बलावल महला पंजवा दोवे थाम रखे गुरसूरे हलत पलत पार ब्रह्म सवारी कार्ज हुए सगले पूरे रहाओ हर हर नाम।

अनक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता घस खीन खया मेरी मेरी कर कर मूठो पाप करत नह परी दया महाविकार घोर दुख सागर जिसमें प्राणी गलत पया सरन परे ना।

राखी पै भंजन ऊपर करते मान भई मित्राई मिटी बुराई दुष्ट दूत हर काढे शान सुख सहज आनंद कनेरे नानक जीवै हर गुण है बखान बलावल महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ भये कृपाल कार्य सगल सवारे सतगुर जप जप साधु भये निहाल रहाउ अंगीकार किया प्रभ अपने दुखी सगले भये रवाल कंठ लाए राखे जने अपने उधर लिए लाए अपने पाल सही सलामत मिल घर आए।

भेद बनी रहाओ, तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे, ऐसी माधो खिंच तनी, दिन सरैन मन माही बस्त है, तू कर कृपा प्रभे अपनी, बल बल जाओ श्याम सुंदर को, कथ कथा जा की बात सुनी, जन नानक दासन दास कहियत है।

जानचार राजमुख माथे लागी आशा पूर्ण अनंत तरंगा जन पार ब्रह्म जाकी निर्मल महिमा जन के चरण तीर्थ कोट गंगा जन की धूर कियो मज्जन नानक जन्म जन्म के हरे कलंगा बिलावल महला पंजवां ज्यो भावै त्यो मोहे प्रतपाल पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर हम बारक तुम पिता कृपाल रहाओ मोहे निर्गुण गुण नाही कोई पहुँच ना साको तुमरी काल तुमरी गात मित तुम ही जानो जियो पिंड सब तुमरो माल अंतर जामी पुरख स्वामी अनबोलत ही जानो हाल तन मन शीतल होए हमारू नानक प्रभ जियो नजर निहाल बिलावल महला पंजवां राख सदा प्रभ अपने साथ तू हमरो प्रीतम मनमोहन तुझ बिन जीवन सगल अकाथ रहाओ रंक तेराओ करत खिन पीतर प्रभ मेरो अनाथ को नाथ जलते अग्न मह जन आप उधारी कर अपने दे राखे हाथ शीतल सुख पायो मन तृप्ते हर सिमरत श्रम सगले लात निद निदान ना

0: प्रभ मेरे।
1: पूरब प्रीत गोबिंद विचार हो रहा,
0: पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारो, हमरे दुख हृदय मत तारो, जीवन प्राण हर धन सुख तुम ही, हम मैं पटल कृपा कर जारो, जल बिहून मीन कत जीवन, दूध बिना रहन कत बारू, जन नानक प्यास

जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। ताजे अब मान अरचिंत बरानी साध है शरण पाए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खाए। महामुगद अजान अज्ञानी राखे तार दए, कहो नानक गुर पूरा पेटे हो आवन जान रहे। बलाव महला पंजवा जीवो नाम सुनी, जो सो प्रसन्न पए गुर पूरे तब

भाव है, हार कजर बस्तर आभरण कीने, उडीनी उडीनी उडीनी कब करया वैरी रहाउ, सरन सुहागन चरण शीश धर, लाल

द्रौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो अजा मल गनका जेह सिमरत मुक्त भये जी जानो रहाओ।

जोग जग निःफल ते मानो जो प्रभ जस बिसरावे मान मोह दोनों को पर हर गोविंद के गुण गावे कहो नानक एह बिद को प्राणी जीवन मुक्त कहावे बलावल महला नौवां जा मैं भजन राम को नाही तेह नर जन्म अकारथ खोया यह राखो मन माही रहाउ तीर्थ करे व्रत फुन राखे नह मनुआ बस जाको।

देखै सब सोई, गुरमुख विरला बूजै कोई, विण भै पै भगत न होई, शब्द रते सदा सुख होई, ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम, गुरमुख पावस रस रस मान रहाउ, ज्ञान ज्ञान कथै सब कोई, कथ कथ बाद करे दुख होई, कथ कहण ते रह न कोई, बिन रस राते मुक्त न होई, ज्ञान ध्यान सब गुर ते होई, साची रहत साचा मन सोई, मनमुख कथनी है पर रहत न होई, नाम भूले थाओ न कोई, मन माया बंदियो सर जाल, घट घट व्याप रहो बिख नाल, जो आंजै सो दिसै काल, कारज सीधो हृदय संभाल, सो ज्ञानी जिन शब्द लिव लाई, मनमुख होमै पत गवाई, आपे करतै भगत कराई, गुरमुख आपे दे वडियाई, रैण अंधारी निर्मल जोत, नाम बिना झूठे कुचा

को दूजा देख कहों पावे मन सोए। नानक कह अवर नहीं कोई बलावल महला पहला। मन का कहया मनसा करे इहो मन पुन पाप उच्चरे। माया मद माते तृप्त ना आवे त्रिपत मुकत मन साचा पावे। तन तन कलत सब देख अभमाना।

आप न बूझे लोक बुझावे मन का अंधा अंध कमावे दर कर महल ठौर कैसे पावे हर जियो सेविया अंतर जामी घट घट अंतर जिसकी जोत समानी किस नाल क्या चले पहनामी साचा नाम साचा शब्द जाने आपे आप मिले चूके अभमाने

नानक हर गुर सरण समैया। बलावल महला चौथा। मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का, खिन खिन शरदा मन बहुत उठैया। गुर देखे शरदा मन पूरी, ज्यो चात्रक प्रियो प्रियो गूंद मुख पैया। मिल मिन सखी हर कथा सुनैया, सतगुर दया करे प्रभ मेले। मैं तिसे आगे सिर कट कट पैया, रहाउ रोम रोम मन तन एक बेदन। मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया, वैदिक नाटक देख पुलानी। मैं हृदय मन तन प्रेम पीर लगैया, हौ खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम। ज्यो बिन अमले अमली मर गईया, जिनको प्यास हुए प्रभ केरी। तिन अवर ना पावे बिन हर को दुईया, कोई आन आन मेरा प्रभु मलावे। हौ तिस विटहो बल बल घुम गईया, अनेक जन्म के विछड़े जन मेले। जहां सत सत सत गुर सरन पवैया, सेज एक एको प्रभ ठाकुर। महल ना पावे मन मुख परमैया, गुर गुर करत सरन जे आवे। प्रभ आए मिले खिन ढील ना पैया, कर कर किरिया चार वधाए। मन पाखंड कर्म कपट लो भैया, बेसवा कह कर बेटा जन्मया। पिता ताहे क्या नाम सदैया, पूर्व जन्म भगत कर आए। गुर हर हर हर हर भगत जमैया, भगत भगत करते हर पाया। जहां हर हर हर हर नाम समैया, प्रभ आन आन मेहंदी पसाई। आपे कोल कोल अंग लैया।

गोविंद भजना रंग रसना बखान नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्ब फल हर ले कुल समूह करत उधार संसार उतरस पार हर चरण बोहित ताहे मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मरार हर नानक सरन द्वार बलावल महला पहला थिती घर दसवां जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार नराला अमर अजोनी जात ना जाला अगम अगोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट देखिया।

गुर कै शब्द महल घर दिसै रहाउ। दूजै पाए लगे पछताणी, जम दरबांदे आवन जाने। क्या लै आवह क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाहे। बिन गुर शब्द ना छूटस कोए, पाखंड कीनै मुक्त ना होए। आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़। तरत आकाश किए बैसन कौ थाऊ, रात दिनंत किए पौ पाऊ।

कीमत पाए रहया भरपूर किस नेड़े किस आखां दूर चौथ अपाए चारे बेदा खानी चारे बाणी भेदा अष्ट दशा

मुख शरीर सात समुंद भरे निर्मल नीर मज्जन सील सच हृदय विचार गुर कै शब्द पावे सब पार मन साचा मुख साचो पाय सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधे सच निह केवल कर्म अरादे पौन पानी अग्नि बिसराऊ तही निरंजन साचो नाउ किसमें मनुआ रहे लिव लाए प्रणवत नानक काल न खाए नाउ नौमी नवे नाथ नव खंडा घट घट नाथ महाबल।

फल जाए, रस कस खाए साध गवाए, कूड़ै लालच लपटै लपटाए, छूटै गुरमुख साच कमाए, द्वादस मुद्रा मन अवतूता, ऐन सजागह कबह ना सूता, जागत जागत